मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 23वीं तिथि, तदनुसार 9 जून सन 2026। इस समय स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:58 और 44 सेकंड हुए हैं। अब हमारे आज के प्रसारण आरंभ होते हैं।

0: आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। समाचारों के तुरंत बाद एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर विविध भारती के कार्यक्रमों का रिले होगा।
1: के साथ मैं जया भारती।

0: गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीक की मदद से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। यह पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आज से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर देश भर में विशेष कार्यक्रम शुरू करेगा। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को की थी। इसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त और अच्छी गुणवत्ता वाली प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। समारोह के दौरान स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 75 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक बढ़ती पहुंच से अगले 5 वर्षों में भारत का फार्मा उद्योग दोगुना होने की संभावना है। नई दिल्ली में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र पर आयोजित ग्लोबल एम्बेसडर मीट को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं और अब भारत के 50 से अधिक देशों के साथ व्यापारिक समझौते हैं। इससे भारतीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल जेनरिक दवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अनुसंधान, नवाचार और उच्च मूल्य वाली औषधियों के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री गोयल ने देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि यह पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत बेहतर सड़क, रेल और अन्य परिवहन सुविधाएं, बिजली तथा पानी की व्यवस्था, डिजिटल प्रशासन, श्रमिकों के लिए सुविधाएं और पर्यावरण अनुकूल विकास पर ध्यान दिया जाएगा। इंडिया ब्लॉक की कल नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और DMK पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक के लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में हुई आग की दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं केंद्रीय इस्पात मंत्री HD कुमारस्वामी और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमारस्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की है। यह फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तत्काल युद्ध विराम की अपील के बाद लिया गया है। हालांकि दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष संघर्ष विराम चाहते हैं और शांति वार्ता जारी है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा है कि उनका देश कूटनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के प्रति प्रतिबद्ध है। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और पूर्व मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ भागों तक पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है

आज का चिंतन। दुनिया में कोई भी इतना अमीर नहीं है कि वह गुजरे हुए समय को खरीद सके, इसलिए जिंदगी के हर पल से प्यार करे और खुश रहकर आनंद ले। ये था आज का चिंतन और अब आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

प्रभु की भक्ति ईश्वर के प्रति अटूट आस्था, प्रेम और पूर्ण समर्पण है। यह कोई कर्मकांड नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म से परमात्मा से जुड़ने और उनकी उपस्थिति का निरंतर अनुभव करने की एक सहज अवस्था है।

निष्काम भक्ति किसी स्वार्थ या इच्छा के बिना ही केवल ईश्वर से प्रेम करने के लिए की जाने वाली सच्ची और पवित्र भक्ति है।

वह भक्ति जो किसी विशेष सांसारिक कामना, संकट निवारण या फल की प्राप्ति के लिए की जाती है, सकाम भक्ति कहलाती है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदना, आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस का, स्वर है श्रीकांत परगांवकर का।

चित्रकूट की महिमा का बखान कर ऋषि वाल्मीकि ने उसे सभी प्रकार से निवास के योग्य स्थान बताया। लक्ष्मण ने पत्नी नदी के उत्तर वाले ऊंचे कागार की ओर दृष्टिपात किया, जिसे अपने घेरे में लिए हुए धनुष के आकार का एक नाला था। मंदाकिनी नदी मानव उसकी प्रत्यंचा है और शम, दम और दान उसके बाण हैं। कलयुग के समस्त पाप ऐसे हिंसक पशु हैं जिनका निशाना चित्रकूट रूपी शिकारी कभी नहीं चूकता। जब देवताओं को यह प्रतीति हुई कि वो मनोरम स्थान श्री राम के मन को भा गया, तो वे कोलों के वेश में विश्वकर्मा सहित वहां पहुंचे और पत्तों तथा घास से वहां अत्यंत सुंदर दो कुटियों का निर्माण किया। श्री राम वहां ऐसे अवस्थित हैं मानो स्वयं कामदेव मुनि वेश धारण करके पत्नी रति तथा सखा ऋतुराज वसंत के साथ सुशोभित हैं। देवलोकवासी चित्रकूट आकर अपने स्वामी के दर्शन करते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम श्री रामचरित मानस गान, स्वर था श्रीकांत परगांवकर का। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि की बातें।
1: किसान बहनों भाइयों, राम राम। कृषि की बातें हम आज करेंगे इन दिनों मछली तालाबों की देखभाल इसके बारे में। किसान भाइयों, जो भी मछली पालन का काम भाई कर रहे हैं, उन अपनी सारी तैयारी पहले करी है, तालाब बनाए हैं, उनमें मछलियां का बीज भी डाला है, मछली भी पाली है, उसके वो कई साल तक भी काम कर रहे हो, लेकिन इस मौके की कुछ बात ध्यान करने की है, उसके उनकी जानकारी में भी हो, लेकिन फिर भी कई बात इसी हुआ करें कि मौके पर ध्यान दवा दी जाए तो वो फायदेमंद साबित हो जाया करें। एक तो तालाब के चारों तरफ कोई झाड़ी ना हो, क्योंकि तेज हवा आवे है, आंधी तूफान आवे है, वह तालाब के अंदर झाड़ी चली जा है तो जो उसके अंदर जीव है, जो मछली है, उनको वह नुकसान कर दिया करें। इस बात का वो ध्यान करें, कोई झाड़ी है तो उन्हें हटा दे इस टाइम पे बिल्कुल। दूसरा, कुछ भाइयों ने पक्के तालाब भी बना रखे हैं, नीचे तो पक्का ना हो लेकिन चारों तरफ उसकी बाउंड्री पक्की कर रखी है, उसने देख लें कहीं तो कोई माटी तो नहीं कट रही है, कोई और कोई दरार तो नहीं बन।

0: है ईस्टर का वो ध्यान कर ले। और बाकी दिन भैया ने कच्चे तालाब छोड़ रखे हैं, उन्हें तो जरूर देखना पड़ेगा क्योंकि आगे फिर चौमासे का मौसम आवा है। इसी जगह तो तालाब नहीं है कि कोई बाहर का पानी उस तालाब में आ जाए। खेत का पानी तालाब में आओगा वो भी नुकसानदायक साबित होगा, हो सके कोई दवाई का छिड़काव कर रखा हो वो जहरीला पानी मान लो तालाब में आ गया है तो वो नुकसानदायक साबित हो जाएगा। उसने पहले अपना कोई जाप्ता ईशा कर ले कि वो पानी ना आ पावे। फिर उसके अंदर जो जीव है उन जीवों ने खान पीन का भी सतो डाल का मिल जाए। और सबसे बड़ी बात है कि कई बार हम देखे हैं कि मछली पानी तो बार मुंह कड़ कड़ के देखे हैं, वो इसलिए देखा करें कि उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलती। यो एक संकेत हो है कि मछली जब किनारे की तरफ आ जा और बार मुंह कड़ कड़ के देखे हैं तो इसका मतलब ये है कि उन्हें पूरा ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा। ऑक्सीजन की पूर्ति करने की खातर एक तो तरीका ये है कि एक वाइब्रेटर से लगाए जाया करें, वो उस पानी में उछाल मारा करें। वो पानी ने उछाड़ेंगे उसमें हलचल होगी पानी में, वो पानी गर्म भी नहीं होगा। मान लो वाइब्रेटर चले हैं जो एक वो यंत्र से ला दिए जाया करें, वो पानी में उछाल मारेंगे तो ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाएगी और मछलियां ने ऑक्सीजन पूरी मिल जाएगी और वो ठीक ठाक अपना सांस ले सकेंगी। पानी का बदलाव भी कर सके हैं, एक तालाब तो दूसरे तालाब में भी पानी का बदलाव कर सके हैं, नहीं तो उस पानी ने निकाल के कोई दूसरी जगह खेत में कितने इस्तेमाल कर सके हैं और नया ताजा पानी अगर उसमें भर दिया जा तो फिर ऑक्सीजन की पूर्ति अपने आप हो जाए। तालाब के चारों तरफ थोड़ा सा छिड़काव हो जाए, बहुत बढ़िया बात है। छिड़काव हो जाए तो तापमान में कुछ गिरावट आएगी और बिल्कुल तालाब के नजदीक कोई पेड़ ना हो, इस बात का भी ध्यान करना है। वैसे तो पेड़ तापमान के गिरावट में हमारी मदद करे हैं, लेकिन वो क्या है कि उस पर कुछ ऐसे पक्षी बैठ जाएंगे जो मछलियां निकाल के ले जा सके हैं। तो उसकी खातर हमने एक काम करना है, पतले पतले धागे सा का एक जाल सा आकर चमकीला चमकीला सा वो आम तालाब के ऊपर के फैला सका है, थोड़ा सा पानी की ऊंचाई तो ऊपर का उसने बांध दे, कोई रस्से रस्सियां तो बांध दिया करें, वो कोई ऊपर तो जो पक्षी आओगा वो उसमें नीचे नहीं घुस पाओगा और मछलियां नहीं उठा पाओगा, यो ध्यान करना है। और जैसे ही लगता है कि किनारे पर कोई मछली मरकारी है, कोई इस तरह की कोई दिक्कत परेशानी है, तो तुरंत विभाग के जो डॉक्टर हैं उन तक बात कर ले कि जी इस तरह की दिक्कत आई है, आग आने वाले टाइम में कोई बड़ी दिक्कत हो नहीं आ जा, यो ध्यान करना है। बाकी मुख्य बात यह है कि पानी ठीक ठाक हो, ऑक्सीजन की पूर्ति हो, वो जो मशीन ला रखे हैं जो हलचल मचाने वाली वो पूरा अपना काम कर रही हो, एक तालाब तो दूसरे तालाब में पानी चला जा, ताजा पानी तालाब में भरा जा सके है, पानी की कितने कमी हो तो थोड़ा चार कदम दूर तक भी कोई ट्यूब लगाकर कोई पाइप लगाकर लिया जा सके है, और पशु अगर जाव है तालाब में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि उनका जो पेशाब है गोबर है वो भी उनका एक भोजन का एक काम करे है और वो तालाब में हलचल भी पैदा करेंगे पशु। अगर पशु जाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर जो दूसरी खुराक देनी है वो खुराक तालाब में देनी पड़ेगी ताकि जो जीव उसमें पल रहे हैं वो ठीक ठाक पल सके। और शुरुआत में बताई थी कोई झाड़ी जुड़ी हो तो इस डाल के उसने हटा दें, साफ सुथरा हो, पानी ठीक ठाक हो उसमें और संभाल ठीक ठाक हो तो जो मछली पालन का जो भाई काम कर रहे हैं वो बिल्कुल निश्चित रूप से फिर पूरा मुनाफा इस काम से ले लेंगे।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि की बातें, आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6:55 होने को हैं। अब आप सुनेंगे संस्कृत समाचार, 7:00 हिंदी समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। राष्ट्रपतिभवने गतसायम् आयोजितस्य रक्षा अलंकरण समारोहस्य समये राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः शौर्य पुरस्कारान् प्रदत्तवती। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन वर्यः, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः, अन्ये केन्द्रीय मंत्रिणः, सशस्त्र सेनायाः वरिष्ठाधिकारिणश्च अस्मिन् अवसरे उपस्थिताः आसन्। राष्ट्रपतिः समारोहस्य समये रक्षा सैन्य दलानां, केन्द्रीय सशस्त्र आरक्षक बलानां, राज्य केन्द्र शासित प्रदेशयोः आरक्षकेभ्यश्च 7 कीर्तिचक्राणि, 15 वीरचक्राणि, 31 शौर्यचक्राणि च प्रदत्तानि। जम्मूनगरस्य अन्तर्राष्ट्रिय सीमायां कर्तव्यपारायणतावधौ प्राणत्यागं कृतवन्तौ VSF इत्यस्य आरक्षकं दीपक चिंगखम इत्यमुम, उपनिरीक्षकम मोहम्मद इम्तियाज इत्यमुम च मृत्योपरांतम वीरचक्रम प्रदत्तम। आंध्र प्रदेशे गतसायं राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड इत्यस्य विशाखापत्तनम स्टील प्लांट इत्यत्र महते अग्निदुर्घटनायां 8 जनाः मृताः, अन्ये 6 जनाः च व्रणिताः अभवन्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णनवर्यः, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू च अस्यां दुर्घटनायां मृतजनानां प्रति शोकं प्रकटितवन्तः। एतदतिरिच्य प्रधानमंत्रिणा प्रत्येकस्य मृतकस्य निकटवर्तिसदस्यस्य कृते 2,00,000 रूप्यकाणां, व्रणितानां कृते 50,000 रूप्यकाणां च अनुग्रहराशेः घोषणा कृता। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह अद्य नवदिल्ल्यां भूपत्तन प्रबंधन व्यवस्थायाः LPMS इत्यस्य उद्घाटनं करिष्यति। गृहमंत्रालयेन उक्तं यत् LPMS इत्यस्य आरम्भः भारतस्य आधुनिक तंत्रज्ञान सक्षम सीमा प्रबंधन व्यवस्थायाः कृते महत्वपूर्णं सोपानं भविष्यति। 47-2,000 वर्षपर्यन्तं व्यापारसौकर्यं, सम्पर्कं, राष्ट्रियसुरक्षां, विकसितभारतस्य दृष्टिकोणं च सुदृढं कर्तुं लक्ष्येन सह एतत् मञ्चः संरेखितः अस्ति। केन्द्रीयवित्तमन्त्री निर्मलासीतारामनः पश्चिमबङ्गस्य विकासयात्रां त्वरितं कर्तुम् उपायेषु विचारं कर्तुं पश्चिमबङ्गस्य मुख्यमन्त्रिणा शुभेन्दु अधिकारिणा सह नवदिल्ल्यां मेलनं कृतवती। राज्ये विभिन्नेषु क्षेत्रेषु ऋणप्राप्तिविषये, सर्वकारस्य योजनानां कार्यान्वयनस्य विषयेऽपि चर्चा जाता। वित्तमन्त्री सीतारामनः अघोषयत् यत् राज्यसर्वकारेण सह निकटसमवायेन प्रधानमन्त्री मुद्रा योजना, प्रधानमन्त्री जनधनयोजना, प्रधानमन्त्री जीवनज्योति बीमा योजना, प्रधानमन्त्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेन्शन योजना, प्रधानमन्त्री स्वनिधि योजनादीनां नवीकृत संतृप्ति अभियानं प्रत्येकं योग्यं लाभार्थिम् आच्छादयितुं क्रियते। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः उक्तवान् यत् नवान्वेषणैः वैश्विक सहभागित्वेन अन्तर्राष्ट्रीय आपणे प्रवेशस्य विस्तारेण च आगामिषु 5 वर्षेषु भारतस्य औषध निर्माण उद्योगस्य आकारः द्विगुणितः भविष्यति। श्रीगोयलवर्यः ह्यः नवदिल्ल्यां फार्मास्यूटिकल क्षेत्रस्य वैश्विक राजदूतसम्मेलनं 26,000 ग्लोबल ड्रग रेगुलेटर्स कॉन्क्लेव तथा 26,000 फार्मा एंड हेल्थ केयर इत्यस्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन्याः पूर्वालोकन समारोहं च संबोधयन् इदमुक्तवान्। केन्द्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी वर्यः अवदत् यत् नरेन्द्र मोदिनः सर्वकारस्य 12 वर्षेषु भारतस्य अंगार खनन क्षेत्रयोः महतीं परिवर्तनम् अभवत्। महिला क्रिकेट क्रीडायां यूनाइटेड किंगडम देशस्य कार्डिफ नगरे 26,000 वर्षस्य ICC महिला 20x20 विश्वचषक क्रीडायाः प्राक् ह्यः प्रथमायां पूर्वाभ्यास क्रीडायां भारतेन वेस्टइंडीज दलं 26 धावनांकैः पराजितम्। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता भी दर्शाती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे।

0: इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक बढ़ती पहुंच से अगले 5 वर्ष में भारत का फार्मा उद्योग दोगुना होने की संभावना है। नई दिल्ली में कल फार्मास्यूटिकल क्षेत्र पर आयोजित ग्लोबल एम्बेसडर मीट को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं और अब 50 से अधिक देशों के साथ व्यापारिक समझौते हो चुके हैं, जिससे भारतीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल जेनरिक दवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अनुसंधान, नवाचार और उच्च मूल्य वाली औषधियों के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। असम की प्रसिद्ध जीआई टैग प्राप्त तेजपुर लीची अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि तेजपुर लीची की पहली खेप दुबई के लिए रवाना हो की गई है। श्री गोयल ने कहा कि इस साल से तेजपुर लीची को वैश्विक पहचान मिलेगी, किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त होगा और पूर्वोत्तर भारत के कृषि उत्पादों के लिए नए अवसर खुलेंगे। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में आग की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 6 अन्य घायल हुए हैं। इनमें 2 लोगों की हालत गंभीर है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार ये हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकट तम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमारस्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने भी मुख्य सचिव, जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। दुर्घटना की जांच जारी है। इंडिया ब्लॉक की कल नई दिल्ली में बैठक संपन्न हो गई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सुले शामिल थीं। अमरीका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए 1 लाख अमरीकी डॉलर के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के तहत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि कांग्रेस की मंजूरी के बिना ये शुल्क नहीं लगाया जा सकता। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की है। ये फैसला अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तत्काल युद्ध विराम की अपील के बाद लिया गया। भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मैच आज दम्बुला में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर के कुछ हिस्सों तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्सों तक पहुंच गया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Sarabjit Kaur. Union Home Minister Amit Shah will launch the Land Port Management System, LPMS, in New Delhi today. This initiative reflects the government's commitment to smart border management, aiming to enhance efficiency, transparency and security in cross-border trade and passenger movement through technology-driven solutions. Union Steel Minister H.D. Kumaraswamy and Civil Aviation Minister Rammohan Naidu visited the Visakhapatnam Steel Plant accident site last night.

शाम 7:10 पर आप सुनेंगे सरकार के 12 वर्ष पर समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रसारित एक विशेष श्रृंखला में आर्थिक विकास पर बातचीत, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

प्रातः 7:15 पर विविध कार्यक्रम में सुनेंगे सुभाष चंद्र से बातचीत। विषय रहेगा बाल मजदूरी व शोषण के संवैधानिक व न्यायिक पक्ष। युवा संसार कार्यक्रम को सुना जा सकता है शाम 5:30।

सुबह सवेरे कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रातः 7:35 पर। एनसीईआरटी द्वारा तैयार प्रायोजित कार्यक्रम को सुनेंगे दिन में 12:30। प्रायोजित कार्यक्रम ऑर्गन इंडिया, इसे सुना जा सकता है शाम 5:45 पर।

खेत खलिहान कार्यक्रम में दिन में 2:30 बजे आपको ज्वार की काश्त विषय पर जानकारी दी जाएगी। शाम 6:20 पर कृषि जगत कार्यक्रम में कृषि यंत्रों के रखरखाव विषय पर जानकारी प्राप्त करेंगे। ग्रामीण संसार कार्यक्रम में शाम 7 बजे डॉक्टर अजीत कुमार से बातचीत सुनेंगे। बातचीत का विषय रहेगा आयुर्वेद एक पंचकर्म द्वारा स्वास्थ्य लाभ।

फिल्म संगीत कार्यक्रम को श्रोतागण सुन सकते हैं प्रातः 9 बजे और रात्रि 7:45 पर। दिन में 1:10 पर कार्यक्रम रहेगा चित्रपट संगीत।

रात 8:25 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। एक फिल्म से कार्यक्रम का प्रसारण होगा रात्रि 9:15 पर। मन चाहे गीत पत्रों पर आधारित यह कार्यक्रम श्रोतागण सुन सकते हैं रात्रि 10:30।

0: ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे सुभाष चंद्र से बातचीत और विषय रहेगा बाल मजदूरी व शोषण के संवैधानिक व न्यायिक पक्ष।
1: श्रोताओं, आज बात करेंगे बाल मजदूरी के संवैधानिक व न्यायिक पक्ष इस बारे में, और आज इसी विषय पर हमारे साथ में जुड़े हैं सुभाष चंद्र जी। आप MDD संस्थान, जो कि बाल अधिकारों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए तथा उनकी सुरक्षा के लिए, अन्य इस प्रकार के कई मुद्दे हैं जो बच्चों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए काम करता है और आप उसके जिला संयोजक हैं, तो इसके साथ साथ में आपका बहुत लंबा चौड़ा अनुभव रहा है।

0: खासकर बच्चों से जुड़े हुए कई समस्याओं के क्षेत्र में आपने कई वर्षों तक लगातार अपना काम लगातार जारी रखा है। तो सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
1: जी नमस्कार विनय जी।
0: जी, तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, जो बाल मजदूरी है उसको हम कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं, उसको कैसे समझ सकते हैं आसान भाषा में?
1: विनय जी, बाल मजदूरी या बाल श्रम वह काम है जिस में बच्चे शामिल होते हैं और इससे उनकी जो नियमित पढ़ाई है वो बाधित होती है या वो पढ़ाई बंद हो जाती है। इसके साथ साथ उनका मानसिक और शारीरिक विकास भी प्रभावित होता है। जिस
0: जी
1: काम से ये सारी चीज़ें प्रभावित होती हैं वही बाल श्रम है, बाल मजदूरी है।
0: तो हम बाल श्रम, बाल मजदूरी की बात कर रहे हैं, तो बच्चे हम किनको माने?
1: जो बच्चे 18 सॉरी बच्चा 14 साल से कम उम्र के जो व्यक्ति हैं उनको हम बच्चा मानेंगे और 14 साल से 18 साल के बीच का जो व्यक्ति है उसको हम किशोर मानेंगे
0: जी,
1: और जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो बाल मजदूरी नहीं कर सकते, लेकिन 14 साल से और 18 साल के जो किशोर जिनको कहा जाता है
0: जी
1: वो कुछ शर्तों के साथ ऐसे काम कर सकते हैं जिसमें उनके जीवन को जोखिम कम हो।
0: आप कह रहे हैं कि 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे होते हैं वो किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं कर
1: जी
0: सकते।
1: जी
0: इसकी क्या कोई संवैधानिक पक्ष है?
1: जी बिल्कुल। जो बाल श्रम अधिनियम 1986 है
0: जी
1: उसके तहत ये बच्चों को शोषण से भी बचाता है और इसी अधिनियम के तहत ये परिभाषा दी गई है बच्चे की, जो 14 साल से कम उम्र का जो बच्चा है वो काम नहीं करेगा और यदि कोई उससे काम करवाता है, खतरनाक काम, खतरनाक काम वो जैसे कोई माइनिंग का काम है
0: हाँ,
1: या कहीं कोई भट्टी का काम है, कोई रंगाई की फैक्ट्री है, जो भी खतरनाक काम है उनमें यदि वो बच्चा काम करता हुआ पाया गया तो ऐसे व्यक्ति जो नियोक्ता है यानी फैक्ट्री का मालिक है, दुकान का मालिक है या जो भी व्यक्ति उनसे काम करवाता है उसको 20,000 से 50,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, 6 माह से और 5 साल तक की उसको कैद भी हो सकती है।
0: जी हम कानूनी पक्ष की बात कर रहे हैं, क्या हमारा संविधान भी कुछ कहता है बाल मजदूरी पे?
1: संविधान में प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार दिया गया है, उसको एक अच्छा और फ्री जीवन जीने का अधिकार दिया गया है, लेकिन जो बाल मजदूरी है वो इस बच्चे के जो फ्री जीवन है या शिक्षा का अधिकार है उससे वो वंचित करती है। यानी एक मौलिक अधिकार एक बच्चे का है, बाल मजदूरी उस मौलिक अधिकार से बच्चे को वंचित करती है और जो बाल मजदूरी के कारण बच्चे बिना बचपन के ही अपना जीवन जीने को मजबूर होते हैं।
0: जी, तो जो भारत का संविधान है वो 0 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों तक जो किसी भी प्रकार का कोई शोषण है, कोई बाल मजदूरी है, उस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाता है।
1: जी जी
0: तो
1: बिल्कुल
0: ये जिसको मौलिक अधिकार बोलते हैं, आपने जो जिक्र किया फंडामेंटल राइट्स, उसमें हम इस प्रकार की बात कर सकते
1: जी
0: हैं, हम न्यायिक पक्ष समझ सकते हैं। लेकिन जब आज की परिस्थितियों में हम बात करते हैं, तो आप खुद बता रहे हैं कि भाई हमारे पास में कानूनी अमलीदामा भी है, संविधान में भी आप बात बताई गई है, लेकिन अगर हम धरातल पे आए
1: जी जी
0: तो धरातल पे आने के बाद इन परिस्थितियों के बारे में थोड़ा सा बताएं।
1: जी देखिए हमारे यहाँ बाल मजदूरी के कई कारण हैं। पहला कारण है गरीबी। देश आज भी हमारे देश में जो आंकड़ा है सरकारी आंकड़ा है कि बीपीएल के परिवार हैं वो 80 करोड़ से ज़्यादा हैं और जब 80 करोड़ से ज़्यादा लोग बीपीएल की श्रेणी में हैं तो जाहिर सी बात है उनके लिए रोज़गार का संकट भी है।
0: जी
1: वो घर छोड़ के बाहर निकलते हैं, दूसरे प्रदेशों में पलायन करते हैं और हमने जो काम किया पिछले 5-6 साल से बच्चों के लिए बच्चों के साथ तो ज़्यादातर उत्तर प्रदेश, बिहार और एक नया ट्रेंड है मध्य प्रदेश से बहुत ज़्यादा मजदूर यहाँ हरियाणा में आए हैं काम करने के लिए। वो अपने साथ बच्चों को भी लेके आते हैं क्योंकि बच्चे वहाँ के लिए वो छोड़ नहीं सकते।
0: जी
1: जब वो यहाँ काम करते हैं किसी फैक्ट्री में

0: करते हैं या चिनाई का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो अपने बच्चों को भी वो अपने साथ लगाते हैं। और बच्चों को साथ लगाने का जो मालिक है उसको ये फ़ायदा है कि कम मजदूरी में वो ज़्यादा काम लेता है। एक बच्चा पूरा दिन काम करता है तो उसको मुश्किल से वो 100 रुपये देते हैं।
1: तो सुभाष जी, इसमें दो बातें आ गई, इसमें जिसको हम बात करते हैं समानांतर प्रक्रियाएं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों बातें आ गई
0: जी
1: इसमें।
0: जी
1: एक तो जो बाहर का मजदूर तबका हमारे पास में आ रहा है,
0: जी
1: वो माइग्रेंट लेबर जो आ रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे बाल मजदूरी बढ़ रही है। खासकर अगर हरियाणा प्रदेश की बात करें, जो
0: जी
1: आप आंकड़ों के हिसाब से दर्शा रहे हैं।
0: जी
1: दूसरी बात फिर इसमें ये भी आ रही है कि जो बाल मजदूर आ रहे हैं बाहर से, जो माइग्रेंट लेबर आ रहे हैं, उनके साथ में आ रहे हैं क्योंकि उन क्षेत्रों का पर कैपिटा इनकम कम है,
0: जी जी
1: अपेक्षाकृत वो गरीब ज़्यादा हैं,
0: जी
1: और यहाँ पर आकर वो पैसा कमा रहे हैं जहाँ पर कैपिटा इनकम थोड़ी सी ज़्यादा है
0: ज़्यादा है
1: और मजदूरी भी ठीक ठाक मिल रही है। तो वो अपनी क्या पारिवारिक परिस्थितियाँ सुधारने की वजह से बाल मजदूरी करवा रहे हैं, या इसके पीछे और भी कारण हो सकते हैं?
0: इसके पीछे। एक तो अशिक्षा है, वो खुद ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, अपने बच्चों को भी वो ज़्यादा नहीं पढ़ाते। और दूसरा, हमने कुछ केसों में ये भी देखा है, कुछ मामलों में वो बच्चों को भगवान की देन मानते हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं हैं। वो ये मानते हैं कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना ज़्यादा उनको काम मिलेगा, उनका परिवार चलेगा। तो बहुत छोटे छोटे बच्चों को रोज़गार पे लगाते हैं।
1: जी
0: अभी हमने, मैं इसको रोज़गार नहीं कहूँगा, मैं इसको कहूँगा कि बच्चे का वो जीवन बर्बाद करने में माता पिता का हाथ है, लेकिन उनकी एक मजबूरी भी है। अभी हमने यहीं रोहतक में एक बच्चे को रेस्क्यू किया था।
1: जी
0: 12 साल का बच्चा था, जो एक समोसे की दुकान पे वो समोसे तल रहा था भट्टी पे,
1: जी
0: और ये काफ़ी ख़तरनाक काम है।
1: बिल्कुल
0: तो हमने उस बच्चे को वहाँ से रेस्क्यू किया, और जो मालिक है वो सुबह 8 बजे से और रात के 8 बजे तक उससे काम करवाता था।
1: जी
0: और फिर उसको मुश्किल से वो 6,000 रुपये महीना वो उस बच्चे को देता था।
1: जी
0: जिस दिन बच्चा थोड़ा लेट हुआ उस दिन उस 6,000 में से वो उसके पैसे काट लेता था। उसके खिलाफ़ हमने FIR दर्ज करवाई है, बाल श्रम की धारा 13(3) और JJ Act की धारा 75 और 79 में दुकान मालिक के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ है। और यदि उसका दोष साबित हो जाता है इसमें,
1: जी
0: तो मैंने पहले बताया कि दोष साबित होने पे 20,000 रुपये से 50,000 रुपये तक का उस पर जुर्माना हो सकता है, या उसको 6 महीने से और 5 साल तक की सज़ा भी हो सकती है।
1: जी आपने माइग्रेंट लेबर की बात की है,
0: जी।
1: इसके साथ साथ में आपने गरीबी की बात की। अब हरियाणा प्रदेश में आते हैं, जब हरियाणा प्रदेश के अंदर की बात करें, जो यहाँ के निवासी है, उनमें बाल मजदूरी कहाँ तक जड़ में बैठी हुई है?
0: हरियाणा में भी बाल मजदूरी काफ़ी है। जो हमारा खेती सेक्टर है, खेती में भी बहुत ज़्यादा बाल मजदूर हैं। और जो बाल अधिकार कार्यकर्ता हैं, उनका ये मानना है कि जो बच्चा स्कूल में नहीं है उसको बाल मजदूर ही माना जाए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अदृश्य रूप में बाल मजदूरी ही कर रहा होगा।
1: इसमें एक बात को स्पष्ट करते हुए चलें,
0: जी
1: क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि घर परिवार के सब लोग काम कर रहे हैं, बच्चा भी उनके साथ खेत में जाके काम कर रहा है, क्या उसको भी बाल मजदूरी मानेंगे?
0: मैंने पहले बताया कि 14 साल से कम उम्र का बच्चा, यदि कोई पुश्तैनी काम है,
1: हाँ
0: जैसे खेती का काम है, दुकान है, किराने की दुकान है, अपना अपना जो उनके परिवार का जो काम धंधा है
1: हाँ
0: उसमें वो हाथ बटा सकता है, लेकिन वो इतना हाथ बटाए कि उसकी पढ़ाई प्रभावित ना हो वो कर सकता है। लेकिन यदि परिवार का काम धंधा समोसे तलने का है, भट्टी पे काम करने का है, तो ये बच्चा, बेशक वो पारिवारिक काम है, उस काम में वो हाथ नहीं बटा सकता।
1: जी तो आपने खेती की बात की है कि खेती में काफ़ी बाल मजदूर हमें दिखाई पड़ते हैं, और कौन कौन से क्षेत्र है हरियाणा में जहाँ पे यहाँ के स्थानीय लोग ही बाल मजदूरी में भागीदार बन रहे हैं?
0: विनय जी, यहाँ एक तो जो हमारा फैक्ट्री हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं, वहाँ भी काफ़ी बाल मजदूर हैं। लेकिन वहाँ बाल मजदूरों को हम रेस्क्यू इसलिए नहीं कर सकते कि फैक्ट्री के अंदर जाना अलाउड नहीं है,
1: ठीक
0: वो
1: है
0: किसी को अंदर घुसने नहीं देते। और बच्चों को वो अंदर करने के बाद शाम को या देर रात को बच्चों को बाहर निकालते हैं। एक तो
1: ठीक है
0: फैक्ट्री है, दूसरा सर्विस स्टेशन है बहुत सारे, तीसरा मैकेनिक की दुकान है।

0: होटल हैं, इन सब पे भी बाल मजदूर हैं और वो यहीं स्थानीय बाल मजदूर हैं।
1: जी
0: मैं एक बात और आपको बताऊं, जो बाहर के बच्चे हैं वो ज़्यादातर होटलों पे काम करते हैं,
1: जी
0: लेकिन जो लोकल बच्चे हैं वो कार मैकेनिक के पास, सर्विस सेंटर में, कार वॉशिंग सेंटर पे, या वो कार मोटरसाइकिल मैकेनिक के पास काम करते हैं।
1: जी
0: इसमें जो कुछ केस हैं हमारे पास, हमने पीछे बच्चे रेस्क्यू किए थे।
1: हम उस पर भी आते हैं, लेकिन
0: जी
1: एक क्षेत्र के बारे में और बात कर लेते हैं,
0: जी जी
1: ईंट भट्टों के बारे में और बताइए।
0: ईंट भट्टों पे भी बाल मजदूर हैं। वहाँ जो बाहर से लेबर आती है वो ज़्यादातर लेबर ईंट भट्टों पे मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की है।
1: जी
0: उसमें वो जो बच्चे हैं उनके साथ ही आते हैं, वो बच्चे वहीं खेलते हैं, वहीं उनके साथ काम करते हैं, जैसे गारा बनाने का काम है, ईंट बनाने का काम है।
1: जी
0: पर वो बाल मजदूरी की श्रेणी में आते हैं, लेकिन मजबूरी है उन पेरेंट्स की, उन बच्चों को छोड़ के कहाँ आए।
1: जी
0: दूसरी बात ये है कि ईंट भट्टों पे कई जगह ये भी है कि बंधुआ मजदूर भी हैं, और वो बंधुआ मजदूर कई मामलों में हमने जब काम किया बच्चों के साथ, तो एक भट्टे पे एक जो परिवार था वो अपने बच्चों को वहाँ छोड़ गया मालिक के पास। उसने कुछ एडवांस लिया होगा कि मैं जब तक आपका पैसा नहीं चुका पाऊंगा ये बच्चे मेरे आपके पास काम करेंगे। तो ये
1: अब समझने की बात आ रही है यहाँ पे, बंधवा मजदूरी और बाल मजदूरी
0: जी
1: दोनों में फर्क करके बताएं।
0: बंधुआ मजदूरी में आम तौर पे ये कर्ज के साथ जुड़ी हुई है।
1: जी
0: जो परिवार, वो कोई प्लेसमेंट एजेंसी हो सकती है, वो भट्टा मालिक हो सकता है, वो फैक्ट्री मालिक हो सकता है, वो जमींदार भी हो सकता है जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है,
1: जी
0: वो किसी को कर्ज के रूप में कुछ पैसा देता है। फिर वो कर्ज की वसूली के लिए उस व्यक्ति को या उसके पूरे परिवार को, उसके बच्चों समेत वो अपने यहाँ काम करवाता है उस कर्ज की वसूली के लिए।
1: जी
0: कई बार तो ये भी देखने में आया कि पूरी की पूरी जिंदगी वो वहाँ काम करते हैं लेकिन उनका वो कर्ज पूरा नहीं हो पाता, और इसी को बंधुआ मजदूरी कहा जाता है।
1: जी तो क्या बाल मजदूर बंधवा मजदूर हो सकता है?
0: बाल मजदूरी और बंधुआ मजदूरी में ये फर्क है कि बाल मजदूर तो उम्र के हिसाब से है, जैसे वो अपनी मर्जी से काम करता है, कई बार वो अपने परिवार के दबाव में काम करता है, लेकिन बंधुआ मजदूरी में वो कर्ज के साथ जुड़ी, बंधुआ मजदूरी का जो सीधा सीधा जुड़ाव है वो कर्ज के
1: कर
0: साथ
1: से
0: है।
1: उसमें उम्र की कोई समय सीमा नहीं
0: उसमें
1: है।
0: उम्र की कोई समय सीमा नहीं है,
1: जी
0: उसमें जिसने पैसा दिया है वो कोई भी हो सकता है, मैंने बताया वो फैक्ट्री मालिक, प्लेसमेंट एजेंसी, जमींदार, वो अपना जब तक पैसा नहीं वसूलता तब तक वो उनके यहाँ बंधुआ वो मजदूरी करेंगे, और इसको बंधुआ मजदूरी ही कहा गया है।
1: जी तो इस सारी प्रक्रिया में आपने पूरी बात हमको समझाई है, तो आप के संस्थान का काम, आपका काम और एक जागरूक नागरिक और बाल अधिकार क्षेत्र में काम करने के नाते कहाँ से शुरू हो रहा है आपका सारा काम?
0: हमारा काम, हम देखते हैं बच्चों के साथ जब काम करते हैं कि कोई बाल मजदूर है, उसके जो मौलिक अधिकार हैं उनका जो हनन है, हमारी कोशिश ये है कि उस बच्चे को वहाँ से रेस्क्यू करें, उस बच्चे को मुख्य धारा में शामिल करने की कोशिश करें, उसके पेरेंट्स की काउंसलिंग करें कि आप अपने बच्चे को पढ़ाएं, उसको अपने पैरों पर खड़ा करें, आप उससे बाल मजदूरी ना करवाएं।
1: जी
0: और फिर हम बच्चे को जब रेस्क्यू करते हैं तो इसमें जो सरकारी ढांचा है उसमें उसके हिसाब से हमें चलना पड़ता है।
1: जी
0: बच्चे को रेस्क्यू करने के बाद हम बाल कल्याण समिति है वो हर ज़िले पे है, वहाँ उस बच्चे को प्रोड्यूस करते हैं। और इसमें जो पुलिस की एक इकाई है, ASTU, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट,
1: जी
0: उसकी मदद से करते हैं। और ज़िले में एक डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स है, उसके भी हम मेंबर हैं, उसमें लेबर डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, CWC, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं।
1: जी
0: तो वो समय समय पे वो भी कैंपेन चलाते हैं DTF के माध्यम से, और इसका मकसद ये है कि बच्चे जितने भी मिलें, बाल मजदूरी करते मिलें, उनको रेस्क्यू करें, और रेस्क्यू करने के बाद उनके पेरेंट्स के को समझाएं, उनकी काउंसलिंग करें कि बच्चे को वो स्कूल में डालें। पर यहाँ एक दिक्कत और भी आती है हमारे सामने
1: जी
0: कि जब बच्चे को रेस्क्यू करते हैं, और जैसे इस दो मामले हैं, एक पिछले साल हमने FIR करवाई थी, एक इस साल FIR करवाई।
1: हम उसी के बारे में पूछ रहे हैं कि जब रेस्क्यू करने के बाद
0: जी
1: आती
0: जी
1: है, रेस्क्यू करने के संबंध में भी बताएं और क्या क्या चुनौतियां आती हैं आपके सामने, वो भी बताएं।
0: कई बार जो मालिक है वो उस बच्चे को छुपा देता है।
1: जी
0: दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या वो ये है कि मालिक ये बताता है, मालिक मतलब दुकान मालिक या जो फैक्ट्री मालिक है, कि मेरे यहाँ ये सामान खरीदने आया है और अभी आया है।
1: जी
0: तो इस बात के प्रमाण हमें पहले जुटाने पड़ते हैं कि ये बच्चा पिछले कई दिनों से था, वो वीडियोग्राफी से भी है, फोटोग्राफी भी करते हैं। और दूसरी इसमें एक गड़बड़ी होती है कि बिना परमिशन के फोटोग्राफी भी किसी बच्चे की नहीं कर सकते।
1: जी
0: तो उस बच्चे को जब हम रेस्क्यू करते हैं, बाल कल्याण समिति में लेके जाते हैं, फिर बाल कल्याण समिति उसको जो बाल आश्रम है, CCI है, उनके ऑर्डर करती है। हमारे यहाँ CCI पहले ही फुल हैं,
1: जी
0: तो उस बच्चे को लेके कहाँ जाएं? वो
1: जी
0: वापस फिर उसी के पास, या तो पेरेंट्स या गार्जियन या कोई जो बच्चे का गार्जियन है वो लेके जाएगा।
1: हाँ
0: उसके बाद वो कुछ दिन के बाद फिर हो सकता है उसको कहीं और उस बाल मजदूरी के लिए किसी और के पास भेज दे। तो एक ऐसा ये दुष्चक्र है, इसको तोड़ना काफ़ी
1: कठिन हो
0: मुश्किल
1: जाता
0: है,
1: है। जी
0: काफ़ी कठिन है।
1: जी कोई सक्सेस स्टोरी आप बताना चाहें।
0: जी, हमने एक बच्चा था विनय जी, वो संतोष नाम था उसका। मैं
1: जी
0: नाम तो इसलिए बता रहा हूँ कि ये वैसा केस है, बॉन्डेड लेबर का है।
1: जी
0: उस बच्चे को वो बहादुरगढ़ स्टेशन से अपने घर नहीं जाना चाह रहा था फादर के साथ, तो वो स्टेशन से ट्रेन से उतरा और कोई किसी व्यक्ति ने उसको देख लिया और ये कहा कि मैं तुझे अपने घर काम दूंगा, 10,000 रुपये महीना तनख्वाह भी दूंगा।
1: जी
0: तो उस बच्चे को वो लेके चले गए,
1: जी
0: बच्चे को रात को लेके गए, ये नहीं पता वो लेके कहाँ गए। वहाँ उससे खूब काम करवाया और उसके साथ मारपीट भी की। तो उस बच्चे का एक दिन हाथ जो है वो थ्रेसर में कट गया,
1: जी
0: और रात को ही वो जो मालिक है उसने अपने यहाँ से उसको रात को निकाल दिया, कहीं दूर छोड़ दिया, और वो बच्चा नू के बस अड्डे पे मिला, और वहाँ से किसी ने उसको यहाँ PGI में दाखिल करवाया। हम उस बच्चे के पास गए, बच्चे की मदद की, और उसके बाद जब ये मीडिया में हमने मामला उठाया, तब जाके 2 महीने बाद लगभग 200 CCTV चेक किए गए। रेलवे पुलिस ने पूरी ईमानदारी से काम किया और उस व्यक्ति को पकड़ा जिस व्यक्ति ने उस बच्चे के साथ जुल्म किए थे। आज वो व्यक्ति जेल में है। उस बच्चे की हमने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और जो दूसरे सरकारी संस्थान हैं उनसे मदद करवाई, तो और बच्चा अब वो अपने परिवार के पास है। लेकिन
1: जी
0: उसका हाथ हम नहीं बचा पाए। देखिए, हमारा जो सरकारी तंत्र है उसमें कुछ ऐसी गड़बड़ी है कि मदद चाहते हुए भी हम नहीं कर पाते।
1: क्योंकि जो कानून की जो प्रक्रिया होती है काफी जटिल होती है, तो कई
0: सर
1: बार
0: उसमें विनय जी, बस एक मैं ये बताना चाहूँगा
1: हाँ
0: कि वो जो उसका बैंक अकाउंट नहीं खुला बच्चे का, क्योंकि उसका एक हाथ नहीं है, हाथ तो उसका कट गया था, तो
1: जी
0: उसके फिंगरप्रिंट कैसे लें, उसका हाथ नहीं है।
1: जी
0: तो यहाँ जो बैंक के मैनेजर हैं उनका ये बनता था फर्ज, वो किसी न किसी तरह से उसका अकाउंट खोलते और जो पैसा था वो उनके
1: बेनिफिशियरी अकाउंट में
0: में
1: आ
0: चला
1: जाता।
0: जाता। जी,
1: जी संक्षेप में और कोई सक्सेस स्टोरी बताना चाहें।
0: बहुत सारे बच्चे जो काम की तलाश में यहाँ रोहतक में, मैं अपने रोहतक की ही बात करूँगा, पूरे हरियाणा की नहीं करूँगा, यहाँ जो आते हैं वो कई बार उनको कोई बहला फुसला के लेके आता है
1: जी
0: कि बड़ा अच्छा है, काम मिलेगा। कई लड़कियों के मामले में हमने ये देखा है कि उनको शादी के नाम पे लाते हैं कि वहाँ हम काम दिलवाएंगे, वहाँ शादी भी कर देंगे। तो यहाँ बेचने के भी मामले हैं कि नाबालिग लड़कियों को शादी के नाम पे भी बेच देते हैं, और जो बीच में दलाल हैं वो लेके जाते हैं। तो ये जो नेक्सस है, इसको तोड़ने के लिए जो हमारी एजेंसी हैं, सरकारी एजेंसी हैं, NGO हैं, इन सबको मिलके काम करना पड़ेगा, तभी हम बच्चों का भला कर पाएंगे। और आखिरी बात मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो बच्चों के लिए भी कोई कोर्स बनाया जाए, ऐसे बच्चे

0: जो बाल मजदूरी से मुक्त कराए गए हैं उनके पुनर्वास के लिए कोई ऐसा कोष हो जिससे उनकी पढ़ाई का खर्च पूरा हो और जब तक वो कोई बालिग ना हो जाएं, काम करने लायक ना हो जाएं, तब तक उनका खर्च चलता रहे।
1: जी बिल्कुल। तो सुभाष चंद्र जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और आपने बाल मजदूरी पर बहुत विस्तार से हमको जानकारी दी। इन सब के लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा के अंतर्गत सुभाष चंद्र से बातचीत, जिसका विषय था बाल मजदूरी व शोषण के संवैधानिक व न्यायिक पक्ष। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुबह सवेरे।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात, तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हमसफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: श्रोताओ, लाल बहादुर शास्त्री 9 जून अर्थात आज के ही दिन 1964 को भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के निधन के बाद उन्होंने 9 जून 1964 को अपने पद की शपथ ली थी। वह लगभग 18 महीने इस पद पर आसीन रहे। इस प्रमुख पद पर उनका कार्यकाल अद्वितीय रहा। शास्त्री जी ने काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि प्राप्त की। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात शास्त्री जी को उत्तर प्रदेश के संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। जवाहरलाल नेहरू का उनके प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 27 मई 1964 को देहांत हो जाने के बाद इनकी साफ सुथरी छवि के कारण ही शास्त्री जी को देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। 1964 में देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। उनके कार्यकाल में 1965 का भारत पाक युद्ध शुरू हो गया। इससे 3 वर्ष पूर्व चीन का युद्ध भारत हार चुका था। शास्त्री जी के अप्रत्याशित रूप से हुए इस युद्ध में राष्ट्र को उत्तम नेतृत्व प्रदान किया और पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी। इसकी कल्पना पाकिस्तान ने कभी सपने में भी नहीं की थी। ताशकंद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद 11 जनवरी 1966 की रात में ही रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी सादगी, देशभक्ति और ईमानदारी के लिए मरणोपरांत भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया। वास्तव में लाल बहादुर शास्त्री जी एक महान व्यक्तित्व के व्यक्ति थे।

श्रोताओ, बिरसा मुंडा शहीदी दिवस प्रतिवर्ष 9 जून को महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी लोकनायक धरती आबा को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मनाया जाता है। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध एक विशाल विद्रोह का नेतृत्व करने के बाद 9 जून 1900 को 25 वर्ष की आयु में रांची जेल में उनका निधन हो गया। बिरसा मुंडा ने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अंग्रेजों और स्थानीय जमींदारों द्वारा आदिवासी समुदायों के शोषण और दमनकारी भूमि नीतियों के खिलाफ उल गुलान या मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया। स्वायत्तता और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए उनका आह्वान पूरे भारत में पर्यावरण और स्वदेशी अधिकारों के आंदोलन को प्रेरित करता रहा है। उनकी शहादत दिवस के अतिरिक्त भारत सरकार ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी समुदायों के योगदान का जश्न मनाने के लिए उनकी जयंती 15 नवंबर

को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया है। उन्हें आज भी अत्यंत सम्मान दिया जाता है और उनका चित्र भारतीय संसद संग्रहालय में प्रदर्शित है, जो एक आदिवासी नेता के लिए एक दुर्लभ सम्मान है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सवेरे, आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 8 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार और 8:15 पर अंग्रेजी समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मारीवेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों की सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर फिर से जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। अमरीका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के दाम्बुला में। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: गृह मंत्रालय ने कहा है ये प्लेटफॉर्म व्यापार सुगमता, संपर्क, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप है। LPMS एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे भूमि बंदरगाहों के संचालन को एकीकृत प्रणाली में समाकलित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये प्रणाली कार्गो और यात्री प्रसंस्करण के लिए स्लॉट बुकिंग, भुगतान, ट्रैकिंग और सिंगल विंडो क्लीयरेंस सहित संपूर्ण डिजिटल कार्य प्रभावी प्रदान करेगी। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के दावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंडपोर्ट में नव विकसित हितधारक आवास सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे सीमा प्रबंधन और कर्मियों के लिए बुनियादी ढांचागत सहायता मजबूत होगी। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो रहा है। सम्मेलन में 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। इनमें ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुँच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
5: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
3: हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सहयोग, नवाचार और खाद्य सुरक्षा मजबूत करना है।
6: भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित कुल 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ भाग लेंगे। 13 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन की शुरुआत कृषि कार्य समूह की बैठकों से हो रही है। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, कृषि नवाचार, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे अहम विषयों पर चर्चा होगी। 12 जून को कृषि मंत्रियों का विशेष संवाद आयोजित होगा, जिसका फोकस लघु किसानों, महिलाओं एवं युवाओं के माध्यम से भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर रहेगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
3: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी देंगे।
7: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। वहीं सरकार ने अक्टूबर 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत व्यय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
8: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या होता है मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का, इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेंगे।
7: वहीं सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000

0: अनुसार आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
1: यहां पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खा के ठीक ठाक रह रहा हूँ।
0: सरकार ने बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवम्बर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने अस्पतालों के विस्तार और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत कर स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष में भारत के कोयला और खनन क्षेत्र में बड़ा बदलाव हुआ है। हैदराबाद में कल श्री रेड्डी ने बताया कि भारत ने 1 अरब टन कोयला उत्पादन का रिकॉर्ड हासिल कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश बन गया है। उन्होंने कहा कि कोयला क्षेत्र से लगभग 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 25 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में आग की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 6 अन्य घायल हो गए हैं। 2 लोगों की हालत गंभीर है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतकों के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं इस्पात मंत्री HD कुमार स्वामी और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमार स्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N. चंद्रबाबू नायडू ने हादसे की जांच के लिए एक विशेष समिति गठित की है। समाचार कक्ष से मैं चाहत सिंह।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ओमान के मस्कत में भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में MT मेरिवेक्स जहाज पर लगी आग के बाद 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। दूतावास ने त्वरित कार्रवाई के लिए ओमान का आभार भी जताया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रवक्ता उपेश कुमार शर्मा ने बताया था कि दोपहर करीब 1:30 बजे जहाज पर आग लगने की सूचना मिली। हादसे की जाँच जारी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए $1,00,000 के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लगाया जा सकता। H-1B वीजा के लिए जरिए अमरीकी कंपनियां दुनिया भर के कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं। भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। ईरान और इसराइल के बीच एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने की घोषणा हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष तत्काल संघर्ष विराम और शांति वार्ता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर यह प्रक्रिया फिर से बाधित हो सकती है। भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के दाम्बुला में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला में अफगानिस्तान ए की टीम भी शामिल है। भारत ए का अगला मैच अफगानिस्तान ए से बृहस्पतिवार को होगा। फाइनल 21 जून को होगा। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के पहले अभ्यास मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 26 रन से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 179 रन बनाए। भारती फूलमाली ने नाबाद 56 रन और स्मृति मानधना ने 39 रन का योगदान दिया। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 153 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राज्यों तथा पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ में आज लू चलने की आशंका व्यक्त की है। कोंकण और गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में दिन भर गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। तटीय कर्नाटक, केरलम, माहे और उत्तरी तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में आज तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
4: धन्यवाद मुकेश। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों में बगावत की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, टीएमसी में टूट, 20 सांसदों का अलग गुट एनडीए के साथ। पत्र के अनुसार काकोली घोष की अगुवाई में अलग सेटिंग की भी मांग। दैनिक जागरण ने तृणमूल में एक और टूट शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जैसी आशंका थी तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सदस्यों ने भी ममता बैनर्जी के खिलाफ बगावत कर दी है। इससे पहले पार्टी के 80 में से 60 विधायक अलग गुट बनाकर नेता प्रतिपक्ष का चयन कर चुके हैं। पंजाब केसरी ने विपक्षीय एकता का अंतर विरोध शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, हाल में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली शानदार सफलता बताती है कि इंडिया गठबंधन में इतनी भी कुव्वत नहीं है कि उसके सहयोगी दलों के नेता एक साझा मंच पर इकट्ठे होकर भाजपा को ललकार सके। हिंदुस्तान ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को का साक्षात्कार देते हुए लिखा है, चीन से सिर्फ उम्मीद के भरोसे शांति संभव नहीं, थिएटर कमांड पर भी सहमत। जनसत्ता के अनुसार इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर हमले किए, 8 अप्रैल के बाद यह गंभीर झड़प, ट्रंप की अपील के बाद दोनों देशों ने किया संघर्ष विराम। पत्र के अनुसार भारत ने नागरिकों को सलाह देते हुए लिखा है, ईरान और इसराइल छोड़े भारतीय और यात्रा भी ना करें। अमर उजाला ने दिया है, वायुसेना के हेलीकॉप्टर पहुंचाएंगे नीट के प्रश्न पत्र, पहली बार सरकारी प्रोफेसर और शिक्षकों ने तैयार किया पेपर। बाहरी को जिम्मेदारी नहीं, लॉजिस्टिक्स सेंटर से परीक्षा केंद्र तक जीपीएस से निगरानी। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है, पिछले 12 वर्ष में भारत में कई परिवर्तन आए। देशबंधु की सुर्खी है, कल्याणकारी योजनाओं से 12 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले।
2: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य में एमटी मरवेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। अमेरिका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज दामबुला में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सरबजीत कौर। द हेडलाइंस। Union Home Minister Amit Shah to launch Land Port Management System in New Delhi today. 5-day BRICS Agriculture Ministers meeting to begin today in Indore, Madhya Pradesh. Indian Embassy in Muscat confirms rescue of all 24 Indian seafarers aboard MT Merivex after fire incident south of Strait of Hormuz. Iran and Israel announce halt in attacks against each other but warn of retaliation if ceasefire breached again. U.S. Federal Court strikes down President Donald Trump's $1,00,000 H-1B visa fee. And in men's cricket, India A to take on Sri Lanka A in opening match of Tri-Nation Series at Dambulla this morning. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah will launch the Land Port Management System, LPMS, in New Delhi today. This initiative reflects the government's commitment to smart border management, aiming to enhance efficiency, transparency and security in cross-border trade and passenger movement through technology-driven solutions. More details from our correspondent.

असलने सन्नी आखड़गात में, असलने सन्नी आखड़गात में, आय पैर में पद में रम।

क्या जराती से लिप्पू की प्यारी दराती से इस काया खेती गुरु पे नारद जी ने दया करी थी अपने भगत।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हमसफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: अब जवाब है रानी का। रानी राजा से कहती है, महाराज मुझे एक सपना आया है और सपने में पता नहीं क्या क्या दिखा, तो सुनिए रागिनी। रानी के मुंह से

0: श्रोतो, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से कार्यक्रम लोक संगीत। हमारे कलाकार हैं रतनलाल। आइए सुनते हैं अगला गीत।
1: तो रानी कहती है, महाराज कोई बात नहीं, सुपने गलत होते होंगे, पर आपके लिए मैंने पानी डाल रखे हैं, आप स्नान करके चले जाना। तो इस मौके रानी सुनिए।

भोजन की फरक नहीं नीताम न तजापति का प्रेम हो कितने कष्ट पड़े सीता में हर रामायण और गीता में मेरा

भले घरा की हो सपति ते, भले घरा की हो सपति ते, वो सपने में भी डरती रह सदा सुहागण बड़ बागण और नाव रहेगा जो ना अदब पति का कति जगत में हो सक।

हाँ जी, किस्सा है गोपी चंद का। अब रानी अभय सिंह दीवान को कहती है कि महाराज भाई राजा को बुला लिया, तो यहाँ से रागनी शुरू होती है। सुनिए।

हाँ तो सुनिए साहिबान, ये रागनी उस मौके की है। राजा गोविंद कहता कि रानी, ये सपने आठ जंजाल होते हैं, इनमें कोई वजन नहीं होता। सुनिए क्या कहा।

सनातन गोरी यो संसार स्वप्न के सीमा सच्ची माने बातन गोरी आयो संसार स्वप्न के सीमा सच्ची माने बड़े बड़े रे क्या करें।

अपने पति का कोरोना आता, तुम तो दो सपने का ख्याल और बड़े बड़े रे कहा करे, जो सपना हो से आल जंजाल, तेरे की तरिया पटरानी मन भी सपना आया काल, तेरे की तरिया पटरानी मन भी सपना आया। हाँ कान और ध्यान लगा के सुन ले, जो सर

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं केके के गाए हुए इस गीत के साथ। फिल्म का नाम है रहना है तेरे दिल में। गीत लिखा है समीर ने और संगीत दिया है हरीश जयराज ने।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाए समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं गीत। स्वर है लता मंगेशकर सबीर कुमार का। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत दिया है RD बर्मन ने और फिल्म का

0: आइए सुनते हैं किशोर कुमार के स्वर में मनचली फिल्म से ये गीत। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: क्या हुआ?
2: हाय, गम का फसाना बन गया अच्छा।
1: अच्छा जी,
2: एक बहाना बन गया अच्छा।
1: अच्छा,

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं गीत जिसे लिया है फिल्म मन से। आवाजें हैं उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति की। गीत लिखा है समीर ने, संगीत दिया है संजीव दर्शन ने।

श्रोता, आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे लिया है फिल्म लोफर से। आवाज आशा भोसले की है, गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: कार्यक्रम का अगला गीत लिया है फिल्म दीवाना से। आवाजें हैं अलका याग्निक, कुमार सानू की, और बोल लिखे हैं समीर ने, धुन तैयार की है नदीम श्रवण ने।

मोहम्मद रफ़ी गीता दत्त के स्वर में अब आपको सुनवा रही हैं मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म से ये गीत। गीतकार हैं मजरू, संगीतकार ओपी नैयर।

श्रोताओ आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर के स्वर में सौतन की बेटी फिल्म से ये गीत। गीतकार हैं सावन कुमार, संगीत दिया है वेदपाल ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म सौतन की बेटी से ये गीत, आवाज़ थी लता मंगेशकर की। गीतकार थे सावन कुमार और संगीतकार थे वेदपाल।

अभी आप सुन रहे थे एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में ये गीत। फिल्म का नाम था हम आपके हैं कौन। गीत लिखा था देव कोहली ने, संगीत दिया था राम लक्ष्मण ने। श्रोताओं, अब आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति और इस गीत को लिया है फिल्म मेरे सनम से। आवाज़ है आशा भोसले की, गीत लिखा है मजरू ने और संगीत दिया है ओपी नैयर ने।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 10 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार और 10:05 पर अंग्रेजी समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। यह पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो रहा है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुँच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
1: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोह का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। पुदुचेरी में मंत्रिमंडल विस्तार के तहत राष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री की सलाह पर 3 नए मंत्रियों की नियुक्ति की है। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के विधायक पी राजवेलु और वीपी शिवा कोलुंधु तथा भाजपा विधायक जीएनएस राजशेखरन को पुदुचेरी सरकार में मंत्री नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति शपथ ग्रहण के बाद प्रभावी होगी। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में हुई आग की दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 6 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ओमान के मस्कत में भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मेरिवेक्स जहाज पर लगी आग के बाद 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। दूतावास ने त्वरित कार्रवाई के लिए ओमान का भी आभार व्यक्त किया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रवक्ता उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि दोपहर करीब 1:30 बजे जहाज पर आग लगने की सूचना मिली थी। हादसे की जांच जारी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए 1 लाख अमरीकी डॉलर के शुल्क को अवैध करार दिया है। यह शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के तहत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लगाया जा सकता। अमेरिका में भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। H-1B वीजा के जरिए अमरीकी कंपनियां दुनिया भर में कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने की घोषणा की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष तत्काल संघर्ष विराम और शांति वार्ता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर यह प्रक्रिया फिर से बाधित भी हो सकती है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने उलगुलान आंदोलन के माध्यम से ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता का स्वर बुलंद किया। मौसम विभाग ने आज उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राज्यों तथा पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ में लू चलने की संभावना व्यक्त की है। कोंकण और गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में दिन भर गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। और खेलों में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के पहले अभ्यास मैच में भारत ने वेस्ट इंडीज को 26 रन से हरा दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 179 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. Prime Minister Narendra Modi today said that the government has spared no effort in empowering the country's youth, women and farmers over the past 12 years. In a social media post, Mr. Modi said, "With the blessings of 1.4 billion citizens and the spirit of nation first, the government is dedicated to trust, development and public welfare." The Prime Minister noted that as a result of these tireless efforts, today the country has gained a new identity on the global stage from infrastructure to the digital revolution. Mr. Modi underlined that to realize the resolve of a developed India, the government will continue to move forward relentlessly on this path of service, good governance and prosperity. Prime Minister Narendra Modi has said that through continuous efforts inspired by the ethos of Sabka Saath Sabka Vikas over the past 12 years, the country is moving towards becoming a strong and self-reliant India. Sharing a Sanskrit quote, Mr. Modi said that dedication and service spirit have been the government's invaluable capital for nation building. Union Home Minister Amit Shah will launch the Land Port Management System LPMS today in New Delhi. This initiative reflects the government's commitment to smart border management, aiming to enhance efficiency, transparency and security in cross-border trade and passenger movement through technology-driven solutions. LPMS is a digital platform designed to integrate operations across land ports into a unified system. It will enable secure real-time exchange of logistics and regulatory information, bringing land ports on a par with digital systems already in place at airports and seaports. Union Home Minister paid tributes to Lord Birsa Munda on his death anniversary today. In a social media post, Mr. Shah said, "Lord Birsa Munda sounded the conch of freedom against British rule through the Ul Gulan movement, calling him the immortal symbol of tribal pride, patriotism and cultural consciousness." The Home Minister noted that Birsa Munda organized tribal society to protect their rights and heritage and gave the conservation of water, forest and land the form of a people's movement. Ministry of Coal has notified the Coal Exchange Rules 2026, paving the way for the establishment of coal exchanges in the country to enable transparent and market-driven coal trading. According to the ministry, the new framework will transform coal marketing from the traditional one-to-many sales model.

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार दिन के 12:30:06 हुए हैं। अब हमारी आज की दूसरी प्रसारण सभा आरंभ होती है। सभा की शुरुआत में सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। आप सबको विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ जिसे हमें भेजा है
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल रंजीत कौर जयप्रकाश राहुल प्रियंका और मन्नत जी ने। लिखते हैं
3: मानव की इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती
2: जी।
3: एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जाग जाती है। हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए और जो मिल जाए उसी में संतोष करना चाहिए।
2: धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
3: तो पहला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी निगहत परवीन अब्बासी शाहनवाज अब्बासी सरफराज अब्बासी।
2: कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा जी।
3: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा प्रकाश अरोड़ा चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है
2: सप्रेम नमस्ते जी। गर्मी की छुट्टियों में बच्चे पेड़ पौधे लगाना पक्षियों को दाना खिलाना डायरी लिखना और दादा दादी नाना नानी के यहाँ जाना कार्य कर सकते हैं।
3: आगे आप लिखते हैं सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी उमंग कार्यक्रम में गर्मी से संबंधित विषय पर जानकारी एवं जो अन्य कार्यक्रम सुनाए जा रहे हैं बेहद पसंद आ रहे हैं। कार्यक्रम सुनकर गर्मी में भी दिल को ठंडक का एहसास हो रहा है
2: जी।
3: आपने यहीं पर विराम नहीं दिया, आपने आगे लिखा है
2: भारत के वीर सेनानियों पर आधारित कार्यक्रम की श्रृंखला वीर गाथा उमंग कार्यक्रम में सुनवाई जा रही है वो प्रशंसा योग्य है। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी एवं लांस नायक अल्बर्ट एक्का जी पर केंद्रित कार्यक्रम सुनकर हमारी आंखें नम हो गईं। कार्यक्रम बेहद पसंद आया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए समस्त उमंग टीम का हम दिल से आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद आप सभी श्रोताओं को। और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए।
3: तो विमलेश जी अब ये बताइए कि ये भी जानिए श्रृंखला में आज हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा।
2: अजीत जी इस सप्ताह हम पूरे विश्व परिवार की अनेक रोचक परंपराओं की चर्चा करेंगे
3: जी।
2: आज की चर्चा का विषय होगा जापान का चाय समारोह, इसे टी सेरेमनी भी कहा जाता है और जापानी भाषा में इसे चानु यू कहते हैं। ये दुनिया की सबसे सुंदर और अनुशासित परंपराओं में से एक है
3: जी। हाँ श्रोताओ, जापान की चाय परंपरा केवल चाय पीना नहीं लेकिन सम्मान शांति अनुशासन और व्यवहार की सुंदरता का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो आइए जानते हैं विमलेश जी से कि ये परंपरा जापान में कब शुरू हुई।
2: जी अजीत जी, हम सब जानते हैं कि चाय की शुरुआत चीन से हुई है। 9वीं शताब्दी की बात है जब कुछ बौद्ध भिक्षु चीन से चाय की पौध लेकर जापान आए और तब चाय का प्रचलन जापान में भी शुरू हुआ।
3: लेकिन विमलेश जी, ऐसी कौन सी बातें हैं जो जापानी चाय समारोह को इतना विशेष बनाती हैं कि हम उसकी चर्चा कर रहे हैं।
2: जी अजीत जी, जापान में चाय पीना एक विशेष अर्थ रखता है।
3: जैसे?
2: जैसे कि वहाँ चाय पीना एक औपचारिक और सामान्य बात नहीं है। इस समारोह में बहुत सी बातों का खास ध्यान रखा जाता है। आइए अपने श्रोताओं को कुछ जापानी शब्दों से भी परिचित कराते हैं जो वहाँ की चाय परंपरा को खास बनाते हैं।
3: जी सचमुच चाय पीने के संदर्भ में इन जापानी शब्दों को जानना बड़ा रोचक रहेगा।
2: अजीत जी, भिक्षुओं ने इसे आध्यात्मिकता से जोड़ दिया और इसके कुछ नियम बनाए।
3: तो क्या क्या नियम है इसके?
2: जापान का चाय समारोह चार मूल सिद्धांतों पर आधारित है। पहला सिद्धांत है वाह
3: यानी
2: हारमोनी या सामंजस्य।
3: और दूसरा शब्द क्या है?
2: दूसरा शब्द है केई
3: जी
2: यानी रिस्पेक्ट या सम्मान।
3: और श्रोताओं, तीसरा शब्द है से यानी पवित्रता या प्यूरिटी। और चौथा शब्द है याकू यानी आंतरिक शांति या इंटरनल पीस।
2: श्रोताओं, इन चार

0: सिद्धांतों पर टिकी है जापानी चाय परंपरा, जिससे हम स्पष्ट अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितनी अर्थपूर्ण है। तो जी जी अब करते हैं साझा कुछ और रोचक बातें जो जापानी चाय परंपरा में अनिवार्य मानी जाती हैं।
1: जी हाँ, तो श्रोताओं, चाय समारोह में अतिथि सर झुकाकर अभिवादन करते हुए चाय का कटोरा दोनों हाथों से लेते हैं। ये सम्मान दर्शाने का प्रतीक है।
0: जी, एक और खास बात यह है कि इस परंपरा में अतिथि चाय का कटोरा लेकर कटोरे को मेजबान की तरफ देकर हाथ को हल्का सा घुमाता है। इस कार्यक्रम में इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता है कि अतिथि कहाँ बैठेंगे, उन्हें कैसे आराम दिया जाए, ये भी ध्यान दिया जाता है कि प्याला कैसा होगा।
1: जी, और अब एक जानकारी और आपको दे दें कि समारोह का आयोजन पारंपरिक तौर पर कहाँ होता है।
0: ये समारोह अक्सर एक शांत टी हाउस या चाय कक्ष में होता है जो लकड़ी और बांस से बना होता है। फर्श पर परंपरागत चटाई बिछी होती है, बाहर छोटा सा बागीचा भी हो सकता है। चाय घर या कक्ष को जापानी में चा शित्सु कहा जाता है। पारंपरिक रूप से चाय पार्टी में किमोना पहना जाता है। चाय कक्ष के मार्ग में रंगीन छोटे छोटे पत्थर मार्गदर्शक के रूप में लगाए जाते हैं।
1: यानी कुल मिलाकर ये चाय समारोह हो सादगी, विनम्रता और प्रकृति के सौंदर्य का मेल कहा जा सकता है।
0: जी
1: विमलेश जी, हमने ये तो बताया ही नहीं कि जापानी चाय समारोह में कौन सी चाय परोसी जाती है।
0: अरे हाँ, ये तो हम भूल ही गए थे श्रोताओं, इस समारोह में माचा चाय दी जाती है। ये चाय की हरी पत्तियों को पीसकर पाउडर की तरह बनाई जाती है। जहां तक इसके स्वाद की बात है, स्वाद थोड़ा कड़वा हो सकता है।
1: कड़वा हो सकता है, तो इसीलिए सबसे पहले एक जापानी मिठाई दी जाती है जिसे वागाशी के नाम से जाना जाता है। पूरे जापान में ये मिठाई बहुत ही लोकप्रिय है। और श्रोताओं, एक खास बात आपको बताएं, प्रत्येक मिठाई बिल्कुल कलात्मक दिखाई देती है।
0: जी, तो श्रोताओं, जापान की चाय परंपरा हमें सिखाती है कि चाय पीना मात्र चाय पीना ही नहीं है, बल्कि वर्तमान क्षण को पूरी शांति और सुंदरता के साथ जीना है।
1: तो ये चाय समारोह हमें संदेश देता है कि साधारण सी चीज यानी एक कप चाय भी सम्मान, परस्पर सामंजस्य और व्यस्त जीवन में गहरी शांति का अनुभव बन सकती है।
0: जी, तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी जानकारी, ये जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
1: चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
0: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in।
1: और हाँ,
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: जी, तो चलिए अब रुख करते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है संवदिया।
0: ये कार्यक्रम हमें उस समय की याद दिलाता है जब इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम नहीं थे। उन दिनों में संवाद या कोई सूचना लेकर जाने वाले को संवदिया कहा जाता था। संवदिया मात्र संदेश या पत्र वाहक ही नहीं थे, लेकिन समाज के महत्वपूर्ण सेतु थे जो एक दूसरे को जोड़ते थे। कार्यक्रम एक मार्मिक नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
2: आजकल तो घर बैठे ही कहीं से कहीं खबर भेज सकते हैं और वहां का कुशल संवाद मंगवा सकते हैं। फिर आज बड़ी हवेली से बड़ी बहुरिया की ओर से हरगोबिंद संवदिया की बुलाहट क्यों हुई?
3: हाँ, लो आ गई बड़ी हवेली। निश्चय ही कोई गुप्त समाचार ले जाना है। चांद सूरज को भी ना मालूम हो, परेवा पंछी तक न जाने। हाँ। पाए लागू बड़ी बहुरिया।
4: आ गए भैया।
3: हाँ।
4: लो, ये पीढ़ी सर का लो, कुछ देर बैठ जाओ।
3: हाँ। बड़ी हवेली तो अब नाम मात्र की ही बड़ी हवेली है, जहां नौकर नौकरानियों की भीड़ लगी रहती थी। आज हवेली की बड़ी बहुरिया अपने हाथ से सूपा में अनाज लेकर भटक रही है। ओह, कहां गए वो दिन। बड़े भैया क्या गए, जैसे सब खेल खत्म हो गया।

0: तीनों भाइयों ने आपस में झगड़ा शुरू किया। रैयतों ने जमीन पर दखल कर लिया। फिर तीनों भाई गांव छोड़कर शहर में जा बसे। रह गई बड़ी बहुरिया। कहां जाती बेचारी?
1: अरे ये मुदियाइन बूढ़ी काकी काहे बड़बड़ा रही है?
2: आए देखो बड़ी बहुरिया, उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है, पर दाम देते समय कड़वा। मैं तो आज दाम लेकर ही उठूंगी यहाँ से। हाँ।
3: अरे मुदियाइन काकी, बाकी बकाया वसूलने का ये काबुली कायदा तो तुमने खूब सीखा है।
2: क्या कहा? काबुली कायदा? फिर काबुली का नाम लिया तो अच्छा ना होगा, कहे देती हूँ। हाँ
3: लो।
2: देखो जी, मैं फिर आऊंगी और अब की बार उधार लिए बिना हिलूंगी नहीं यहाँ से, कहे देती हूँ। बड़े आ जाते हैं उधार लेने, मांगने जाओ तो वापस नहीं करते। और हाय
4: हर गोविंद भाई, तुमको एक संवाद ले जाना है, आज ही। बोलो, चाहोगे ना?
3: कहाँ बड़ी बहुरिया?
4: मेरी माँ के पास।
3: माँ के पास? कहिए क्या संवाद है?
4: माँ से कहना मैं भाभी भाभियों की नौकरी कर अपना पेट पालूंगी, लेकिन यहाँ अब नहीं रह सकूंगी। बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं? किस लिए? किसके लिए?
3: बड़ी बहुरिया।

0: हर गोबिन भैया, ये 5 का नोट ही बचा है, अब पूरा राह खर्च भी नहीं जुटा सकी। आने का खर्च माँ से मांग लेना।
1: ना ना बड़ी बहुरिया, राह खर्च देने की जरूरत नहीं है, मैं इंतजाम कर लूंगा।
0: तुम कहाँ से इंतजाम करोगे? और सुनो, लगता है सुनते ही भैया तुम्हारे साथ आ जाएंगे।
1: अरे वो तो ठीक है, लेकिन मैं इंतजाम कर लूंगा बहुरिया, आप फिकर मत करिए। ये नोट रखिए, हारे गाढ़े काम आएंगे। अच्छा, मैं आज 10 बजे की गाड़ी से ही निकल जाऊंगा।
0: अच्छा, मैं तुम्हारी राह देखती रहूंगी।
1: अच्छा, चलता हूँ।
0: अच्छा।
2: संवाद यानी संदेश पहुंचाने का काम सहज नहीं होता। प्रत्येक शब्द को याद रखना, जिस सुर और स्वर में संवाद सुनाया गया है ठीक उसी ढंग से सुनाना बहुत कठिन है। बिना मजदूरी लिए ही जो गांव-गांव संवाद पहुंचाए उसको और क्या कहेंगे, निठल्ला, कामचोर, पेटू और क्या क्या नहीं। पर सच ये भी है कि गांव में कौन ऐसा है जिसके घर की माँ बहु बेटी का संवाद हरगोबिंद ने नहीं पहुंचाया है।

0: भाई साहब,
1: हाँ
0: थाना बिहपुर में ये डाक गाड़ी रुकती है या नहीं?
1: अरे भैया, थाना बिहपुर में सभी गाड़ियां रुकती हैं।
0: अच्छा अच्छा
1: हाँ, और मैं भी वहीं पर उतरूंगा।
0: अच्छा,
1: घबराओ मत, बता दूंगा।
0: तो कितना समय और लगेगा?
1: अरे बस थोड़ी दूर है, आने वाला है।

0: थाना बेहपुर पर गाड़ी पहुंची तो हरगोबिंद का जी भारी हो आया। बड़ी बहुरिया का संवाद सुनाते समय वो अपने कलेजे को कैसे संभालेगा। बड़ी बहुरिया के संवाद रह रह कर उसके कानों में गूंज रहे थे।
1: हरगोबिंद भाई, माँ से कहना भगवान ने आंखें फेर ली, लेकिन मेरी माँ तो है, किस लिए किसके लिए? मैं बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं, कब तक जीऊं?
2: बड़ी बहुरिया, हम क्या करें?
0: हरगोबिंद का मन कलपने लगा। गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़कर चली जाएगी तो गांव में क्या रह जाएगा? किस मुंह से वो ऐसा संवाद सुनाएगा? ये सोचते सोचते हरगोबिंद गांव पहुंच ही गया।
3: माँ, माँ देखो, हरगोबिंद काका आए हैं।
4: पाए लागू माँ जी।
5: जीते रहो हरगोबिंद बेटा, क्या समाचार है?
4: जी, आपके आशीर्वाद से सब ठीक है।
5: मेरी बेटी का कोई संवाद?
4: संवाद? जी संवाद तो कोई नहीं।
5: हाँ?
4: बस मैं कल सिरसिया गांव आया था तो सोचा कि चलकर आप लोगों के दर्शन कर लूं।
5: तो तुम कोई संवाद लेकर नहीं आए हो?
4: जी नहीं, कोई संवाद नहीं। ऐसे ही बड़ी बहुरिया ने कहा है कि हाँ, अगर छुट्टी हुई तो दशहरे के समय गंगा जी के मेले में आकर माँ से भेंट मुलाकात कर जाऊंगी।
5: सो तो है।
4: अरे छुट्टी मिलेगी तो कैसे, सारी गृहस्थी बड़ी बहुरिया के ऊपर ही तो है।
5: अरे हरगोबिंद, मैं तो बबुआ से कह रही थी कि जाकर अपनी दीदी को लिवा ला, यहीं रहेगी। अरे वहां अब क्या रह गया है उसका? जमीन जायदाद तो सब चली गई, तीनों देवर भी शहर जाकर बस गए, कोई खोज खबर भी नहीं लेता उसकी। अब तो मेरी बेटी अकेली रह गई है।
4: नहीं नहीं नहीं नहीं माँ जी, जमीन जायदाद अभी भी कुछ कम नहीं है। टूट फूट गई है तो भी है तो आखिर बड़ी हवेली। बड़ी बहुरिया का गांव ही परिवार है, हमारे गांव की लक्ष्मी है बड़ी बहुरिया, और गांव की लक्ष्मी गांव छोड़कर कैसे जाएगी माँ जी?
5: हाँ सो तो है। चलो अच्छा है बबुआ, अब थोड़ा जलपान कर लो।
4: अच्छा अच्छा माँ जी।
5: अरे हरगोबिंद, क्या सोच रहे हो? कुछ खाते क्यों नहीं बबुआ?
0: हरगोबिंद ने थाली की ओर देखा। थाली में दाल भात, तीन किस्म की भाजी, घी, पापड़, अचार, इतना सब कुछ। उधर बड़ी बहुरिया का बथुआ साग उबाल कर खाना। हरगोबिंद के मुंह में एक निवाला भी न जा सका। वो सोचने लगा, ये उसने क्या किया, वो किस लिए आया था, वो झूठ क्यों बोला? ये सोच सोच कर रात भर हरगोबिंद को नींद ही नहीं आई। उसकी आंखों के सामने बड़ी बहुरिया बैठी रही, सिसकती रही। उसने जी कड़ा किया, वो संवदिया है, उसका काम है सही सही संवाद पहुंचाना। उसने निर्णय लिया कि वो सुबह उठते ही बूढ़ी माता को बड़ी बहुरिया का सही संवाद अक्षर अक्षर सुना देगा। अगले दिन सुबह उठते ही वो माँ जी के पास जा पहुंचा।
4: माँ जी,

0: हरगोबिंद के पास तो बस कटिहार तक जाने के पैसे थे। गाड़ी में बैठते ही उसकी हालत अजीब हो गई। वो कहाँ आया था?
1: कटिहार आ गया। उतर लो, जाना है जलालगढ़। टिकट कटिहार तक का ही है। जलालगढ़ है 20 कोस दूर। अरे बड़ी बहुरिया राह देख रही होगी, पैदल ही चलता हूं। बीस कोस की मंजिल भी भला कोई दूर की मंजिल है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय।

0: भूख से बेहाल, थकान से चूर, लड़खड़ाता हुआ हरगोबिंद बहुरिया के दरवाजे पर गिर पड़ा।
1: हरगोबिंद भाई आ गए? हाय, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ?
2: बड़ी बहुरिया।
1: हरगोबिंद भाई, लो एक घूंट दूध ले लो, मुंह खोलो। हाँ लो, आप पी लो, पी लो, शाबाश शाबाश। हाँ शाबाश, अब जी कैसा है?
2: बड़ी बहुरिया, मुझे माफ कर दो।
1: कहे?
2: मुझे माफ कर दो,
1: पर
2: मैं तुम्हारा संवाद न कह सका। तुम गांव छोड़कर मत जाओ।
1: हरगोबिंद भाई,
2: मैं तुमको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, कोई कष्ट नहीं। मैं तुम्हारा बेटा। बड़ी बहुरिया, तुम सारे गांव की माँ हो, तुम्हारा सब काम करूंगा मैं।
1: हरगोबिंद भाई, तुम
2: मैं अब हम निठल्ला बैठा नहीं रहूंगा। बोलो बोलो बड़ी माँ, तुम गांव छोड़कर चली तो नहीं जाओगी? नहीं जाओगी ना? नहीं जाओगी ना?
1: नहीं नहीं नहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी।
2: बड़ी माँ,
3: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम संवदिया। आशा है कि यह कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रिया इस पर जरूर दीजिए।
4: Join together in the Janajatiya Garima Utsav, celebration of pride, aspiration, and the journey towards Viksit Bharat. Inspired by the vision of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, tribal communities move forward with hope, dignity, and determination. Celebrating Janajatiya Garima Utsav 2026, 10th May to 9th June, showcasing progress across every generation towards a stronger, inclusive, and empowered Viksit Bharat.
5: और अब सुनते हैं एक और खूबसूरत कार्यक्रम जो हमें लेकर जाएगा मरुभूमि यानी
3: मरुस्थल में या रेगिस्तान में
5: जी,
3: और बताएगा विस्तार से रेगिस्तान के बारे में। तो आइए जानते हैं रेगिस्तान या मरुभूमि के बारे में और सुनते हैं कार्यक्रम द डेजर्ट।
6: दोज ऑफ अस हु लिव इन रीजन्स कवर्ड विद फॉरेस्ट्स एंड सराउंडेड बाय हिल्स may find it difficult to imagine what a desert is

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्रिस्तरीय बैठक 13 जून को होगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2024 को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीमसेन तूती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वता नेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है।
1: पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे हवाई हमलों में बड़ी संख्या में आम लोग हताहत हो रहे हैं। भारत इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। अफगान क्षेत्र पर किए गए ऐसे सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्दोष नागरिकों की मौत और विध्वंस को सैन्य कार्रवाई का नाम देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपनी आंतरिक विफलताओं और समस्याओं का दोष पड़ोसी देशों पर मढ़ना पाकिस्तान की पुरानी प्रवृत्ति रही है।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ एक मजबूत और शक्तिशाली समझौते के बेहद करीब है। उन्होंने कहा कि ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिका की नाकाबंदी बमबारी से कहीं अधिक प्रभावी साबित हुई है। श्री ट्रंप ने कहा कि सीमा पार हालिया मिसाइल हमलों के बावजूद द्विपक्षीय वार्ता आगे बढ़ रही है। आज झारखंड सहित पूरा देश महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मुकाबला श्रीलंका में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 42वें ओवर में 3 विकेट पर 202 रन बना लिए हैं। मौसम विभाग ने आज उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राज्यों तथा पश्चिमी राजस्थान तथा विदर्भ में लू की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। हरियाणा विधानसभा के तत्वाधान में चंडीगढ़ में आयोजित राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन के जोन 2 सम्मेलन के आज दूसरे दिन प्रथम एवं द्वितीय सत्र में भविष्य की चुनौतियों से निपटने और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में जागरूक समाज एवं विधायकों की भूमिका विषय पर मंथन किया गया। तीसरे सत्र के
1: वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में जागरूक समाज एवं विधायकों की भूमिका विषय पर मंथन किया गया। तीसरे सत्र के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मीडिया के साथ वार्ता करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने कहा कि विकसित भारत का संकल्प एक राष्ट्रीय संकल्प है, जिसमें देश के प्रत्येक नागरिक और संस्था को सहयोग करना होगा। श्री बिरला कल चंडीगढ़ स्थित हरियाणा विधानसभा के चैम्बर में राष्ट्रमंडल संसदीय

0: उन्होंने कहा कि विधायकों की इस संकल्प की प्राप्ति में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि विधायक अपने क्षेत्रों में नीतियों और जन कल्याणकारी पहलों के माध्यम से धरातल पर परिवर्तन लाने के सबसे प्रभावी माध्यम होते हैं। संसदीय लोकतंत्र में जन भागीदारी के महत्व को रेखांकित करते हुए श्री बिरला ने कहा कि जन संवाद और सार्थक चर्चाओं के माध्यम से नागरिकों में यह विश्वास पैदा होना चाहिए कि यह सदन उनका अपना है और जन प्रतिनिधि उनकी वास्तविक आवाज हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने आह्वान किया कि देश में ऐसा जन आंदोलन खड़ा होना चाहिए जिससे प्रत्येक नागरिक यह महसूस कर सके कि विकसित भारत के निर्माण में उसका भी अमूल्य योगदान है। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि जब समाज के हर व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित होगी, तब भारत की सामूहिक शक्ति और विशेष रूप से हमारी युवा शक्ति इतनी सुदृढ़ हो जाएगी कि हम वर्ष 2047 से पहले ही विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध कर लेंगे। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने कल हरियाणा विधानसभा भवन में नव स्थापित पार्लियामेंट्री रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सेंटर का भी उद्घाटन किया, जो विधायी कार्यों की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। हरियाणा विधानसभा के तत्वाधान में आयोजित राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन के जोन 2 सम्मेलन की सांस्कृतिक संध्या के अवसर पर कल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि संविधान लोकतंत्र की आत्मा है। इस अंतरात्मा की आवाज को सुनकर देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। वो चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में हरियाणा कला एवं संस्कृति विभाग तथा रास कला मंच के सहयोग से मंचित नाटक संविधान के नायक को देखने के बाद संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल असीम कुमार घोष तथा पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया ने भी नाटक के संदेश एवं कलाकारों के अभिनय की प्रशंसा की। श्री नायब सिंह सैनी ने नाटक के जीवंत अभिनय एवं प्रेरणादायक प्रस्तुति की सराहना करते हुए कहा कि जिस प्रकार से रामायण में हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाने का संस्मरण है, उसी प्रकार आज इस नाटक के माध्यम से कलाकारों एवं लेखक ने दर्शकों को संविधान के प्रति उनके दायित्वों की याद दिलाई है। ऐसे नाटक समाज को संस्कृति एवं देशभक्ति का मार्ग दिखाने में अपनी महती भूमिका निभाते हैं। नाटक के मंचन के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, उपसभापति श्री हरिवंश, हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष कृष्ण लाल मीठा, शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार के अलावा विभिन्न राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सांसद, विधायक एवं विधान मंडलों के अधिकारी उपस्थित रहे। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में जींद के चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय आज एक दिवसीय जिला स्तरीय योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण शिविर एवं प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
1: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर इस समय आप जुड़ चुके हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। चित्रपट संगीत, आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का पहला गीत वंदना फिल्म से। आवाज लता मंगेशकर की है, गीत अनजान का, संगीत रवि का है।

कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ। इस गीत के लिए संगीत तैयार किया है कल्याण जी आनंद जी ने। फिल्म का नाम है आमने सामने।

कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ, निदा फाजली के बोल हैं और संगीत उषा खन्ना का। फिल्म का नाम है आप तो ऐसे ना थे।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: चित्रपट संगीत श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आसपास फिल्म से, आवाज लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की है। आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की ही आवाज़ में गुलामी फिल्म का गीत। गीत को लिखा है गुलजार ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

और कार्यक्रम के अंत में सुनिए आशा भोसले का गाया हुआ डोली फिल्म का गीत। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा है और संगीत रवि का है।

0: कार्यक्रम के अंत में आपने सुना आशा भोसले का गाया हुआ डोली फिल्म का गीत। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा था और धुन तैयार की थी रवि ने। इसके साथ ही हमारा आज का चित्रपट संगीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर। दिन के 2 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार। समाचार पहले अंग्रेजी में होंगे, उसके बाद 2:15 पर हिंदी में होंगे, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says government empowered youth, women and farmers in last 12 years. India hits out at Pakistan in the United Nations, calls it factory of hate. 5-day BRICS agriculture ministers meeting.

0: बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे। राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। कर्नाटक केरल और माहे में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। दिल्ली पंजाब हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर लद्दाख उत्तर प्रदेश विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान में लू का अनुमान। और पुरुष क्रिकेट में दांबुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 278 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास विकास और जन कल्याण के लिए समर्पित है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत से प्रेरित निरंतर प्रयासों के माध्यम से देश एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने गरीबों के कल्याण और अभूतपूर्व विकास दोनों को एक साथ साकार होते देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व ने पिछले 12 वर्षों में सेवा भावना के माध्यम से शासन को नया रूप दिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने आम नागरिकों के लिए पासपोर्ट जारी करने और दस्तावेजों के सत्यापन को सुगम बनाया है और नागरिकों को पूरा सहयोग प्रदान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2024 को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमिपत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान के सीमा पार सैन्य अभियानों की निंदा की और अफगानिस्तान में हवाई हमलों के कारण हुई मौतों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है।
1: पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे हवाई हमलों में बड़ी संख्या में आम लोग हताहत हो रहे हैं। भारत इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। अफगान क्षेत्र पर किए गए ऐसे सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्दोष नागरिकों की मौत और विध्वंस को सैन्य कार्रवाई का नाम देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपनी आंतरिक विफलताओं और समस्याओं का दोष पड़ोसी देशों पर मढ़ना पाकिस्तान की पुरानी प्रवृत्ति रही है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्रिस्तरीय बैठक 13 जून को होगी। सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण आज सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। इससे कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रिमोट बटन दबाकर लद्दाख के मिनमर्ग में जोजिला सुरंग के पूर्वी

0: प्रवेश द्वार के पास विस्फोट किया और इसे कश्मीर तथा लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क सुनिश्चित करने का एक ऐतिहासिक क्षण बताया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इस अवसर पर नितिन गडकरी ने कहा कि ये सुरंग श्रीनगर और लेह के बीच हर मौसम में संपर्क प्रदान करेगी। समुद्र तल से 11,578 फीट की ऊंचाई पर निर्मित जोजिला सुरंग पूर्ण होने पर एशिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग बन जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान ने देश भर में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन 2016 में इस योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त, सुरक्षित और बेहतर प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच, जोखिमों की समय पर पहचान और आवश्यक इलाज की सुविधा दी जाती है, ताकि माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। इस योजना के तहत अब तक 7,50,00,000 से अधिक गर्भवती महिलाएं लाभ उठा चुकी हैं। सरकार के लगातार प्रयासों के कारण भारत में मातृ मृत्यु दर में काफी कमी आई है। 2014-16 में जहां हर 1,00,000 प्रसव पर 130 महिलाओं की मृत्यु होती थी, वह 2022-24 में घटकर 87 रह गई है। इस योजना के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ₹75 का एक स्मारक सिक्का और ₹5 का एक विशेष डाक टिकट भी जारी किए जाएंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। सरकारी ई मार्केटप्लेस जिम ने सार्वजनिक खरीद को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में जिम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में पारदर्शिता, प्रौद्योगिकी, समावेशन और नागरिक केंद्रित सेवा वितरण के बल पर भारत ने ये उल्लेखनीय वृद्धि की है। श्री कुमार ने कहा कि जिम पर भाग लेने वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों की संख्या 2016-17 में लगभग 2300 से बढ़कर आज लगभग 12,00,000 हो गई है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीम सेन तूती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पश्चिम एशिया में ईरान और इसराइल के बीच तनाव कम हुआ है, प्रत्यक्ष झड़पों में भी कमी आई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: पश्चिम एशिया में पिछले कुछ दिनों से जारी ईरान इसराइल सैन्य तनाव के बाद फिलहाल स्थिति बेहद संवेदनशील लेकिन अपेक्षाकृत शांत बनी हुई है। तनाव की शुरुआत बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इसराइल की कार्रवाई से हुई। इसके बाद ईरान की ओर से उत्तरी इसराइल की दिशा में मिसाइलें दागी गईं। जवाब में इसराइल ने ईरान समर्थित ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं और गहरा गईं। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान से जुड़ा मोर्चा फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। वहीं ईरान का कहना है कि क्षेत्र में स्थायी शांति और तनाव में कमी तभी संभव है जब गाजा और लेबनान में इसराइली सैन्य अभियान समाप्त किए जाएंगे। इस बीच कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि स्थिति को स्थिर रखने और व्यापक समझौते की दिशा में चल रही वार्ताएं निर्णायक दौर में पहुंच रही हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ एक मजबूत और शक्तिशाली समझौते के बेहद करीब है। उन्होंने कहा कि हालिया सीमा पार मिसाइल हमलों के बावजूद द्विपक्षीय वार्ता अभी भी आगे बढ़ रही है।
3: हम एक मजबूत और प्रभावी समझौते के बेहद करीब हैं। यदि बमबारी की जाती है तो बड़ी संख्या में लोगों की जान जा सकती है, और ऐसा कौन चाहेगा। हमारा प्रयास है कि एक ऐसा औपचारिक समझौता हो जो सैन्य कार्रवाई से भी अधिक प्रभावी साबित हो। अब तक यह देखा गया है कि नाकाबंदी का असर बमबारी की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली रहा है, इसलिए हम शांतिपूर्ण और कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता दे रहे हैं।

0: कोलंबो उच्च न्यायालय ने श्रीलंका के पूर्व उपमंत्री सरना गुणवर्धना को भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी ठहराया है। ये आरोप 2006 में विकास लॉटरी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान किराए पर वाहन खरीदने से संबंधित है। ये फैसला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मोहम्मद मिहाइल ने भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने वाले आयोग द्वारा दायर एक मामले में सुनाया है। फिलीपींस में कल दक्षिणी क्षेत्र के तट के पास आए 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या 37 हो गई है। भूकंप में 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं जबकि 4 लोग लापता हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। भूकंप के कारण 20,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.4% की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 267 अंक बढ़कर 73,791 और निफ्टी 86 अंक बढ़कर 23,209 पर था। पूरा देश आज महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक ऐसा नाम जिसने जल जंगल और जमीन की रक्षा के लिए ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। हम बात कर रहे हैं धरती आबा यानी भगवान बिरसा मुंडा की। उन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों के दमनकारी कानूनों का पुरजोर विरोध किया बल्कि समाज में फैल रहे धर्मांतरण और लाल फीताशाही के खिलाफ भी बिगुल फूंका। आज सुबह से ही रांची के कोकर समाधि स्थल और बिरसा चौक पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित राज्य के तमाम मंत्रियों और गणमान्य नेताओं ने यहां पहुंचकर भगवान बिरसा के चरणों में माल्यार्पण किया है। रांची के अलावा उनके जन्म स्थान खूंटी के उलिहातू सहित राज्य भर के जनजातीय बहुल इलाकों में विशेष सांस्कृतिक और जागरूकता सभाएं आयोजित की जा रही हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ स्थानों पर भी इसी तरह का मौसम बना रहेगा। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ तथा पश्चिमी राजस्थान में लू चलने की आशंका है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए की टीम ने 278 रनों का लक्ष्य दिया है। ये मैच श्रीलंका के रंगिरी दाम्बुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारतीय टीम ने 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 277 रन बनाए हैं। भारत के लिए ऋतुराज गायकवाड़ के शतक और तिलक वर्मा के 150 रनों की साझेदारी ने भारत को महत्वपूर्ण भूमिका दिलाने की मदद की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे। राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर इस समय आप जुड़ चुके हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेत खलिहान।

0: खेत कल्याण कार्यक्रम सुनने वाले सारे वन भजन है अनिल भाई के राम राम। पर मौसम की बात करा तो भी खूब बाफर गर्मी जिसने हम कह सके हैं, तापमान बहुत हाइएस्ट भी पहुँचना हो रहा है और भाई जो हमारे खेत कार के काम हम कर रहे हैं, लेकिन इस गर्मी का मौसम में भाई पहले की अपेक्षा फिलहाल की हम बात करा भाई गर्मी पहले भी पड़ा करती, लेकिन जो हमारे शरीर थे इस तरह डल रहे थे भाई, ना एसी होया करते, ना कोई फ्रिज आए पानी थे, ना कोई और भाई शीतल पेय पदार्थ थे, ना कोई व्यवस्था थी। अपने दो पैर में भाई पेड़ा नीचे खाट गाल ली और इसी तासीर थी, और ज्ञान भी था बुजुर्गों ने कोई भी पानी पात पींदे ना भाई धरती माता की एक तासीर है जो उसका भूमिगत जल स्तर है। सर्दियों में तो भाई एक ऐसा हो जाए है गर्म पाओगा ताज़ा ताज़ा बेसक ना लो, और सर्दी का गर्मियों के मौसम में ऐसा पाओगा बिल्कुल ठंडा, और बाजी बाजी कोई का तीसा हो जाए भी कितनी भी जेठ की गर्मी हो बाल्टी गिरती सूखी आया करती। लेकिन आज जो भी हमारे जोड़ हैं कुएँ हैं उनके हालात ख़राब हैं, जो भी पानी पीण काम इस्तेमाल में लिया तो कहते कहता हम कुछ कुइयाँ हैं जो अपने नहर के आसपास है, कितने मीठा पानी है बढ़िया पानी है, नहीं तो बाकी जो चावे का पानी है वो लगभग ख़राब सा हो गया मान के चलना। कुछ एरिए से हैं भाई उत्तर प्रदेश के दूसरे स्टेटों की हम बात करा भाई घनी गहराई पर जो पानी है ठीक ठाक भी है या फिर नहरा के आसपास बढ़िया है, तो भी गर्मी के मौसम में हम बात करें पहले अपने स्वास्थ्य की भाई खेत क्यार में जो भी हम पानी पिए हैं, एक तो भाई कोई ब्रह्म का है पहले थोड़ा सा खाली चला लें, हम देखा जर का पानी कई बार आओ है, कोई काई जो खेत में है थोड़ी ढक के रखें, कोई भाई जानवर है या कोई पशु है कोई पक्षी है कोई पड़ नहीं जा पानी दूषित ना हो जाए, और समय समय पर पानी की जो जाँच है उसका पीएच मान है वो भी हम इसमें चेक कराते रहें। और भाई जो भी हम काम करें सवेर सांझ का थोड़ा सा, जिस तरह के हम बात करें भाई कपास की नुड़ाई गुड़ाई का काम अगर मार दो रहे तो भी थोड़ा सा हम कोशिश करें भाई कि अपना सवेर सांझ का जोटा मार लें। और आजकल तो आधुनिक कृषि यंत्र हमारे से आ रहे हैं कि भाई थोड़ी सी छोटी छोटी हड़दें हैं फिर बाद में पाड़े मार दें, पाड़े यानी कि भाई अपना बीच में जो खुड़ना के बीच में जो कसोला काट है इस तरह का जुगाड़ साम कर दें, कि बीड़ा भी कसोला कितने चौड़ा भी है जड़ भी अपना खुड़ से खुड़ का फासला अगर ठीक ठाक है पौधे से पौधे का। और कपास में थोड़ा सा ये ध्यान रखें भाई कुछ किस्में ऐसी हैं जो घनी ग्रोथ करें हैं बड़वार घनी ले जाएं, बाद में हम चलें शुरू में तो भाई हमने पाट दिया जी दुख पाओगा, लेकिन बाद में जब वो घनी ग्रोथ कर जाएंगी बड़वार ज़्यादा ले जाएंगी तो उनको ऊपर ही ऊपर फल लगेगा, पैदावार उसमें भी ना के बराबर हो जाएगी। कुछ किस्में ऐसी हैं भाई जिसमें ग्रोथ भी टीकी कम करें हैं तो उसमें थोड़ी सी पौधे का फासला है वो थोड़ा सा ठीक साम रखें। घनी गहरी दिखे जो जुड़मटे पेड़े हैं कट्ठे हैं उन हम छटाई करते रहें निकालते रहें, विरलीकरण है जो उसका हम कर लें। बाकी आज भाई देखो अपने खेत कल्याण कार्यक्रम में जिक्र करेंगे कि जो हमारे पशुओं के लिए चारे की अगर बात आओ है तो पहला नाम आओ ज्वार का अपना खरीफ के मौसम में, कुछ भाइयों तो भाई अपना रिफालरी लेनी शुरू कर रखी है, पशुओं ने गहरे भी हैं, लेकिन कुछ हमारे ऐसे एरिए हैं जो पानी के पुख्ता प्रबंध नहीं है और जड़ भी अपना मानसून की वर्षा पर भाई निर्भर हैं या किसी कारण तो बिजाई नहीं कर सके, तो वो भाई फिलहाल मौका है भाई बिजाई की कर सके हैं। उसके लिए भाई देखो जिस तरह के हमने जिक्र करें अभी खरीफ के मौसम की सबसे महत्वपूर्ण चारा फसल है अरेक डाल की, जो भी डैर की माटी खागड़ है काली माटी की चास है उसमें हम उगा सके हैं, दोमट माटी में और भी बढ़िया रहे है नरम में भी अच्छी रहे है। कुछ भाई जड़े बाड़ू रेत की जो घने नरम खेत हैं हालांकि भी पानी की जरूरत थोड़ी ज़्यादा पड़े है उड़ भी उगा सके हैं, और जिन भाइयों ने उगा रखी है अगर घनी भी पानी सोखे की अवस्था मर जुआर है तो भी पशुओं ने ना खिलावें, जब उसका बिल्कुल सोखापन ख़त्म हो जाए अच्छी बारिश बुरी साल लें बढ़िया पानी पात हम दे दें, ऊपर की जो उसकी पत्ता है वो नुकीला ना बनाए पनावे नहीं सूखा नहीं हो तो फिर हम पशुओं ने खिला सकें। अगर इस तरह का हमारी जुआर की फसल में है तो अपने देसी भाषा में कहा करें भी पात ला गया, बार बार हम हर एक कार्यक्रम में ऐसा जिक्र करें हैं हर साल इस तरह की जो एक आधी घटना है होती रहे है। बाकी भाई इसमें उन्नत किस्म का भी हम जिक्र करेंगे और भाई किस तरह से हमने बिजाई करनी है, लेकिन उससे पहले भजन भाई रागनी सुनवा दें, भजन की फरमाइश थी भी चांदीराम कौशिक जी की जो रागनी वो सुनवाई जा, तो सुने भाई रागनी गायक कलाकार चांदीराम कौशिक और उनके साथी।
1: एरे पकड़े काल जा रोवने लगी माँ बेट

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
2: और भाई अपने खेत कल्याण कार्यक्रम में जिक्र मारा चल रहा था कि जो हमारी चारा वाली फसलें हैं और उसमें भी ज्वार का हमने जिक्र करा भाई, फिलहाल जिन भाई हमने नहीं लगाई है और जो भी बारिश होगी या फिर बारिश आगे होगी उड़ भाई बिजाई का मन बना सके हैं, बिजाई कर सके हैं। इसके लिए जो उन्नत किस्म की हम बात करें तो भाई पहली किस्म है SSG 59, किस्म का नाम है भाई SSG 59। इस किस्म पूरे हरियाणा प्रदेश में जो सिंचित एरिए हैं, मैदानी क्षेत्र हैं, उनके लिए भी सिफारिश करी गई है। मिट्टी वो है और अच्छे गुण वाली किस्म वो है। पहले हम भाई बचपन की बात करा तो पहले कहा लाफर, तो कई कटाइयों वाली वो है, लाफर वो है, मिट्टी वो है, पशु भाई राज्यों के खा हैं और इस किस्म ने भाई हम बिजाई बाई करके और अच्छी पैदावार इसमें ले सके हैं। अगली किस्म भाई HC 136, यह किस्म भी सिंचित एरिया में बिजाई के लिए सिफारिश करी जा है, भाइयान आगे ती बोगन कटाई ले भी ली होंगी। इसी तरह भी HC 171 है, यह किस्म भी मध्यम ऊंचाई वाली है, मिट्टी हो है, चौड़ी पत्तियां वाली हो है और जो इस तरह की कई कटाइयाँ वाली हों वो अगेती भाई अपने जिस तरह की हम बात करा जो हमारे पीछे के बिन्ने थे उन भाइयान ले ली और भी इसकी बिजाई कर सकें। बाकी अगली किस्म है HC 308, यह किस्म पूरे भारतवर्ष में बिजाई के लिए भी सिफारिश करी गई है, लंबी हो है, रसदार हो है, पत्तेदार हो है और यह किस्म भाई लाल धब्बा जो रोग है उससे मुक्त हो है, बेहतर गुणवत्ता का खातर इसने भाई जो हमारे किसान भाई हैं आमतौर पर पसंद करें हैं, पशु भी इसने भाई रज के खाओ हैं। बाद में इसकी भाई कड़वी पूड़ी भी अगर बनाना चाहें, यानी कुछ हरा चारा ले लिया बाकी जो बच गई तो अपने कड़वी के रूप में भाई इसने पूड़ियाँ के रूप में भी इसने इस्तेमाल भाई कर सके हैं। और इसका भाई हम बात करें कि सूखे चारे की जो पैदावार है वो बढ़िया, वो भी इसमें बढ़िया मिले हैं और 6 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से जो एक बात करें भाई आगे चल के जो पूड़ी हमने मिल जाए हैं। अगली किस्म है HJ 513, यह ज्वार की बहुत हरा चारा देने वाली किस्म है और भाई 70 से 72 क्विंटल आमतौर पर जो इसका चारा हमने मिल जाए है। बीज की पैदावार भी इसमें 7.5 से लेकर 8 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हमने मिल जाए, मिट्टी वो है, इसके सिट्टे लंबे हों, दाने मोटे हों, क्रीम रंग के हों और यह जो किस्म है भाई पकण तक कर ही रहे हैं क्योंकि आखिरी में चल के जब पकाई का समय पर आ जाए तो भाई पत्ता अपना फरड़ा गिर जाए, लेकिन ये किस्म उससे भी हरी रहे, बढ़िया पैदावार देने वाली ये किस्म है। अगली किस्म भाई HJ 541, यह किस्म भी भाई बहुत बढ़िया किस्म है, 2014 में हरियाणा के सभी जितने भी ज्वार उत्पादक क्षेत्र हैं उनके लिए सिफारिश करी गई थी, आज भी भाई इसने भाई खूब बोए हैं, अच्छी इसकी पैदावार है, 200 से 225 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से सूखा चारा और भी 70 से 75 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से जो हरा चारा और 7 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से जो है पौष्टिक गुणवत्ता वाला दुधुरिन जो चारा है अपना दाना है वो भी इससे मिल जाए है। भाई जो भी हम ज्वार की किस्म ले हैं उसके लिए सबसे पहले तो भाई ये है कि जो हमारा खेत है चारों कोने एक चारो खेत की तैयारी अच्छी डाल कर ले, नमी उसमें रहनी चाहिए और 2-3 बार भाई रो दो एक बार रो मार सकें, कल्टीवेटर मार सकें हैं, एक आधी बार रो मार के या फिर अपना भाई रोटावेटर का भी इसमें इस्तेमाल कर सकें, जो कोई ज़मीन में भाई खरपतवार हैं कोई वो भी उसमें मट्टी मिल जाए, हरी खाद का रूप भी इसमें हो जाए। बीज की मात्रा की जड़ती बात है और बिजाई का जो तरीका है भाई, एक तो हम छिड़कबा नहीं करें यानी कि बखेर के ना बोएं, मशीन तलाई नाम हमने बोनी है और ज्वार के लिए भी 20 से 40 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ के हिसाब से हमने लेना इसमें पड़ेगा और बिजाई का जो तरीका है भाई 25 सेंटीमीटर का फासला पे लाइन से लाइन का हमने फासला इसमें रखना है और फिर इसकी बिजाई हमने करनी है। खाद और उर्वरक के इसमें बात आओ तो भाई बिजाई के लिए देखो, एक तो हमारी जो सोखा वाली ज़मीन है जड़ भाई पानी के साधन कम है एक सिंचित आड़ में, तो सोखा वाली अवस्था में तो भाई हमने 20 किलोग्राम नाइट्रोजन की शुद्ध मात्रा, यानी कि भाई हम ये कर सकते हैं जो कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं उड़ा इकट्ठा का अपने जो यूरिया खाद का वो इसमें डालना है। शुरुआती दौर में कुछ अपने डाल दें, नो दिक्कत भी आगे बारिश का अच्छा भी हमने संभावना है तो कुछ रख लें, बाकी 10-12 किलोग्राम जो अच्छी बारिश हो जाए तो फिर हमने इसमें गिरनी है। और सिंगल सुपर फास्फेट, ये खास बात है जो कृषि वैज्ञानिक हैं वो भी कहे हैं, पशु जो चिकित्सक हैं वह भी कहे हैं कि जितने भी हमारे चारा वाली फसलें हैं उनमें सिंगल सुपर फास्फेट का ही एक फास्फोरस की पूर्ति खातिर विकल्प है। इसमें भाई गंधक भी है, कैल्शियम भी है, DAP की बजाय भाई अपना सिंगल सुपर फास्फेट का इसमें इस्तेमाल करें, इसका जो भाई फास्फोरस की जो पूर्ति होगी उससे पशुओं में तो खून मूत्रा रोग है या समस्या को नहीं आओगी और बहुत अच्छी एक चारे के में जो गुणवत्ता देने वाली सिंगल सुपर फास्फेट वो है। और भाई शुरुआती दौर से अपना भाई थोड़ा सा मौसम का ध्यान रख के बढ़िया जब सिंचित अवस्था में यानी कि नमी बढ़िया उसी राम वर्षे की हो जी हमने पानी पात दे रखा हो फिर अच्छी नमी में हमने इसकी बिजाई करनी है। तो बाकी भाई इसमें समय रहेगा जिक्र और भी करेंगे। एक रागनी और भजन सुनवा दें गायक कलाकार एक बार फिर चांदीराम कौशिक और उनके साथी।
3: कम समय में ज्यादा मुनाफा बस एक क्लिक में, कमाल है।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
5: जानकार बनिए सतर्क रहिए।

तो भैया आपने सुनील अग्नि गायक कलाकार थे चांदीराम कौशिक और उनके साथी और खेत खलिहान कार्यक्रम में जिक्र हमारा चल रहा था जो ज्वार की काश्त है उसके बारे में, इसमें खादा का उर्वरक का हमने जिक्र कराया। भाई जो कम वर्षा वाले हमारे बिरानी क्षेत्र हैं उसमें 20 किलोग्राम नाइट्रोजन की शुद्ध मात्रा यानी कि 43 किलोग्राम जो यूरिया खाद है वो हमने लेनी है प्रति एकड़ के हिसाब से, और सारी खाद बिजाई से पहले हमने भाई ड्रिल कर देनी है ज़मीन में अच्छी तरह, आखिरी जुताई पर डाल देनी है। और जो ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्र हैं उसमें भाई अपना लगभग 42-43 किलोग्राम जो यूरिया है शुरुआती दौर में, और बाद में जब अच्छी भाई सिंचाई हम करेंगे उस टाइम पर 10-1 किलोग्राम नाइट्रोजन की शुद्ध मात्रा यानी कि 20-22 किलोग्राम जो यूरिया खाद है वो हमने अतिरिक्त इसमें बाद में देनी है। और बाकी इसमें यह भाई हमने जिक्र कराया भाई जो सिंगल सुपर फास्फेट का जो एक विकल्प है बढ़िया है चारा वाला फसल, हम चाहे रबी की बात करें चाहे खरीफ की करें, तो भाई इसमें 1 कट्टा सिंगल सुपर फास्फेट का ज़रूर हमने डालना है। यदि ज़्यादा हमारी रेतीली ज़मीन है तो उस वस्तु हम भाई 1.5 कट्टा भी हम डाल सकें, 2 तक भी डाल सकें, कोई नुकसान इसका नहीं रहेगा। और सिंचाई अपना भाई समय समय पर हमने करते रहना है। और बाकी इसमें बात करें भाई देखो कई तरह के जो रोग हैं ज्वार में पाँच से आगे चाल के आ जाएं, जिस तरह भी दाने की कंगियारी है या फिर लाल धब्बियाला रोग है, इन ते बचाने खातर शुरुआती दौर से हमें ध्यान रखना है, बिजाई से पहले बीज उपचार भाई ज़रूर कर लें। रोकथाम खातर भाई 2 ग्राम जो एमिसान दवाई है वो हम ले लें और प्रति किलो बीज के हिसाब से बिजाई से पहले अपने बीज में मिलानी है, कोई मोटा इसमें कोई ज़्यादा काम नहीं। लाल धब्बियाला जो रोग है उसके लिए भी अपने भाई जो शुरुआती दौर से हम ध्यान रखें, फसल चक्र अपनावें, और जो हमने जिक्र कराया था दवाई का एमिसान 2 ग्राम दवाई प्रति किलो बीज के हिसाब से हमने उपचारित करके और फिर हमने बीज बोना है। दूसरा भाई पहले जो हम गोड़ी लाया करते मुद्दे पड़ पड़ देखा करते कि तू चाहे कितनी चाहे शुरू में बड़दानी चाल ली फिर अपने दूसरी गोड़ी चाल ली, लेकिन आजकल जो कंप्यूटराइज जो हमारी गोड़ी है चारों कुने एक शार अगर हमारी फसल होगी तो आगे भी जब समाज से भी आओगे बारिश ज़्यादा भी होगी तो उस अवस्था में जो हमारी फसल है जल निकास का थोड़ा सा ठीक ठाक रही जाएगा। और ज्वार में वैसे भी ज़रूरी है भाई पानी भी ज़रूरी है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि भाई उसमें बिना 1.5 महीना पानी खड़ा रहे तो उसमें हमारी फसल जी बाजरे की बात करें चाहे ज्वार की करा चारे के लिए वह ख़राब हो जाएगी। जल निकास वाली हमारी भूमि हो, खेत चारों कुने एक शार हो और सिंचाई के अगर ज़्यादा प्रबंध है तो फिर अच्छा ज्वार फाल रही है, बढ़िया एक जो भी अपने कटाई है वो हमने मिल जाए है। बाकी तो भाई जो फिलहाल कटाई करने लाग रहे हैं लेने लाग रहे हैं सूखी खुली नहीं गए रहे काट के गए रहे हैं, पनारी हो ऊपर का जो पत्ता घना सूखा हो इस तरह की अवस्था में जो ज्वार है वो पशुपन ना गए रहे हैं जानलेवा भाई इसमें एक सी दोष का है जहरीला रसायन इसका बना है। और बाकी आगे चल के भी और भी कई तरह के जब बारिश आओगी घास फूस हो जाएंगे तो उसमें भी हम कटाई करके ज्वार के साथ मिला के तूड़ा ताड़ा सूखा चारा मिला के तो फिर हमारा बढ़िया काम पशुओं के लिए चाल सके। इन बात ध्यान और ध्यान भी घड़ी का भी इससे एक साथ भी कार्यक्रम का समय समाप्त होया। चालेंगे सारे मन भैया ने राम राम।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेत खलिहान आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार दिन के 3:13 हुए हैं। अब हमारी आज की दूसरी प्रसारण सभा यहीं संपन्न होती है। एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुनते रहेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रमों का रिले। हमारी तीसरी सभा में शाम के 5:30 पर मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर, प्रसार भारती की ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर। यह आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। शाम के 5:30:17 हुए हैं। अब हमारी तीसरी सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं। सभा की शुरुआत कर रहे हैं युवाओं के दैनिक कार्यक्रम युवा संसार से।

दैनिक कार्यक्रम युवा संसार में आप सभी श्रोताओं को महिमा का नमस्कार। दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम में कई ऐसे वीर पुरुष हुए जिन्होंने हमारे देश के लिए अमूल्य योगदान दिया, और उन्हीं में से एक नाम है ऐसा बिरसा मुंडा का। बिरसा मुंडा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान आदिवासी क्रांतिकारी और जननायक थे। जल, जंगल और जमीन की रक्षा करने वाले बिरसा मुंडा भारतीय इतिहास के एक ऐसे अमर सेनानी थे जिन्होंने आदिवासी समाज में स्वाभिमान और स्वतंत्रता की अलख जगाई। बिरसा मुंडा ने उस समय अंग्रेजी शासन के अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाई। जन आदिवासी समाज जो कि आदिवासी समाज का शोषण कर रहे थे और अन्याय का उन्हें सामना करना पड़ रहा था, उन्होंने लोगों को अपनी पहचान, संस्कृति और अधिकारों के प्रति जागरूक किया। उनका आंदोलन सिर्फ विद्रोह नहीं था बल्कि आत्मसम्मान और अस्तित्व की रक्षा का प्रतीक था। उन्होंने अंग्रेजी सत्ता को ये संदेश दिया कि अन्याय के विरुद्ध उठी आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। कम आयु में ही बिरसा मुंडा जी ने साहस दिखाया जो कि आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा का एक स्रोत है। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्चा देश प्रेम सिर्फ शब्दों में ही नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए किए गए संघर्ष और त्याग में दिखाई देता है। आज बिरसा मुंडा शहादत दिवस है, हमें उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने की ज़रूरत है। समाज में समानता, प्रकृति संरक्षण और कमजोर

कमजोर वर्गों के प्रति उनके अधिकारों की रक्षा की उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उनका बलिदान हमेशा हमारे हृदय में स्वतंत्रता और स्वाभिमान की ज्योति जलाता रहेगा। बिरसा मुंडा जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी जब हम उनके जो बताए गए विचार हैं, उनके द्वारा अपनाई गई जो सोच है, उसे हम अपने जीवन में उतारें तो। और ऐसी ही एक सोच है जो हमें सिखाती है कि हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय जीवन की वो अमूल्य निधि है जिसे ना तो खरीदा जा सकता है और ना ही वापस पाया जा सकता है। धन, वैभव, साधन अगर हम एक बार खो देते हैं तो उसे वापस हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बीता हुआ समय फिर लौट कर नहीं आता। इसीलिए तो ये कहा गया है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। जो इंसान समय के इस महत्व को समझ लेता है वो अपने जीवन में सफलता, सम्मान और सुख को प्राप्त करता है। और साथियों, प्रकृति भी तो हमें यही सिखाती है। सूर्य प्रतिदिन निश्चित समय पर उदय होता है, अस्त होता है। ऋतुएं भी समय अनुसार ही बदलती हैं और नदियां भी निरंतर बहती रहती हैं। हमें समझना चाहिए कि अगर हम आलस्य, टाल मटोल और व्यर्थ के कार्यों में समय को गवाएंगे तो हम अपने लक्ष्यों से दूर हो जाएंगे। और बात आती है अगर विद्यार्थी जीवन की, तो विद्यार्थी जीवन में समय का सदुपयोग बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। अगर विद्यार्थी नियमित रूप से अध्ययन करे, अपने कार्य समय पर पूरा करे और अनुशासित जीवन अपनाए तो सफलता उसके कदम चूमती है। वहीं दूसरी ओर समय की उपेक्षा करने वाला व्यक्ति अक्सर अवसरों को खो देता है और बाद में केवल पछतावा। आवश्यकता है इस बात की कि हम इन साधनों का सीमित और विवेकपूर्ण उपयोग करें। जैसे कि आज के समय में सोशल मीडिया है जो कि हमारा अधिकतर समय अपनी ओर लेकर जाता है, तो इन संसाधनों का हमें सीमित रूप से उपयोग करना चाहिए और समाज के हित में कार्य करने चाहिए। समय का सदुपयोग सिर्फ व्यक्तिगत सफलता ही नहीं देता बल्कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को भी निखारता है। समय का पाबंद व्यक्ति समाज में सम्मान प्राप्त करता है और दूसरों के लिए प्रेरणा भी बनता है। तो दोस्तों, हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि जीवन के प्रत्येक क्षण का हम सदुपयोग करेंगे, समय की कद्र करेंगे और वास्तव में अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। और यदि हमारा जीवन सार्थक बनता है तो खुशियां हमारे जीवन में अपने आप आती हैं। और इन्हीं खुशियों के साथ अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुन लेते हैं आज के इस कार्यक्रम का पहला गीत, फिल्म बर्फी से। श्रेया घोषाल और निखिल पूल की आवाज़ है, गीतकार हैं स्वानंद किरकिरे और संगीत दिया है प्रीतम ने।

दोस्तों, अभी आपने सुना बर्फी फिल्म से ये गीत श्रेया घोषाल और निखिल पूल की आवाज़ थी। गीतकार थे स्वानंद किरकिरे और संगीत दिया था प्रीतम ने। साथियों, आप जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ी सेवा कौन सी होती है? तो ऐसा माना जाता है कि सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ी सेवा होती है जब हम किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता करते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के बाद भी किसी अन्य व्यक्ति को नया जीवन देने का माध्यम बन जाता है तो वो दान कहलाता है महादान। आज के समय में कई लोग ऐसे हैं जो हृदय रोग, नेत्र रोग और अन्य प्रकार के अंगों के गंभीर रोगों से जूझ रहे हैं। अनेक रोगी ऐसे होते हैं जिनका जीवन अंग प्रत्यारोपण पर निर्भर करता है और इस कमी के कारण कई लोगों की अक्सर मृत्यु भी हो जाती है। तो अगर इस विषय की ओर हम अधिक जागरूक रहें और असंख्य लोगों को इसके प्रति जो है जानकारी पहुंचाएं, तो ना जाने कितने ऐसे पीड़ितों को नया जीवन मिल सकता है। अंगदान की बात करते हैं दोस्तों, तो ये दो प्रकार के होते हैं, जीवित अंगदान और मरणोपरांत अंगदान। जीवित व्यक्ति अपने शरीर का एक गुर्दा या फिर कुछ ऊतक दान कर सकता है, जबकि मृत्यु के पश्चात हृदय, नेत्र, फेफड़े आदि अंग जो हैं वो दान किए जा सकते हैं। एक व्यक्ति का अंगदान कई लोगों का जीवन बचा सकता है। नेत्रदान से किसी ऐसे व्यक्ति की दुनिया रोशन हो सकती है जो देख नहीं पाता है, और हृदय दान से किसी को जीवन की नई धड़कन मिल सकती है। समाज में अंगदान को लेकर कई प्रकार की भ्रांतियाँ भी हैं और डर भी हैं। कुछ लोग इसे धार्मिक कारणों से या फिर कुछ लोग इसे अज्ञानता की वजह से दूर रहते हैं, जबकि लगभग सभी धर्म मानव सेवा को सर्वोच्च मानते हैं। वास्तव में अंगदान मानवता का सबसे पवित्र कार्य है। आवश्यकता है सही जानकारी और जागरूकता फैलाने की, और कई प्रकार की ऐसी संस्थाएं भी हैं जो समय समय पर अंगदान के प्रति जागरूकता फैलाती हैं। विद्यालयों में, महाविद्यालयों में और सामाजिक मंचों पर भी इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए, ताकि जो युवा पीढ़ी है वो इस महान कार्य के महत्व को समझ सके। तो अंगदान सिर्फ शरीर का दान नहीं बल्कि जीवन का उपहार है। ये एक ऐसा पुण्य कार्य है जो कि एक व्यक्ति को अमर बना सकता है। तो हमें अंगदान के प्रति सकारात्मक सोच अपनानी चाहिए और समाज को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। सच ही कहा गया है कि अंगदान महादान है, क्योंकि यह किसी को नया जीवन प्रदान करता है। और इसी उम्मीद के साथ अब हम बढ़ते हैं आगे। और बदलता हुआ मौसम है, बदलती हुई ऋतु है। गर्मियों का मौसम ना दरअसल अपने साथ तेज धूप, बढ़ता हुआ तापमान और अनेक स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां लेकर आता है। इस ऋतु में अक्सर की गई छोटी छोटी लापरवाही गंभीर समस्या के रूप में हमारे सामने आ सकती हैं। तो इसलिए आवश्यकता है कि हम अपनी दिनचर्या, अपना खान पान और अपनी जीवन शैली में कुछ ऐसी सावधानियां अपनाएं और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। स्वस्थ शरीर ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, और गर्मियों के इस मौसम में इसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी भी बन जाती है और मजबूरी भी। गर्मियों में शरीर से अक्सर हमें कुछ भी काम करते हैं पसीना निकलता है, पानी की कमी हमारे शरीर में होने लगती है। यही कारण है कि इस मौसम में अधिक से अधिक पानी हमें पीना चाहिए, और अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए हम कुछ ऐसे फल फ्रूट्स का भी सेवन कर सकते हैं। इस मौसम में भोजन की बात करते हैं तो थोड़ा हल्का और संतुलित आहार लेना चाहिए। अधिक तला भुना मसालेदार अगर हम सेवन करते हैं तो ये हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। हरी सब्जियां, ऐसा कुछ हमें अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। और अब इसी जानकारी के साथ दीजिएगा इजाज़त अपने रेडियो साथी महिमा को। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे युवा संसार कार्यक्रम, आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं AIR रोहतक और अब समय हो गया है ऑर्गन इंडिया के कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार का।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: नमस्कार, मैं मीनू ऑर्गेन इंडिया के कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार में आपका स्वागत करती हूं। ऑर्गेन इंडिया दिल्ली की एनजीओ प्राशर फाउंडेशन की पहल है, जो अंगदान, उत्तक दान और देहदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने का काम करती है। आज के कार्यक्रम में हम अंगदान से जुड़ी एक बहुत ही खूबसूरत कहानी लेकर आए हैं।
2: आप सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार, मैं हूं सागर। इस प्रोग्राम को आप लोगों तक पहुंचाने का श्रेय जाता है ऑर्गन इंडिया को। आज हमारे साथ हैं अभिषेक बिट्टू जी, बीकानेर राजस्थान के रहने वाले हैं। इनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था और ये हुआ था 2019 में। अभिषेक जी, स्वागत है आपका।
3: थैंक यू भैया।
2: अभिषेक, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, अपना थोड़ा सा ये बताइए कि आपका बचपन कैसा रहा, कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ पर बड़े हुए, कहाँ पर पढ़ाई की?
3: मेरा जन्म जो है बीकानेर के एक गांव के अंदर हुआ, यात्रा, और मेरी जो अर्ली एजुकेशन है 7th-6th क्लास तक वहीं हुई। उसके बाद मैं प्रिंस एजुकेशन हब सिक्कर में पढ़ा, और फिर 9th क्लास के अंदर जब मैं प्रिंस में पढ़ रहा था तब मुझे एपिलेप्सी का अटैक आया था, सीजर्स आने स्टार्ट हो गए। तो फिर मैं वापस अपने होम टाउन आ गया और यहीं से पढ़ाई की बीकानेर से ही, और यहीं से ग्रेजुएशन, सभी पढ़ाई यहीं से ही चल रही है। और फिर 2019 के अंदर मुझे पता चला कि दोनों किडनी मेरी है जो फेल हो चुकी है।
2: क्या आप स्पोर्ट्स में ज्यादा मीनो इंक्लाइंड थे या किस तरह का बचपन रहा?
3: हाँ, स्पोर्ट्स में मैं इंक्लाइंड था, उसके लिए डांट भी पड़ती थी क्योंकि मैं स्कूल से आने के बाद अपनी ड्रेसेस खोलता नहीं था और सीधे बैग पे रखा और सीधे क्रिकेट वाले मैदान में चला जाता था खेलने के लिए। स्पोर्ट्स डेली, छुट्टियां हैं तो स्पोर्ट्स खेलना है, स्कूल के बाद स्पोर्ट्स खेलना है, अभी भी 5:30 सुबह होते ही घूमने चला जाता हूँ।
2: मैं 2019 से पहले का जीवन इसलिए डिस्कस करना चाह रहा हूँ, अगर कोई भी ऐसी गलती है जो आपने करी हो या बचपन में आपसे हो गई हो, ताकि बाकी लोग वो गलती ना करें। इसके लिए मैं ज्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि थोड़ा सा बताइए ट्रांसप्लांट के पहले के जीवन के बारे में, अगर कोई गलती आप बता सके कि हाँ मुझसे ये गलती हुई।
3: गलती तो अब पता नहीं, मुझे लगता है कि मुझे तो सीजर

0: ताना चालू हुए थे जब मैं सिक्कर प्रिंस स्कूल में था, तो मैं बास्केटबॉल खेल रहा था और एक बार मुझे याद है गिरा था। हो सकता है उस वजह से मेरे क्लॉट हो गया था ब्रेन के अंदर, उस वजह से मुझे सीजर्स आने लग गए थे। उसके बाद से मेरी लाइफ थोड़ी लिमिटेड भी हो गई थी, मतलब घर पे ही, बाहर ज्यादा जाना नहीं, क्योंकि सीजर्स आते हैं तो एक डर रहता है। आप बाइक नहीं चला सकते, आप गाड़ी नहीं चला सकते, या बाहर अकेले ज्यादा जा नहीं सकते। और उसके बाद 6 साल बाद अब पता नहीं क्यों बट किडनी फेलियर हो गया। हो सकता है ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता हो, मे बी द टेबलेट्स, उनके साइड इफेक्ट्स,
1: ठीक
0: कुछ
1: है।
0: पता नहीं।
1: और ये सीजर की आपका इलाज कहाँ से चल रहा था?
0: यही बीकानेर से ही मेरा इलाज चल रहा था।
1: और उसमें आराम मिला था आपको?
0: हाँ, आराम कुछ आराम था, लेकिन कंटिन्यू अभी तक सीजर से मैं दिक्कतें हैं अभी तक, मतलब कंटिन्यू अभी टेबलेट चल रही है, 10 साल हो गए। सीजर्स अगर टेबलेट कम की जाए तो वापिस आ जाता है और कंटिन्यूटी है सीजर्स में।
1: थोड़ा सा बताइए, 2019 में आपकी उम्र क्या थी और आप क्या करते थे उस टाइम?
0: उस समय मैंने 12th कर ली थी और मैं फर्स्ट ईयर के अंदर आ गया था। मैं DLED कर रहा था, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन।
1: ठीक है, और ये बीकानेर की बात हो रही है?
0: नहीं, मेरा कॉलेज था गंगानगर के अंदर,
1: श्री गंगानगर,
0: और वहाँ मैं दे रहा था। फर्स्ट ईयर के मेरे एग्जाम्स थे, तो उस दौरान क्या है कि मतलब उल्टी आना, आंखों से दिखाई नहीं देना, मतलब एग्जाम्स दे रहा हूँ तो वो धुंधले से हो जाते थे अक्सर। फिर मैंने सोचा आँख का होगा, तो आँख का चेक करवाया तो वो नहीं था। फिर 10-11 पेपर थे जो मैंने जैसे तैसे, मुझे पहले से सीजर थे, मुझे डर लगा कि कुछ ज्यादा दिक्कत हो सकती है, तो एग्जाम में वो मैंने एक लापरवाही की 10-11 दिन कि मैंने एग्जाम्स के बाद ही पूरा चेकअप करवाया। फिर फिजिशियंस को चेक करवाया तो उन्होंने बोला कि आपके ब्लड प्रेशर ज्यादा आ रहा है, क्रिएटिनिन वगैरह की जाँच करो और सोनोग्राफी करो।
1: ठीक है, उस टाइम पर सिम्टम बताएंगे आप एग्जैक्टली कि क्या क्या सिम्टम्स आपको आए थे? जैसे आपने कहा कि आंखों के सामने अंधेरा छा जाता था।
0: अंधेरा छाता नहीं था, जैसे कि अपन अक्सर पढ़ रहे हैं तो वो अक्सर एक दूसरे से मतलब मिल जाते थे, साफ से पढ़ा नहीं जा रहा था। उल्टियां होती थी, मुझे पैर दर्द करने लग गए थे।
1: ठीक है, उसके बाद आपने दिखाया कहाँ पर?
0: यहीं पर फिजिशियन है अनिल सोपी सर, उनको दिखाया। पहले मैंने किसी मेडिकल पर चेकअप करवाया था क्योंकि भयंकर सर दर्द हो रहा था और पैर से जला नहीं जा रहा था, तो मैंने मेडिकल वालों को दिखाया था। उन्होंने कहा कि ब्लड प्रेशर आपका ज्यादा आ रहा है, सुबह होते ही आप गलती मत करो और किसी फिजिशियन को चेक करो। कहीं बीकानेर में मैंने डॉक्टर अनिल सोपी सर है फिजिशियन, उनसे चेक करवाया। उन्होंने देखते ही बता दिया कि प्रॉब्लम ये है, आप ये जांच करवा दो।
1: ठीक है, उसके बाद फिर आपने सारी जांच कराई तो उसके बाद क्या फाइंडिंग आई कि आपकी दोनों किडनी फेल हो चुकी है?
0: दोनों किडनी जो है मेरी सिकुड़ चुकी थी, स्मॉलर इन साइज हो चुकी थी, मतलब इन्फेक्शन वगैरह कुछ नहीं था, वो सिकुड़ चुकी थी। हो सकता है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से या ऐसा कुछ।
1: अब मुझे ये बताइए कि जब ये रिजल्ट आपके सामने आया, जब परिणाम आपके सामने थे कि किडनी काम नहीं कर रही है, सिकुड़ चुकी हैं दोनों आपकी, तो आपके घर का माहौल कैसा था? क्या सब बातें हो रही थी, क्या कुछ चल रहा था वहाँ पे?
0: वो टेंस भी होंगे बट मुझे क्या है, पूरा सही से बताऊं तो सही से याद नहीं है, क्योंकि मैं उस हालत में पहुंच गया था कि वो लास्ट स्टेज टाइप हो गया था।
1: आमतौर पे हम ये गलती करते हैं कि हमारी बॉडी कोई संकेत हमें दे रही होती है और हम उसको दबाने की पूरी कोशिश करते हैं।
0: हाँ, मुझे लगता है मेरी 1 साल पहले ही ये प्रॉब्लम्स आने लग गई थी, लेकिन मैंने ये फल फ्रूट जूस ट्राई किया लेकिन वेट गेन हो ही नहीं रहा था।
1: अच्छा, तो 1 साल पहले से आपका वेट लॉस होना शुरू हो गया था?
0: हाँ, वेट लॉस में एकदम दुबला पतला सा हो गया था, मतलब पता नहीं चल रहा था कि हो सकता है नॉर्मली वेट गेन नहीं हो रहा था, ट्राई पूरा किया था। फिर अपने इतने मतलब वेल एजुकेटेड मेडिकली है नहीं इंडिया में अभी, तो सोचते हैं कि हो सकता है कि पढ़ाई की वजह से, पढ़ाई कर रहा है तो वीक है, ये मेडिकली अभी तक अवेयर है नहीं है।
1: ये बिल्कुल सही बात है, और आमतौर पे जो एक माइंडसेट होता है, जो अप्रोच होती है हमारी, वो यही होती है कि जितना हो सकता है डॉक्टर को अवॉइड करें या जाँचें ना ही करवानी पड़े, अपने लेवल पर ही चीज़ों को ठीक कर ले। हम डरते भी हैं कहीं ना कहीं, हमें डर लगता है कि कुछ अगर गलत निकल आया तो फिर क्या होगा। हाँ, और इसीलिए हम ये शो चला रहे हैं अभिषेक जी। हमारी कोशिश यहाँ पर यही है कि जितना हो सकता है लोगों को बताएं कि एक छोटी सी गलती हमारी हमें कहाँ से कहाँ ले जा सकती है। अच्छा, अगर मैं अभी बात करना चाहूँ, 1 साल पहले जो आपके संकेत देने शुरू किए थे आपकी बॉडी ने, आपका जो वजन गिर रहा था, तो आपको क्या लगता है अगर वो 1 साल पहले आपने जांच करवा ली होती तो शायद वक्त रहते बचाया जा सकता था किडनीज को?
0: हो सकता है बचाया जा सकता था, अगर इतनी सिकुड़ी हुई नहीं थी, या एक किडनी जो भी है बचाया जा सकता था।
1: अभी तक की आपकी पूरी कहानी से अगर हम सीखे तो ये है कि अगर कोई चीज़ है तो समय रहते उसको हमें जो है गौर करना चाहिए और अपनी बॉडी के हमें बात सुननी चाहिए कि हमारी बॉडी क्या कह रही है। तो दोस्तों अभी तक हमने जाना है अभिषेक के बारे में, इनके बचपन के बारे में बात करी, इनके उस फेज के बारे में जाना कि कैसे वहाँ तक पहुँचे और क्या इनसे गलती हुई।

0: हो सकता है हम उतना लोगों को जागरूक करें। नया जीवन आपको मिला है एक तरह से, तो अभी कैसा लगता है और आपकी दादी कैसी हैं वो बताइए थोड़ा सा।
1: मेरे दादी जी बिल्कुल फिट फाइन और एकदम ठीक है और बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है ऑर्गन और डोनेशन के बाद में। एक लोगों के भ्रम रहता है कि ऑर्गन निकाल दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, उनकी लाइफ रहेगी या नहीं रहेगी, क्या प्रॉब्लम्स आएगी, लेकिन अभी तक तो उन्होंने कोई प्रॉब्लम फेस नहीं की है। 4 या 5 दिन की टेबलेट थी ट्रांसप्लांट के बाद जब वो आईसीयू में थी, उसके बाद अभी तक कोई टेबलेट नहीं है। बीपी बिल्कुल परफेक्ट है, अभी पीछे ही जांच करवाई थी, क्रिएटिन वगैरह एकदम फिट, बाहर घूमते हैं फैमिली में, फंक्शन में इधर उधर जाते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम बढ़िया है।
0: अच्छा, बहुत सारे लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराने से कतराते भी हैं, तो आप बताइए आपका अनुभव कैसा है?
1: नहीं, बिल्कुल सही फैसला था, करवा लेना चाहिए। डायलिसिस बहुत हार्ड है और मुझे तो फिस्टुला नहीं लगा था, लेकिन 1 month के बाद फिस्टुला भी लग जाता है, फिर फिस्टुला भी हाथ में, फिर हाथ से। मेरे कोई रिलेटिव है, उनको दूर के रिलेटिव है, 20 years हो गए हैं किडनी फेल हुए, वो डायलिसिस करते हैं खुद ही, घर पर मशीन लगवा रखा है क्योंकि डोनर अभी तक मिला नहीं है, तो बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं उनके शरीर में, जगह जगह वो फिस्टुलाज, कभी पैर में, कभी कहीं, कभी कहीं, बहुत हार्ड है जीना, डायलिसिस बहुत हार्ड है।
0: क्या कोई ऐसी दिक्कत है आपके सामने अभी जो आपको लग रहा है कि ट्रांसप्लांट के बाद ये दिक्कत हुई है मेरे शरीर में?
1: हाँ, ऐसे तो कुछ चीजें अवॉइड करनी पड़ती है, पहले जैसी लाइफ तो नहीं रहती है, बट ओवरऑल ये है कि बढ़िया लाइफ है, ऐसा आप नहीं कह सकते कि कोई कमी है, बिल्कुल सामान्य जीवन है जैसा अपने फैमिली में कोई जी रहा है ये, या बाहर कोई जी रहा है, बिल्कुल वैसी लाइफ है, कोई मुझे डिफरेंस ऐसे ज्यादा नजर नहीं आता। हाँ, कुछ हेल्थ के लिए आपको अवॉइड करना ही पड़ेगा, वो कि जो कि सबको करना चाहिए, पाम ऑयल हो गया, ये वगैरह चीजें हैं, वो तो आजकल हर किसी को करना ही चाहिए अवॉइड।
0: यानी कि खान पान जो आपकी खुराक है वो अच्छी रखनी चाहिए। कोई और चीज जो आप कहना चाहते हो हमारे श्रोताओं से जो भी इस टाइम आपको सुन रहे हैं?
1: ऑर्गन डोनेशन बिल्कुल करना चाहिए और उससे खुद को भी एक सर्टिफिकेशन मिलता है, कोई जो कोई ऑर्गन डोनर है या किसी ने ऑर्गन डोनेशन फॉर्म फिल किया है, बिल्कुल करना चाहिए। आपके फैमिली में प्रॉब्लम है तो उसका तो कोई नो आंसर ही नहीं, 100% आपको ऑर्गन डोनेशन उसको करना चाहिए, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर भी ऑर्गन डोनेशन में फॉर्म फिल करना चाहिए और उससे सर्टिफिकेशन मिलता है खुद को कि अपने लाइफ में कुछ वेलबींग के लिए कुछ किया है, ऐसी लाइफ नहीं चली गई है। और मिलने के बाद ऑर्गन डोनेशन ये एक तरीका है कि आपकी लाइफ के बाद ही लाइफ जो है चलती रहे। कहते हैं कि ऑर्गन्स मेमोरी कलेक्ट करते हैं, ऑर्गन्स भी कहीं ना कहीं 5% 10% मेमोरी को कलेक्ट करते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो गया है तो वो मेमोरी भी अगले बंदे में थोड़ी बहुत जा रही है और उसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, 1 kidney के साथ भी लीवर भी कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, लीवर है तो लीवर वापिस ग्रो हो जाता है कोई अगर डोनेट करता है, और 1 kidney के साथ कई तो बोन नहीं 1 kidney के साथ ही होते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं।
0: और अभिषेक जी, कोई भी ऐसी चीज जो मैं ना पूछ पाया हूं और आपके मन में हो और आप कहना चाहते हो तो प्लीज फील फ्री।
1: यही है कि अब कुछ न कुछ सेकंड लाइफ मिली है तो कुछ अचीव करना है, ऐसे ही सेकंड लाइफ में ऐसे ही नहीं जाना है, कुछ न कुछ करके जाना है कि लोग याद रखे।
0: जी, तो हमारी पूरी संस्था की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, सबसे पहले मुबारक हो इस नए जीवन के लिए, और दूसरा शुभकामनाएं जो भी आप उच्च

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में आए व्यवधान के लिए हमें खेद है। अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम, आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है।
1: थैंक यू सो मच अभिषेक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ कि आज के शो से और अभिषेक जी की कहानी से हम कुछ मूल्य आप लोगों तक पहुँचा पाए हैं। तो कुल मिलाकर हमारे हर एक संवाद का उद्देश्य यही होता है कि जितना हो सकता है लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों, उठ के सामने आए और एक प्लेटफॉर्म जो है वो एटलीस्ट फिल आउट करें। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, अभी थोड़े दिनों पहले की ही बात है, पुणे में एक इंसान का देहांत हो जाता है। उनके देहांत पे उनकी उम्र थी 49 साल, यानी कि 49 ईयर्स। उनके परिवार ने एक निर्णय लिया कि इनके ऑर्गन्स को हम डोनेट करेंगे और इंस्टेंटली 3 लोगों की जान बचाई गई। तो ये बहुत बड़ा एक काम था और हम चाहते हैं कि ऐसे हीरोज उठ के सामने आए, इतनी जागरूकता हर एक परिवार में हो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के जीवन को बचाया जा।

0: सके, उनको जीवन दान दिया जा सके। तभी तो कह सकते हैं ना, जीवन एक अनमोल उपहार यकीनन है। अब इसी के साथ इजाजत दीजिए, फिर लौटेंगे लेकर एक और शो। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार।
1: फिर लौटेंगे ऑर्गन इंडिया के कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार में।
2: दोस्तों, अंगदान से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप ऑर्गन इंडिया की वेबसाइट organindia.org पर जा सकते हैं या उनके टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-120-3648 पर संपर्क कर सकते हैं। अंगदान के बारे में आप अपने परिवार को जरूर बताएं और अपने आसपास सबको प्रेरणा दें।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है, अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 6 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी समाचार, जिन्हें हम अपने केंद्र से रिले करेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
3: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मेशाल अल अहमद अल जबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। इसे भूमि पत्तनों के बीच एकीकृत प्रणाली कायम करने के लिए बनाया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह प्रणाली आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
4: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
2: रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की अपनी तरह की पहली परियोजना में रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन होगा। इससे रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर खर्च में काफी कमी आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। नई दिल्ली स्थित NTA मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की

0: तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस प्रक्रिया में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए खुफिया ब्यूरो और केंद्रीय जांच ब्यूरो सहित सभी साइबर सुरक्षा संसाधनों को लगाया गया है। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। अमेरिका के एक संघीय न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा प्रस्तावित $1,00,000 के H-1B वीजा शुल्क को रद्द करते हुए इसे गैर कानूनी करार दिया है। इससे कई कुशल भारतीय पेशेवरों को फायदा होगा। पिछले साल सितंबर में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा आवेदन शुल्क को लगभग 2,000 से बढ़ाकर $1,00,000 करने की घोषणा की थी। श्रीलंका के दामोला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 278 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में श्रीलंका ए ने ताज़ा समाचार मिलने तक 48 ओवर में 7 विकेट पर 268 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने ऋतुराज गायकवाड़ के 101 रन की बदौलत निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर 277 रन बनाए थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। शाम 7:10 पर आप सुनेंगे सरकार के 12 वर्ष विषय पर समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रसारित एक विशेष श्रृंखला में आर्थिक विकास पर बातचीत। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृषि जगत में शाम 6:20 पर डॉ आर के गुप्ता से पूर्व प्रसारित बातचीत का विषय रहेगा केंचुआ खाद बनाना। ग्रामीण संसार आप सुनेंगे शाम 7:00। हरियाणवी लोक गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम थारी पसंद प्रसारित होगा रात 9:30। सुगम संगीत कार्यक्रम का समय रहेगा रात 8:25। फिल्म संगीत आप सुन सकेंगे शाम 7:45 पर। एक फिल्म से कार्यक्रम में रात 9:15 पर और मन चाहे गीत कार्यक्रम में रात 10:30 पर। ये थी जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों की। अब कल के मुख्य आकर्षण। शाम 7:10 पर आप सुनेंगे सरकार के 12 वर्ष विषय पर समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रसारित एक विशेष श्रृंखला में इंफ्रास्ट्रक्चर और रात 9:30 पर कार्यक्रम चर्चा का विषय है। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम प्रसारित होगा 12:30 पर और प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां 2:45 पर। सुबह 7:15 पर हमारी सेहत कार्यक्रम में डॉक्टर कुलवंत सिंह से भेंटवार्ता का विषय रहेगा रक्तदान के लाभ व सावधानियां। सुबह 7:25 पर लेकर आएंगे सुबह सवेरे कार्यक्रम। युवाओं का दैनिक कार्यक्रम युवा संसार प्रसारित होगा शाम 5:30। सुबह 6:50 पर कृषि की बातें कार्यक्रम में वार्ता का विषय रहेगा धान का बीजोपचार व नर्सरी में सावधानियां। खेत खलिहान में 2:30 चर्चा का विषय रहेगा सोयाबीन की काश्त। शाम 6:20 पर कृषि जगत के अंतर्गत भेंट वार्ता किसान से के कार्यक्रम में आप सुनेंगे श्री गजराज से पुनः प्रसारित बातचीत। ग्रामीण संसार आप सुनेंगे शाम 7:00। सुबह 8:30 लोक संगीत कार्यक्रम में कलाकार होंगे सुमेर सिंह आर्या और सुंदर सिंह। सुगम संगीत कार्यक्रम सुनिएगा रात 8:25 पर। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे मन भावन कार्यक्रम में रात सुबह 9:00। आपके अनुरोध पर कार्यक्रम में 1:10 पर। शाम 7:45 पर एक फिल्म से कार्यक्रम में रात 9:15 पर और मन चाहे गीत कार्यक्रम में रात 10:00। ये थी हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब जानकारी कुछ गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में। ये पहली सूचना है थाना पुरानी सब्जी मंडी रोहतक से प्राप्त। प्राप्त सूचना के अनुसार गुमशुदा लड़की का नाम है सोनिका, उम्र 19 साल, रंग गेहुआ, गोल चेहरा, कद 5 फुट 1 इंच। इन्होंने काले रंग का सूट और काले रंग की लोअर पहनी है। इनके बारे में अगर कोई भी सूचना मिले तो संपर्क करें SHO थाना पुरानी सब्जी मंडी रोहतक। मोबाइल नंबर है 7082999116। अगली सूचना है थाना पुरानी सब्जी मंडी रोहतक से प्राप्त। प्राप्त सूचना के अनुसार गुमशुदा महिला का नाम है सविता। ये अपने लड़के हर्षित के साथ गुमशुदा हैं। सविता का हुलिया इस तरह है। रंग सांवला, लंबा चेहरा, दुबला पतला शरीर, कद 5 फुट 3 इंच, उम्र 24 साल। हर्षित का हुलिया इस तरह है। रंग सांवला, गोल चेहरा, दुबला पतला शरीर, दाहिने पैर की साथल पर बाई बर्थ मार्क है और उम्र हर्षित की 2.5 साल है। इनके बारे में अगर कोई भी सूचना मिले तो संपर्क करें थाना पुरानी सब्जी मंडी रोहतक। मोबाइल नंबर है 7082999116। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:10 होने को हैं। कुछ ही क्षणों बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे चंडीगढ़ केंद्र से।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा विधानसभा की मेजबानी में चंडीगढ़ में आयोजित राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन संपन्न हुआ। सम्मेलन में 40 वक्ताओं ने सर्वसम्मति से 4 प्रस्ताव पारित किए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जागृत ग्राम पुरस्कारों के तहत 6 ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज विभिन्न योजनाओं की कुल 2600 करोड़ रुपए की राशि जारी की। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अभूतपूर्व कार्य किए हैं। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 17 जिलों में 350 अटल पुस्तकालयों का लोकार्पण किया। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा विधानसभा की मेजबानी में चंडीगढ़ में आयोजित राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन के जोन 2 सम्मेलन के आज दूसरे दिन प्रथम एवं द्वितीय सत्र में भविष्य की चुनौतियों से निपटने और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में जागरूक समाज एवं विधायकों की भूमिका विषय पर मंथन किया गया। तीसरे सत्र के उपरांत मीडिया के साथ वार्ता करते हुए राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश ने बताया कि सम्मेलन में अलग अलग राजनीतिक दलों और अलग अलग विचारधारा के 40 वक्ताओं ने मिलकर संवाद किया और सर्वसम्मति से 4 प्रस्ताव पारित किए।
1: कार्यक्रम और जन जागरूकता पहल के माध्यम से विधि निर्माताओं और नागरिकों के बीच निकटता सुदृढ़ करना। संकल्प 2, निरंतर प्रोफेशनल प्रशिक्षण, बेहतरीन संव्यवहारों के आदान प्रदान, आधुनिक तकनीकों के उपयोग और बेहतर अनुसंधान सपोर्ट के माध्यम से विधि निर्माताओं की क्षमता को सुदृढ़ करना। सम्मेलन ने माना कि प्रभावी शासन के लिए जानकार और सक्षम विधि निर्माता आवश्यक है। संकल्प 3, विधायी निगरानी को सुदृढ़ करना, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में जनता का विश्वास बढ़ाना और नीति बनाने व उसे लागू करने में नागरिकों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना।
0: उन्होंने कहा कि पहले प्रस्ताव का उद्देश्य संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देना और तकनीक का जिम्मेदारी से उपयोग करना है, ताकि एक ऐसा समाज निर्मित हो जो जानकार, जागरूक और सशक्त हो तथा विकसित भारत 2047 के विजन को प्रभावी योगदान दे सके। अंतिम और छठे संकल्प को लेकर उन्होंने बताया कि सार्वजनिक सेवा प्रदायगी में पारदर्शिता, कार्यकुशलता और सुलभता बढ़ाने के लिए डिजिटल तकनीकों, AI यानी कृत्रिम बुद्धिमता और डाटा आधारित निर्णय लेने की प्रक्रिया के अधिक उपयोग को बढ़ावा देना है। हरियाणा लोकसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने बताया कि आज लगभग 5.5 घंटे तक चर्चा हुई है।
1: लगभग 5.5 घंटे तक आज चर्चा हुई है और उसमें लगभग 40 सदस्यों ने, पीठासीन अधिकारी और अन्य सदस्यों ने इसके अंदर अपना विषय रखा है और 4 प्रस्ताव पास भी हुए हैं। और साथ ही इसके बाद अभी वैलिडिक्ट्री सेशन होगा, जिसमें हरियाणा के माननीय राज्यपाल प्रोफेसर असीम घोष उसके अंदर हिस्सा लेंगे, साथ में माननीय लोकसभा अध्यक्ष और माननीय उपसभापति राज्य

0: लोकसभा उसके अंदर मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे और उससे पहले सभी माननीय सदस्य गणों के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एक छोटा सेशन रखा गया है कि किस प्रकार से हमें भविष्य में टेक्नोलॉजी के साथ जुड़कर आगे बढ़ना है और किस प्रकार से हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनी कार्यक्षमता कार्यकुशलता को बढ़ाने में हमें इस्तेमाल करना है।
1: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जागृत ग्राम पुरस्कारों के तहत प्रदेश की 6 ग्राम पंचायतों को विकास, स्वच्छता और सुशासन के नए मानदंड स्थापित करने के लिए सम्मानित किया। उन्हें 1,66,00,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी गई। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भारत की असली शक्ति हमेशा गाँव और पंचायतों में है।
2: आज 17 जिलों में 44 करोड़ रुपए की लागत से बनी 350 अटल लाइब्रेरी का भी लोकार्पण किया गया है और साथियों जो पिछले दिनों मैंने घोषणा किया था कि मुख्यमंत्री जागृति ग्राम पुरस्कार के माध्यम से 6 ग्राम पंचायतों को आज यहां सम्मानित भी किया गया है जिन्होंने जो हमने 5 पैरामीटर्स बनाए हैं उन पैरामीटर्स को उन मानदंड को स्थापित किया है और इसकी एवज में आज 1,66,00,000 रुपए के पुरस्कार की राशि इन पंचायतों को देने का काम किया है।
1: इन पंचायतों में फतेहाबाद जिला के गांव जांडली कला की ग्राम पंचायत को 51,00,000 रुपए, चरखी दादरी के गांव झिंझर की पंचायत को 31,00,000 रुपए, अंबाला के साहा की पंचायत को 21,00,000 रुपए की राशि प्रदान की गई। इसी प्रकार द्वितीय श्रेणी में फतेहाबाद जिला के गांव जल्लोपुर की पंचायत को 31,00,000 रुपए, गाँव गदली को 21,00,000 रुपए तथा करनाल के मरदान हेड़ी गाँव की ग्राम पंचायत को 11,00,000 रुपए का पुरस्कार दिया गया। उन्होंने इस दौरान कुरुक्षेत्र के सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व पर आधारित धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र पुस्तक का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने आज विभिन्न योजनाओं की कुल 2,697 करोड़ रुपए की राशि जारी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत प्रदेश की माता बहनों को 8वीं किस्त की 207,75,00,000 रुपए की राशि जारी की गई है।
2: दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हमने 8वीं किस्त जारी की है जिसके माध्यम से आज महिलाओं के खाते में 207,75,00,000 रुपए की राशि पहुंचाने का काम किया है। चाहे हमारे बुजुर्गों की ये सामाजिक पेंशन की बात है या विडो पेंशन है, ऐसी सब पेंशनों को मिलाकर के आज 1,151,51,00,000 रुपए की राशि उनके खाते में पहुँचाने का काम किया है।
1: मुख्यमंत्री ने बताया कि दयालु योजना के तहत भी पीड़ित परिवारों को 169,50,00,000 रुपए की वित्तीय मदद जारी की गई है।
2: दयालु योजना के तहत अगर किसी परिवार के ऊपर कोई दुखों का पहाड़ टूट जाता है तो सरकार उसका सहयोग करती है। हमने दयालु योजना के तहत आज 4,538 परिवारों को 169,50,00,000 रुपए की राशि जारी की है और ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों के लिए 1,56,75,00,000 रुपए की राशि खाते में डालने का काम किया है।
1: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अभूतपूर्व कार्य किए हैं जिनका सीधा लाभ देश की जनता को मिला है। उन्होंने सिलसिलेवार योजनाओं के हिसाब से आंकड़े प्रस्तुत किए। केंद्रीय मंत्री रोहतक के वैश्य कॉलेज सभागार में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असंभव को संभव बनाने का काम किया है। बाद में पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने कहा कि गत 12 वर्ष के दौरान भारत ने स्थिरता और परिवर्तन दो शक्तियों का प्रमाण देखा है।
3: आज भारत में दो शक्तियों का एक प्रमाण पिछले 12 वर्षों में हमने देखा है, एक स्थिरता और दूसरा परिवर्तन। प्रधानमंत्री जी भारत वर्ष के सबसे लंबे प्रजातंत्र प्रणाली से चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित हो चुके हैं, तो अभूतपूर्व स्थिरता और उसी के साथ भारत के घरेलू उत्पादन की दर 7.7% तक पहुंचकर पिछले 12 वर्षों में इसका एवरेज 7% के करीब आ चुका है जिसके आधार पर अभूतपूर्व परिवर्तन भी हुआ।
1: उन्होंने रोहतक में 4 वर्ष पहले करीब 315 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुए रेलवे एलिवेटेड ट्रैक का निरीक्षण भी किया और स्वच्छता अभियान में भी शिरकत की। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल

0: और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है कि शामलात भूमि पर पिछले 20 वर्षों से मकान बनाकर रह रहे ग्रामीण परिवार मालिकाना हक लेने के लिए अगले वर्ष 16 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। ऐसे परिवारों से वर्ष 2004 की कलेक्टर दर की 1.5 गुना की अनुसार भूमि खरीद की राशि जमा करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय सशक्त पंचायत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दस्तावेजी कठिनाइयों के कारण कई लोग आवेदन नहीं कर सके थे, ऐसे में सरकार ने उन्हें राहत दी है। इसके साथ ही उन्होंने घोषणा की है कि ग्रामीण क्षेत्र में कचरा प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली चालक और कचरा संग्रहण कर्मी उपलब्ध करवाए जाएंगे। यह ट्रैक्टर इलेक्ट्रिक होंगे। इसके अलावा वेस्ट टू एनर्जी परियोजनाओं पर भी सरकार काम कर रही है। इस दौरान उन्होंने 17 जिलों के 179 गाँव की फिरनियों पर LED स्ट्रीट लाइट का उद्घाटन भी किया, जिन पर 23 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत आई है। साथ ही 17 जिलों में 44 करोड़ रुपए की लागत से बने 350 अटल पुस्तकालयों का भी लोकार्पण किया। उन्होंने ग्राम विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं को विकास कार्यों हेतु 1,056 करोड़ 75 लाख रुपए सीधे उनके खातों में हस्तांतरित किए। मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा विधानसभा की मेजबानी में चंडीगढ़ में आयोजित राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन संपन्न हुआ। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
1: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: कृषिगत कार्यक्रम सुनने वाले सारे बाण भाइयों भाइयों अनिल भाई की राम राम। मैं मौसम की बात करा तो विदिन में जिगर चल रहा था भाई, बहुत तेज़ गर्मी, अथा गर्मी, लेकिन मौसम बदलिया। भिवानी साइड के कुछ एरिए हैं जो भाई हल्की फुल्की ओलावृष्टि भी हुई है, कितने चादर बेसी बूंद आई है। चौपाल से बाहर की बात करा तो भाई अंदौड़सा का मौसम होया, तेज़ हवा से भी चल रही, कितने कितने भाई कदी बूंद भी आई है। महेंद्रगढ़ साइड की बात करा उड़ तो भाई सा हो रहा है, रोज शाम ने मौसम हो जाए, आंधी भी आऊँ है, पेड़ पैड भी पड़े हैं। तो सारा जो एक मौसम का हम कह सकें भाई जो पश्चिमी विक्षोभ है, क्योंकि जो मानसून है, प्री मानसून है, केरल साइड तभी दस्तक दी थी, फिर अपना धीमी पड़ गई, लेकिन फिलहाल जो ये अंदौड़ है, बारिश है, बूंदाबांदी है, गरज है, चमक है, ये सारा पश्चिमी विक्षोभ का असर भाई देखने में मिल रहा है। तो समय रहते भी जो भी अपना खेत के आगे काम है, क्योंकि भाई आगे मानसून भी आऊगी। जड़ हमारे बिरानी एरिए हैं, हम ये कह सकते हैं कि भाई प्योर जो भाई अपना वर्षा पर निर्भर जो हमारे एरिए हैं, डोले हैं, नाके हैं, वो अपना करड़े कर ले और मेड़बंदी हैं उसका काम हम पूरा कर ले। पानी की जो एक संचय का एक सही तरीका है वो आगे चल के भी अपना जो नमी है वह काम आ जा। और जिन भाइयों ने भी आगे चल के बाजरा बोना है या फिर भाई फिलहाल अगर बारिश ठीक ठाक सी कितने होगी जुआर की बिजाई भाइयों ने करनी है वो भी कर सके हैं। और जो कपास फसल की हम बात करा भाई, कपास फसल में अनुमान के चालो कई अवस्था हमारे दौर है भाई। पहले की हम बात करा तो कुछ हमारे एरिए जिस तरह भी महेंद्रगढ़ का है, नारनौल का है भाई, वर्तमान में जो अपने दादरी है, पहले भिवानी में था,

0: सारी एक के बेल्ट में गिना जाया करता, और हिसार का कुछ एरिया, जींद का, और भिवानी में जो ऊपरली साइड आप जाओगे, लुआरू साइड जो एरिया था, बिल्कुल वर्षा पर निर्भर। ई बम देखा, हाँ भाई, कितने नहर नहर निकल गई, कितने चावे ऊपर आ गए भाई, कितने तो हम देखा भाई बाजरा में पानी का थोड़ा पड़ रहा है, और कितने हम देखा कि भाई धान के लिए पानी घना चढ़ गया एक एक गम में, यानी कि सारा अप्राकृतिक सा हो गया। पहले जो गिनती होया करती भाई, उड़ो एरिया में भाई हर सिंचिता में भाई अपने कपास बो दी, बाजरा बो दिया, उन एरिया में भी कितने भी धान बुए हैं, कितने भी अपने बाजरा के पानी की कमी है, तो सारा ये कह सकते हैं तामा जामा सा ऐसा बन रहा है। तो अपना भाई एरिया देख के, मौसम देख के, और फिर जो अपना फसलों का चुनाव है वो हमने भाई करना है। दिन भर हम बात करा, जो हमारे बुजुर्ग हैं नु कहें भाई नाज की एक आवक है वह बढ़ गई लेकिन गुणवत्ता घट गई। जो पुराने नाज थे उनमें ताकत थी, जमीन की जो उर्वरा शक्ति थी, एक भौतिक गुण जमीन में जो थे, भौतिक पदार्थ जीवांश की जो मात्रा थी वह कम होती जा रही है। बहुत सारे हमारे पुराने घास, इसी जड़ी बूटी, बहुत सारी सी वनस्पति, और भाई पक्षी, चिड़िया की हम बात करें, गौरैया की भाई लुप्त होने के कगार पे है, खेत भाई गादड़ रहे, बहुत सारे से जानवर होया करते, धीरे धीरे घटती का पैरा हो रहा है। और सब का कारण है कि भाई जो अंधाधुंध हमने रसायन और जमीन तय गणा लिया है, दिया कोनी, तो उसकी बजाय जो हमारी जमीन है उसमें की उर्वरा शक्ति घटने के बाद और एक रे कलर की चास, और हमारी जो जमीन है बंजर होती जा रही है। इसके लिए भी प्राकृतिक हम बात करें तो भी देखो गोबर की गलीसरी खाद और ये चीज़ काम करें, लेकिन छोटे रूप में हम बात करें तो भाई जो वर्मी कंपोस्ट का है, केंचुए की जो खाद है, वह इसमें बहुत सहायक है, जीवांश की मात्रा बढ़ाने में भी और भाई रे कलर की चास खत्म करने में भी, जमीन ने भाई उपजाऊपन बढ़ाने खातर भी। इसके लिए भाई एक पूर्व प्रसारित बातचीत सुन लें, डॉक्टर आर के गुप्ता जी भी चौपाल में आए थे, तो सुनो भाई ये बातचीत।
1: भाई आज बातचीत करेंगे वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाए और किस तरह से इसका उपयोग किया जा सकता है। वर्मी कंपोस्ट यानी कि केचवा खाद, और इसके बारे में बात करने के लिए आज स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर राजेंद्र कुमार गुप्ता जी को। आप विभागाध्यक्ष हैं जूलॉजी विज्ञान है, जो बेसिक साइंस कॉलेज हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका स्टूडियो में।
2: धन्यवाद संजय भाई। ये जो केचुआ खाद बनाने का जो टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है किसानों के लिए।
1: जी
2: ये ना केवल भूमि की उपजाऊ शक्ति को अच्छा करता है, इसके अलावा ये उसमें मॉइस्चर या आर्द्रता की भी जो मेंटेनेंस है वो करता है, पानी की उपलब्धता को
1: सुनिश्चित करता
2: सुनिश्चित
1: है।
2: करता
1: जी
2: है।
1: तो सब उससे पहले थोड़ा सा ये जो केंचुआ है इसके बारे में जानकारी चाहूँगे कि एक तो आम जो हमारे श्रोता है वो देखते हैं, एक आप वैज्ञानिक दृष्टि से इसका थोड़ा सा हुलिया और उसका वो बताओ।
2: केचुआ जो है वो एनिलिडा एक प्रजाति है,
1: जी
2: उसका जंतु है, सेगमेंटेड इसकी शरीर होता है, बॉडी होती है, और मेल और फीमेल
1: जी
2: यानी नर और मादा दोनों एक ही
1: जी में होते
2: जीव
1: हैं।
2: में होते हैं।
1: अच्छा
2: ये इसलिए एक ही जीव में होते हैं जिससे कि इनकी जो प्रजनन है
1: जी
2: वो बढ़ सके,
1: अच्छा
2: प्रजनन बढ़ सके और इनकी संख्या है ज़्यादा से ज़्यादा हो सके भूमि में, जिससे कि भूमि उपजाऊ हो सके और अन्य उसमें किसानों को लाभ हो सके।
1: जी डॉक्टर साहब, कई बार ये देखते हैं कि अच्छी बारिश होती है तो जमीन में से निकलते हैं, तो इनमें जो देसी एक तो हैं जो कुदरती रूप से निकलते हैं वो, और जिनका हम पालन करते हैं, इनमें क्या कुछ फर्क है?
2: नहीं, वो बहुत अच्छा सवाल है संजय भाई आपका। हमारे पास यहाँ दो किस्म के केचुए हैं, एक तो एक्जोटिक स्पीसीज जो बाहरी केचुए हैं
1: जी
2: जिसमें आइसिनिया फाइटिडा है जिसे हम लाल वॉर्म भी कहते हैं,
1: जी
2: यूड्रिलस यूजिनिया है, पेरियोनिक्स एक्सकेवेटस है, ये तो है बाहर के केचुए हैं जो बाहर से हम भारत में
1: लेके
2: लाए हैं।
1: जी
2: दूसरे हैं इंडिजिनस किस्म के केचुए जो हम BSc में पढ़ते हैं, फेरिटिमा वोस्टिमा, जो
1: जी
2: हमारा नॉर्मल घरों में पाया जाता है, जिसके बारे में आपने कहा कि वो बारिश होती है तो
1: जी
2: घर के आंगन में या पक्की जगह पर वो केचुए आ जाते हैं और बच्चे उसके साथ खेलते हैं।
1: जी
2: वो जो ये सिनेरियो था आज से 25-30 साल पहले ये था कि भी
1: जी
2: आपके घर में बारिश हुई और आपकी
1: हाँ
2: जो पक्की जगह है उसमें बहुत सारे केचुए आ जाते थे और
1: जी
2: आप उनको, माँ बहनें उनको बाहर निकालती थी
1: जी
2: झाड़ू के साथ। आज
1: जी
2: वो परिदृश्य शायद आप ना देख पाए
1: जी
2: क्योंकि खेतों में, घरों में, आसपास रासायनिक खादों का उपयोग होने लग गया। उसकी
1: जी
2: वजह से ना केवल केचुए मर जाते हैं बल्कि उनकी जो प्रजनन शक्ति है उस पर भी उसका असर पड़ता है। तो इसलिए हम आजकल ये जो दृश्य है शहरों में कम दिखता है, दिखता तो है ग्रामीण पृष्ठभूमि में कहीं कहीं ये दृश्य दिखता है। तो मैं आपके मुख्य टॉपिक पे आती हूँ कि जैसे दो किस्म के हैं इंडिजिनस।
1: डॉक्टर साहब एक बात और रहेगी कि जब वो निकलते हैं तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें और आमतौर पर सांप के बच्चों में वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है, एक संदेह रहता है, उसमें मोटा मोटा जो फ़र्क है ना वो बताओ।
2: हाँ, सांप जो है वो रेप्टाइल्स में आते हैं
1: जी,
2: रेप्टाइल या रेप्टिलिया में आते हैं, ये निमेटोड होते हैं। सांप की बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती,
1: सेगमेंटेड यानी
2: टुकड़ों में अगर आप देखो ना केंचुए की बॉडी को तो टुकड़ों में बटी हुई दिखती है
1: जी।
2: तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस सांप और उसमें केंचुए में होता है। कुछ जो थोड़ा सा और अगर जानकारी हो तो आपको पता भी लग जाता है कि उसके साइज पे, बच्चे के साइज पे
1: जी,
2: केंचुए का बच्चे का साइज बहुत, अडल्ट का साइज ही सांप के बच्चों जितना होता है, जो आइसिनिया फर्टिडा, जो लाल केंचुआ है, जो कि नॉर्मली आजकल बाहर की वैरायटी है, जो कि हमारी वर्मी कंपोस्ट यूनिट में आजकल प्रयोग होता है
1: जी। डॉक्टर साहब कई बार ये देखा है कि केंचुए के मुंह की साइड में तीन चार वो इकट्ठे से वो होते हैं, जुड़े हुए से होते हैं, तो ये उसकी कोई खास
2: नहीं, ये केंचुआ नहीं हो सकता कि वो तो वो अपने दूसरी वैरायटी के रेप्टाइल्स होते हैं, तीन मुंह से निकलते
1: हैं। नहीं, मुंह की साइड में मतलब एक मुंह हो गया और पूंछ हो गया, मुंह की साइड में शुरू के पांच सात वो उसके जोड़ छोड़ के फिर दो या तीन जुड़े हुए से कुछ इस तरह।
2: हाँ, वो क्लाइटेलम होता है, वो जब केंचुआ मैच्योरिटी पे आता है या थोड़ी साइज उसका प्रजनन क्षमता बढ़ती है तो वो क्लाइटेलम डेवलप होता है
1: जी,
2: उससे उसके प्रजनन अंगों की स्थिति का पता लगता है
1: जी। तो मतलब ये एक
2: केंचुए की पहचान है,
1: पिछाड़ के रूप में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
2: बिल्कुल, क्लाइटेलम होता है वो
1: जी।
2: हाँ जी
1: जी। अब डॉक्टर साहब इसके पालने की बात करेंगे कि किस तरह से इसको पाल सकते हैं।
2: बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा सवाल संजय भाई आपका। हम इसको दो विधियों से पाल सकते हैं, एक तो पिट या खड्डे में
1: जी,
2: जैसे ही किसान के पास भूमि हो या जैसा किसान का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर हो जमीन का, उस हिसाब से वो अपनी विधि चुन सकता है। एक तो पिट विधि है या भूमि खड्डे में खड्डा खोद के, उसमें 4x4 का खड्डा भी हो सकता है, 6x6 का भी हो सकता है, जितनी उसकी क्षमता है किसान की उस हिसाब से होती है। तो सबसे पहले तो उसमें हम जो ये पैलेट्स होते हैं, रोड़ी होती है
1: जी,
2: जो कच्ची ईंट की रोड़ी होती है, उसकी एक लेयर हम तय बना देते हैं 1-2 इंची। उसके बाद 1-2 इंची अपन उसमें मिट्टी, जो खेत की मिट्टी है, उसकी तय बनाते हैं। फिर हमने 3-4 इंची जिस चीज़ का हमने वर्मी कंपोस्ट करना है, जिसको हमने खाद में परिवर्तित करना है, उसमें गोबर भी हो सकता है
1: जी,
2: उसमें कोई आपका राइस ब्रान, जो ये थूड़ी वगैरह भी हो सकती है, जो बिल्कुल गली सड़ी हो
1: जी,
2: नहीं तो किस अपने फार्म एनिमल्स में भी यूज होती है थोड़ी, तो जो भी वेस्ट हो
1: जिस तरह शीशा हो गया, प्लास्टिक
2: शीशा गलता तो नहीं,
1: चीजों को छोड़ के
2: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये गलने वाली चीजें नहीं है, ऑर्गेनिक नहीं है
1: जी।
2: पॉलिथीन भी नहीं गलता एक छोटे ड्यूरेशन में, पॉलिथीन को भी बड़ा टाइम लगता है गलने में, 400 साल लगते हैं
1: जी।
2: तो 400 साल में जो पहला पॉलिथीन बना अभी तक वो भी नहीं गला
1: जी जी। तो यानी कि ये चीजें हैं, इनका हम इस्तेमाल कर सके हैं। तो जिस तरह आपने बताया कि इसकी अलग अलग तय लगानी है, तो पहले गोबर है या हमारे पास में जो
2: पहले पैलेट्स
1: है वो
2: हाँ, उसके बाद जो आपने वर्म्स हैं, जो केचुए हैं जो किसी वैरायटी के हों, आइसिनिया आजकल प्रयोग में होता है, लाल वर्म कहते हैं, क्योंकि वो जल्दी प्रजनन करता है और जल्दी ही खाद बनाता है। तो जो हमें ऐसी प्रजाति चाहिए जो जल्दी काम करे
1: जी,
2: है ना
1: जी,
2: तो जल्दी काम करे, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो, तो वही हम उसको यूज़ करते हैं। उसके बाद उसको उसके उसकी लेयर आ जाती है
1: जी।
2: उसके बाद उसको कोई भी पोरस चीज है, जैसे पल्ली होती है खेतों में
1: जी,
2: बोरियों की पल्ली होती है, उससे ढक देते हैं, जिससे कि उसमें मॉइस्चर जो है वो रिटेन रहे, जिससे आर्द्रता उसमें नमी बनी रहे, क्योंकि नमी भी बहुत जरूरी है केंचुए के विकास और केंचुए के प्रजनन और उसके कंपोस्टिंग बनाने के लिए। ये तो एक विधि हुई जो पिट विधि होगी।
1: डॉक्टर साहब एक बार जानना चाहेंगे कि इसमें कोई मात्रा रहती है कि भाई इतना गोबर का खाद हो और इतना उसमें केंचुए छोड़े जा सकते हैं, इस तरह का कोई?
2: नॉर्मली 10x10 का अगर अपने गड्ढा है,

0: दस पाए, तो उसमें 1,000 केचुए, हम 1 किलो केचुए आते हैं
1: जी
0: वो छोड़ देते हैं। लेकिन आजकल ये पुराने टाइम में जब आपको केचुए नहीं मिलते थे,
1: जी
0: तब आप इस तरह की भी एक इकोनॉमिकल वायबिलिटी बनी रहे कि
1: जी
0: केचुए बड़े दुर्लभ होते थे।
1: जी
0: अब तो जगह जगह किसानों ने केचुए के प्लांट लगा रखे हैं,
1: जी
0: तो इस तरह की कोई ज़्यादा मुश्किल आती नहीं। 100 के भी अगर 1,000 के भी 1,020 डाल दो या 1,500 डाल दो, तो
1: जी
0: जितनी जल्दी ही वो आपको
1: बना लेते
0: बना
1: हैं
0: देंगे खाद
1: जी।
0: को।
1: अच्छा, एक तो आपने बताया भी खड्डा खोद के उसमें कर सकते हैं, दूसरा तरीका?
0: दूसरा तरीका ढेरी विधि होती है, ढेरी ढेरिया
1: अच्छा
0: बना लेते हैं अपन।
1: अच्छा
0: जैसे कोई खेत में किसान के पास जगह है तो शेड बना लेता है, वो
1: जी
0: शेड बना के उसके
1: जी
0: नीचे ढेरियां जो है, ढेरियां उसके नीचे लग जाती हैं। ढेरियां जो है वो अर्धचंद्राकार बनती हैं, जैसे
1: थोड़ी
0: आप
1: गोल सी
0: गोल सी
1: नारी।
0: अर्धचंद्राकार बनती है। उससे उसके बाद उस पर आप कोई भी मटेरियल चढ़ा नहीं सकते। अर्धचंद्राकार के ऊपर अगर चढ़ाओगे तो नीचे गिर जाएगा।
1: जी जी
0: एक ऐसे अर्धचंद्राकार स्ट्रक्चर बन जाता है डेयरियों में। वो 10 फीट की भी हो सकती है, वो 20 फीट की भी हो सकती है लंबाई में, जितनी
1: अच्छा
0: आपके पास जगह किसान के पास उपलब्ध हो और जितनी वो कर सके। ये फ्लेक्सिबिलिटी का आजकल जमाना है,
1: जी,
0: मतलब हम
1: मतलब
0: किसान को
1: कोई,
0: बांध नहीं सकते कि
1: हाँ
0: 10 फीट ही कर लो,
1: कोई,
0: 15 फीट
1: हाँ
0: कर लो।
1: मतलब
0: अगर उसके पास
1: अपन
0: थोड़ी जमीन है तो थोड़ी पे कर ले, ज्यादा है तो ज्यादा पे कर ले। हाँ, गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है सब्सिडी वगैरह की, वो एक पर्टिकुलर 20 फुट
1: अलग
0: की है,
1: बात
0: वो
1: हो
0: अलग
1: जाए।
0: बात हो
1: जी
0: जाती
1: जी
0: है।
1: तो इसमें खड्डा जिस तरह आपने बताया ढेर लगा के फिर उसमें हम कर सके हैं, तो इसमें फिर वो जो केंचवे हैं वो डॉक्टर साहब बचे रहेंगे, इधर उधर तो नहीं भाजेंगे?
0: नहीं, उसके ऊपर वही बोरी अपना ढक देते हैं,
1: अच्छा
0: बोरी ढक देते हैं पानी से, जिसमें मॉइस्चर बना रहे। और
1: जी
0: जब 40, 45, 50 दिनों के बाद खाद बनती है, तो खाद जैसे चाय पत्ती के सूखे सूखी चाय पत्ती होती है,
1: जी
0: वैसे नीचे से आप कलेक्ट करते रहो डेयरी के नीचे।
1: जी
0: वो गिर जाएगी नीचे, अपने आप ही गिर जाएगी। जैसे डेयरी में खाद बनी,
1: जी
0: केंचुए ने मूवमेंट करी, तो वो जो उसकी जो बीट होती है या जो उसका फिकल मैटर होता है, वो अपने आप डेयरी के नीचे तय पे आ जाएगा। वहाँ से आप उसको प्रोसेस कर सकते हैं फर्दर। जैसे छानना ही उसमें ज़्यादातर होता है, कि भी कोई मोटी चीज़ ना रह जाए, छान के उसको बोरियों में भर लेते हैं। और आजकल ये किसान जो है जगह जगह गौशाला में किसानों के पास जगह जगह उन्होंने कर रखा है। ये एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है
1: जी
0: इनऑर्गेनिक उसका, रासायनिक खादों का,
1: जी
0: और इसकी महत्वता बहुत है। तो जिस चीज़ की महत्वता बहुत होगी, किसान उसको करेगा ही करेगा।
1: जी डॉक्टर साहब, कई बार ये देखा गया कि बीच में वो नाली सी बना के, पक्की नाली सी बना दे हैं 2-3 फुट की, तो वो तरीका भी ठीक है?
0: उसमें जो आपकी कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़ जाती है,
1: लागत बढ़ जाएगी
0: लागत बढ़
1: उसमें?
0: जाती है। हमें सिंपल, जितना सिंप्लीफाइड हो उतना बेटर रहता है। जितना साधारण तरीके से आप
1: जी
0: किसान करे,
1: जी
0: अपने लोकल रिसोर्सेज का प्रयोग करते हुए, जो उसके पास उपलब्ध है
1: जी
0: बगैर किसी बाहर की सहायता के,
1: जी
0: वो ज़्यादा अच्छा रहता है।
1: डॉक्टर साहब, अगर जिस तरह ये नाली बना के भाई कर रहे हैं, तो उसमें नीचे की जो है वो पक्की रखें या वो उसमें कच्ची रखनी चाहिए?
0: नाली में वही जैसे अपना खड्डा है,
1: जी
0: खड्डा अपन चोरस कर लेते हैं, वो
1: जी
0: लंबी नाली बना लेते हैं, बस इतना ही
1: यानी
0: फर्क
1: कई
0: है।
1: पक्की कर लेते हैं ना, दोनों तरफ
0: पक्की,
1: से वो ईंट लगा के वो
0: हाँ, तो
1: पक्की कर ले हैं?
0: दोनों तरफ से ईंट लगा के पक्की कर लेते हैं, तो
1: जी
0: नीचे
1: जी
0: तो कच्चा ही है ना जी।
1: आप वो ना, कोई
0: हाँ,
1: नीचे कच्चा रखना
0: नीचे
1: चाहिए या
0: कच्चा
1: वो?
0: रखना चाहिए नीचे। अगर उसको पक्का करोगे तो उसमें क्या है कि पानी कई बार ज़्यादा डल गया सपोज करो,
1: जी
0: और पानी ज़्यादा डल गया तो वो उसमें कीचड़ की व्यवस्था, कीचड़ जैसा
1: जी
0: माहौल कर देगा, जिससे केंचुओं के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाएगा।
1: डॉक्टर साहब,
0: तो
1: ईसा तो नहीं भी किससे हमने नीचे तो वो रख दिया, खाली रख दिया, यानी कि पक्का नहीं करा और केंचुए वो नीचे भाजे
0: नहीं,
1: गिरे
0: ऐसे
1: रहे?
0: केंचुए जो आप कल्चर करते हैं वो नीचे नहीं जाते,
1: जी
0: वो एपिजोइक होते हैं, ऊपर रहने वाले
1: ऊपर
0: केंचुए,
1: रहने वाले हैं।
0: ऊपर रहने वाले होते हैं
1: अब जिस तरह
0: केंचुए।
1: अपना जो देसी है, ये तो सिर्फ बरसात है उसी टाइम दिखाई दे, बाकी तो
0: हाँ
1: नीचे पता नहीं किस चले
0: हाँ वो
1: जाएंगे।
0: नीचे भी अगर जाते हैं तो कोई 1 फुट 1.5 फुट तक जाते हैं,
1: जी
0: एंडोजोइक होते हैं, जो
1: जी
0: नीचे
1: जी
0: रहने वाले होते हैं। तो
1: जी
0: उनकी महत्वता कम होती है, क्योंकि हमने तो जो खाद बनानी है वो बाहरी मैटर से बनवानी है।
1: जी
0: आर्टिफिशियल जो बाहर अपना फूड है, जो
1: जी
0: ऑर्गेनिक वेस्ट है, उससे खाद बनानी है। तो हमें एपिजोइक जो स्पीसीज है केंचुए की, वो ज़्यादा
1: बढ़िया रहेगी।
0: बढ़िया रहती है।
1: जी डॉक्टर साहब, इसमें फिर पानी का भी किस तरह के ध्यान रखना है भाई? कितनी नमी, आपने बताया भाई नीचे अगर ज़्यादा पानी हो जाए तो भी ठीक
0: तो
1: नहीं
0: भी
1: है, तो
0: हाँ
1: इसमें किस तरह ध्यान रखें, किस तरह उस पर पानी का नमी बनाए रखा है?
0: जी, जैसे आप उसकी खाद को एक मुट्ठी में, जो भी मटेरियल है उसको एक मुट्ठी में लो, पानी भी नहीं टपकना चाहिए उसमें, ऐसे दबाओ तो
1: जी
0: पानी नहीं टपकना चाहिए।
1: ठीक है
0: और ऐसा भी ना हो कि भाई वो आपकी इस पे चिपक जाए, इस
1: अच्छा
0: तरह का भुरभुरा सा जो है वो मॉइस्चर मेंटेन रहना चाहिए, जिससे कि केचुआ जो है वैसे ही केचुआ पानी को, मॉइस्चर को या नमी को रिटेन रखता है अपने अंदर। तो जहाँ खेतों में पानी की कमी होती है या बारिश हो गई, तो उस पानी को रिटेन करने का या उस पानी को जोड़े रखने का काम भी केंचुआ करता है, जो कि बहुत ही लाभदायक है किसान भाइयों के लिए। इसके अलावा कि वो जो पोषक तत्व है उसकी खाद में होते हैं, वो तो है ही।
1: जी डॉक्टर साहब, इसमें फिर कोई ऐसा तो नहीं भी कुछ अंतराल के बाद में उसमें पानी छिड़काव करना हो, या कि एक दो दिन पानी छिड़क के और उसके बाद ढक के रख दिया,
0: अब
1: उससे दो
0: ये
1: तीन दिन
0: चीज़ें
1: काम चल
0: मौसम पे
1: जाए?
0: डिपेंड करती हैं। अगर गर्मी का मौसम हो तो आपको अल्टरनेट डे पे उस पर पानी का छिड़काव करें, बोरी पे ही कर दो, अपने आप बोरी से नीचे चला जाता है।
1: जी
0: और अगर बारिश सर्दी का मौसम है या जहाँ पानी कम सूखता है,
1: जी
0: तो आप 3-4 दिन की लेबर्टी भी ले सकते हो, कई बार हफ्ता भी आपको ज़रूरत नहीं है पानी देने की। तो
1: जी
0: वो एक थोड़ा सा एक बार बोरी को हटा के देख लो कि कितना मॉइस्चर है, उससे आपको आइडिया लग जाता है कि भाई सूख तो नहीं गया,
1: जी
0: बट है ना। तो उस हिसाब से आप अपना डिसीजन लो कि भी
1: जी
0: कितना पानी डालना है
1: डॉक्टर साहब,
0: उसमें।
1: इसमें फिर बाद में भी कुछ गोबर है या कुछ वो उस तरह का चीज़ है उसके उपयोग के लिए डाल सके हैं?
0: हाँ, जैसे जैसे आप नीचे से केचुए खाद लेते जाएंगे,
1: जी
0: उसके बाद ऊपर आप मटेरियल को रिप्लेस करते जाओ, जो जो आपका बेसिक मटेरियल है,
1: जी
0: जिसमें पत्ते भी हो सकते हैं, गोबर भी हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनिक वेस्ट हो सकता है, छिलके भी हो सकते हैं किचन वेस्ट में, तो वो उसको रिप्लेस करते जाओ, नीचे से खाद लेते जाओ आप।
1: जी डॉक्टर साहब, कितने एक दिन में खाद
0: ये
1: तैयार हो जाएगी?
0: नॉर्मली जो आइसिनिया फर्टिडा है वो 50 दिन, 40-50 दिन में अंदर आपकी खाद, पहली जो फसल है वो तैयार, पहली जो
1: डेढ़
0: आप
1: एक महीने में तैयार
0: डेढ़
1: हो
0: एक
1: जाएगी?
0: महीने में तैयार हो जाती है। तो
1: अच्छा
0: और वो आप उसको फिर छान छून के, या जैसे भी आप, अगर कुछ छानना तो इसलिए होता है कि बड़ा उसमें कोई रोड़ा ना आ जाए,
1: जी
0: है ना। तो आप खेत में भी प्रयोग कर सकते हैं और ऑर्नामेंटल प्लांट्स में भी, एवं शहरों में तो आजकल ये किलो के साथ, 10 रुपये किलो के साथ, तो पॉलिथीन पैक करके लोग जैसे
1: जी
0: सब्जी बेचते हैं वैसे
1: जी
0: बेचते रहते हैं, और माँ बहन इसको खरीद भी लेती है।
1: डॉक्टर साहब, अब इसकी जो इसमें जो गुण है वो थोड़ा सा बताओ कि इसमें कौन कौन सी नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, कौन कौन सी चीज़ इसमें
0: हाँ,
1: वो है?
0: इसमें जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, NPK, जो तीन हमारे फसलों के बेसिक तत्व हैं,
1: जी
0: माइक्रो मैक्रो न्यूट्रेंट्स हैं, बड़े
1: बड़े
0: न्यूट्रेंट्स हैं, बड़े न्यूट्रेंट्स हैं, उनकी जो उपलब्धता है वो ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा CN रेशियो जो है वो कम हो जाती है,
1: कार्बन नाइट्रोजन की
0: CN
1: का
0: रेशियो कम हो
1: अनुपात है
0: जाता है। हाँ,
1: जो?
0: वो कम हो जाता है
1: जी
0: क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बन के उड़ जाता है, तो C नेचुरली कम हो गया, और तो नाइट्रोजन बढ़ गई, तो नेचुरली की CN रेशियो जो है, या उसका रेशियो का क्या कहते हैं उसको, अनुपात,
1: अनुपात
0: वो
1: जी
0: कम हो जाता है, तो वो
1: जी
0: अच्छा रहता है फसल के लिए। फिर ये फसल पे फसल से फसल डिपेंड करता है भाई, आप ये केचुए की खाद किस फसल के लिए प्रयोग कर रहे हैं। आजकल तो मछली पालन में भी इसका हम प्रयोग करते हैं, केचुए की खाद का।
1: जी डॉक्टर साहब, इसमें फिर जो उसके अंडे हैं या बच्चे खाद में रह जाए हैं तो उन्हें किस तरह से अलग करें?
0: वो नॉर्मली हम उसको छान लेते हैं,
1: अच्छा
0: तो जो बड़े केंचुए हैं वो निकाल लेते हैं उसमें,
1: जी
0: इवन छोटा केंचुआ भी है अगर बच्चा भी है तो वो भी उसमें अलग हो जाता है।
1: जी
0: और नीचे जो डेयरी होती है उसमें नीचे होते हैं, उसमें के उसमें तो सिर्फ फिकल मटेरियल ही होता है
1: जी
0: नॉर्मली, क्योंकि
1: जी
0: उसमें अब खाने को तो कुछ है नहीं, तो केंचुए क्यों आएंगे उसमें,
1: जी
0: वो तो उनका वेस्ट मटेरियल है या फिकल मटेरियल है।
1: जी
0: तो उसमें नॉर्मली केंचुए कम होते हैं, फिर भी कोई ओकेजनली हो तो उसको आप मैकेनिकल तरीके से जब छाननी करते हैं तो वो अलग कर दो।
1: जी डॉक्टर साहब, खेत में अगर डालना है तो उससे पहले उसने कुछ सुखाने सुखाने की भी जरूरत पड़ेगी, थोड़ी बहुत नमी तो उसमें बच जाए हालांकि?
0: नहीं इतना, जब वो जब खाद तैयार हो जाती है तो वो मैंने बताया जैसे पहले कि वो चाय पत्ती के जैसी सूखी चाय पत्ती हो जाती है,
1: जी जी
0: पोरस भुरभुरी तौर पे,
1: जी
0: तो वो आप डायरेक्ट उसमें ऐसा सुखाने का ज़्यादा पानी होता नहीं है, बट
1: जी
0: नॉर्मल खाद की तरह खाद है वो, आप जो भी एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेज हैं जिस क्रॉप के लिए है उस
1: जी
0: हिसाब से उसका प्रयोग कर सकते हैं।
1: जी एक डॉक्टर साहब, वर्मी वास का भी एक वो सुना है?
0: हाँ, वर्मी वाश भी कई तरीके से इसका प्रयोग होता है।
1: जी
0: इसको हम जब इसके वर्मी वाश हम जब वर्मी कंपोस्ट बना के एक सिस्टम बना लेते हैं कि
1: जी
0: उसमें पानी निकलता है, तो पानी एंड में वो जो चारों लेयरों से निकल के जाता है नीचे, तो
1: जी
0: उसमें तत्व ज़्यादा बढ़ जाते हैं, वो भी हम उसका छिड़काव भी कर सकते हैं पत्तों पे भी। और उसके अलावा हम उसको ज़मीन में भी एक पर्टिकुलर अनुपात में डाल देते हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण जो वो है कि भी ये जो आजकल लेटेस्ट चला है कि भी ये सरफेस टेंशन को बढ़ा देता है, जैसे आपने पत्तों पे छिड़काव किया
1: जी
0: तो

0: उस पे जो अगर कोई आपने दवाई छिड़की है तो उसका असर मल्टीपल हो जाता है।
1: जी
0: अब इसके अलावा कि ये तो असर करता ही करता है, जैसे आप कोई इस तरह की इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड पत्तों पे अगर स्प्रे कर रहे हैं तो
1: जी
0: उसके असर को भी ये सिनर्जिस्टिक उसके साथ मिलके
1: बढ़ा
0: बढ़ाता
1: रहे
0: है, बढ़ाता है।
1: जी डॉक्टर साहब, इसमें जब केंचुओं की संख्या बढ़ जाती है तो उसको भी बिक्री कर सकते हैं?
0: हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है कि भाई अगर, और ये नॉर्मली अपने आप ही किसान कर लेते हैं, किसान से दूसरे किसान, दूसरे किसान से तीसरे किसान,
1: जी
0: कि भी जैसे उनके पास बहुत सारी प्रोलिफिक ब्रीडर है, बहुत सारी इसकी ब्रीडिंग होती है, जैसे मैंने पहले बताया कि भी एक में मेल फीमेल होता है
1: जी
0: तो बहुत सारी इनकी जनसंख्या बढ़ जाती है, तो
1: जी
0: ये एक ऐसा एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसकी जनसंख्या बढ़ने से किसान को खुशी मिलती है,
1: अच्छा, मतलब
0: या
1: इनकी संख्या बढ़
0: संख्या
1: जाती है।
0: बढ़ने से
1: जी जी
0: किसान खुशहाल होता है।
1: जी
0: तो वो नॉर्मली तो आसपास के किसान अपने हिसाब से रेट करके और
1: जी
0: उसका ले जाते हैं
1: जी
0: और कोई ऐसी इसमें समस्या आती नहीं है
1: जी
0: बिक्री में कोई, बहुत और बहुत बड़ी लागत तो है ही नहीं,
1: जी
0: 1,000 रुपये का 1,000 केंचुआ मिल जाता है, 1 रुपये का एक।
1: जी अब डॉक्टर साहब, ये देखा गया कि बहुत से भाई गोबर गैस प्लांट की जो सलरी निकलती है उसको भी इस्तेमाल कर
0: हाँ, वो
1: लेते हैं।
0: बहुत अच्छी तरह से, अब देखो ना आम के, आम गुठलियों के दाम, अगर उसमें से आपने गैस निकाल के और अपना कुकिंग का या जो भी ईंधन का काम है वो कर लिया,
1: जी
0: और नॉर्मली जो स्लरी बच जाती है वो वर्मी कंपोस्ट में ऑर्गेनिक वेस्ट है,
1: जी
0: उसको केंचुए अच्छी तरह खाते हैं और वो उसका जो वर्मी कंपोस्ट बनता है वो
1: जी
0: हम एज सच यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब कोई भी प्रकृति का तत्व बेकार नहीं गया
1: जी
0: और जाता भी नहीं है अगर आप उसको यूटिलाइज करना सीख जाए तो।
1: जी तो डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने बताया है कि वर्मी कंपोस्ट बहुत प्रचलन में हो रही है, और जितने भी हमारे ऑर्गेनिक पदार्थ हैं, गोबर हो गया या खेत का बचा हुआ कोई भूसा है, कोई और पौधे का कोई हिस्सा है, वो सब चीज़ें इस्तेमाल करके और एक खाद के रूप में इसने तब्दील कर सके हैं, जो कि मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ाने के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा।
0: जी बिल्कुल ठीक
1: तो
0: कहा
1: इस सब
0: आपने,
1: जानकारी के लिए डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद संजय भाई।
2: तो भैया आपने सुनी बातचीत कैंचुआ खाद के बारे में, और ई बाइया का करवाते हैं मनोरंजन, बाइया ने पक्का साज की रागनी सुनाओगे, गायक कलाकार हैं सुबे लाल सांगी।

तो भैया आपने सुनी रागनी, गायक कलाकार थे विश्वलाल सांगी। और बाकी भी ये है कि देखो मौसम का हमने जिक्र कराया था, कई तरह का चल रहा है, कितने हल्की फुल्की ओलावृष्टि भी हुई है, अंधोड़ भी आया है और कितने हल्की फुल्की बारिश भी आई है। बारिश का तो भाई जो हमारी कपास की फसल है उसमें मोटा फायदा रहेगा, जो भाई धान के प्योद लगाने लग रहे हैं जिन भाइयों ने लगा दी उसमें भी इस बारिश का पड़ो लगेगा, बहुत फायदा रहेगा। और भाई कितने कितने जरा अच्छी बारिश हुई हुड भाई अपने बाजरे की भी आगे बिजाई कर सके हैं, ज्वार भी भाई बो सके हैं, ग्वार भी आगे बोंगे। और खेत की भाई जो तैयारी है, अपने खेत चारों कोने एक सार करना है, कंप्यूटर गोड़ी जो मारनी है, इस तरह के जो काम है हम भाई बिजाई से पहले अपना सारे तैयार कर लें। बाकी देखो भाई मौसम के हिसाब से जो हमारे काम है खेती बाड़ी के वो हमने करते रहना है। तो भाई इसी के साथ आज का कृषिगत कार्यक्रम समाप्त, थोड़ी देर बाद भाई सुनेंगे कार्यक्रम ग्रामीण संसार। भाई आकाशवाणी का रोहतक केंद्र ई भाई सुनेंगे कार्यक्रम ग्रामीण संसार। और ग्रामीण संसार कार्यक्रम भाई वो बात करा कि भाई मौसम जो फिलहाल चल रहा है भाई कितने हल्की फुल्की बारिश है, कितने अंधोड़ का मौसम हो रहा है, इस सब के चलते जो भी हमारे खेती बाड़ी के काम है वो तो भाई हम कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ में जो हमारा स्वास्थ्य की हम बात करा, भाई पहले की हम बात करा तो पहले पानी के तोड़े हमारे खेतों में होया करते, पैदल जाने होते, बहुत सारी जो हाथों की मेहनत है वो हमारे बुजुर्ग कराया करते, एजे की जो समस्या वाह हो जाया करते। और आज भी जो बुजुर्गों के पास बैठा तो बताऊं भाई जो पहले की अवस्था थी खेतों में, भाई पूरे साल जो बाजरे की रोटी है वो खाया करते, गेहूं के मांडे बोलया करते, भाई कोई अतिथि को मेहमान बटे उचटे हुआ गया तो बोला भाई जो गेहूँ के मांडे हैं बनेंगे, और बड़े खुश होया करते घर वाले। लेकिन आज हम देखा कि सारी चीज़ गेहूँ की हम बात करा, सब्जी फसलों की हम बात करा, हर एक चीज़ की जो है आवक बढ़ गई, लेकिन जो हमारा स्वास्थ्य है वो धीरे धीरे भाई कितने न कितने ख़राब होता जा रहा है। पेट संबंधी जो बीमारी हैं, दिल की जो रोग हैं, हार्ट संबंधी बीमारी हैं, पहले की हम बात करा किसी तरह का कोई बीपी मापन का यंत्र है या फिर भाई कोई शुगर मापन का यंत्र किसी डॉक्टर के पास नहीं था, कारण के था कि इस तरह की जो बीमारी है वो नहीं थी। इब हम देखा दिन भर आँता की जो समस्या है, आंतड़िया की जो समस्या है, आंतड़िया में कितने पेंचर हो गया, कितने फटगी बड़ी आँत छोटी आँत, ये जो जानलेवा बीमारी है वो बढ़ने लग रही हैं। और उसके सब के कारण है कि जो हमने अपना वर्तमान में भाई खान पान रहन सहन का जो परिवेश बनवा लिया वो कितने न कितने भी हमने सेध गया, जो फास्ट फूड है और जो अपना भाई तले हुए चीज़ें हैं, जो अपना इसके अलावा शीतल पेय पदार्थ, गर्मियों के मौसम की हम बात करा पहले क्या हुआ करता, को बटे उचटे हुआ गया भाई जा नींबू लिया सिकंजी बनावांगे, इब हम देखा भाई सीधा अपना ठंडा लिया है या फिर एकदम से भाई खेत के आरता आए कितने भी पसीना मत आए सीधा जो एक पानी है फ्रिज का वो हमने सीधा पी लिया, या फिर हम बात करा कि खान पान में हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें रड़ा दी। पहले की बात करा मैं जो दूध और घी का अगर जिक्र आओ तो बुजुर्ग आज भी बताऊं पहले अभी ठोड़ बैठे हमें एक किलो घी पी जाया करते, आज डॉक्टर भी मना कर रहे हैं कि भाई आप घी मत खाओ, दूध मत पियो ज़्यादा, भाई इससे जो है आपकी स्वास्थ्य हार्ट संबंधी जो दिल की बीमारी है वो बढ़ेंगी, क्योंकि भाई जो भी हम दूध पी हुए हैं पशुओं तक हमने मिले हैं और जो भी पशु अपने खेत में खाओ हैं वो ही भाई दूध में रड़ के आओ है, तो जरूरती भी है उसके भी अपना पशुओं ने संतुलित चारा दाना दें। और कोई भी इसी समस्या हमने खुद के बारे में दिखे नज़दीकी जो भी अपना भाई डॉक्टर है अपना स्वास्थ्य की जांच कराते रहें। और भाई ई भाई अन सुनवा दें रागनी, गायक कलाकार हैं सतबीर सिंह।

ये बहु बेटी का राज होगा, शराब खोर के जूते लग गए, मेहनत के सिर ताज होगा, रोटी कपड़े और दवा बिन कोई ना मोहताज होगा, रोटी कपड़े और दवा बिन।

तो भैया आपने सुनी रागनी, गायक कलाकार थे सतवीर सिंह और वैसे के साथ आज का ग्रामीण संसार कार्यक्रम समाप्त करने की अनिल भाई दो इजाजत सारे बण भैया ने राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्रामीण संसार, आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। श्रोताओं, एक सूचना आपको दे देते हैं। ये सूचना है थाना पुरानी सब्जी मंडी रोहतक से प्राप्त। प्राप्त सूचना के अनुसार गीता नाम की महिला अपने दो लड़कों और एक लड़की के साथ लापता है। गीता का हुलिया इस तरह है, रंग गोरा, लंबा चेहरा, हष्टपुष्ट शरीर। इनके बाएं हाथ पर महादेव लिखा है और कलाई पर AGR लिखा है। इनका कद करीब 5 फुट है और उम्र 28 साल है। इनकी बेटी प्रतिमा का हुलिया है, रंग गोरा, गोल चेहरा, मजबूत शरीर, कद 4 फुट, हल्का पीला टॉप व नीले रंग की जीन्स पहनी है इन्होंने और उम्र 10 साल है। इनके बेटे आर्यन का हुलिया है, रंग सांवला, लंबा चेहरा, हष्टपुष्ट शरीर, कद 3 फुट 9 इंच, उम्र करीब 8 साल। इनके बेटे कान्हा का हुलिया है, रंग सांवला, लंबा चेहरा, हष्टपुष्ट शरीर, कद 3 फीट, उम्र करीब 6 साल। इनके बारे में अगर कोई भी सूचना मिले तो संपर्क करें प्रबंधक अफसर पुरानी सब्जी मंडी रोहतक। तो मोबाइल नंबर है 7082999116। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी।

का रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: ये आकाशवाणी है, विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत आज सुनिए सूचना और प्रसारण, रेलवे तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं पत्रकार शिशिर सिन्हा।
1: नमस्कार। 26 मई 2014 नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों और आकांक्षाओं के साथ सत्ता संभाली। तब से लेकर 12 वर्ष बीत चुके हैं और इन 12 वर्षों में देश की जनता ने दो बार और उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। इस दौरान हमने कई परिस्थितियां बहुत ही कठिन देखी। कोविड का दौर था, फिर हमारा रूस और यूक्रेन की लड़ाई का भी असर देखने को मिला और उसके बाद अब पश्चिम एशिया का संकट। लेकिन इन सब के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था 7% या उससे ज्यादा की दर से विकास करती रही। कैसे संभव हुआ? क्या कुछ रही कहानी? आगे क्या कुछ हो सकता है? इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रेलवे, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: नमस्कार
1: सर। 12 वर्षों में आर्थिक जो परिस्थितियां रही, कई चुनौतियां भी थी, कई कठिनाइयां भी थी, लेकिन 7% या उससे ज्यादा के विकास दर को हम हासिल कर पाए। किस तरह से नीतियों ने इसमें मदद की?
2: इन 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ही एक मैच्योर तरीके से हैंडल किया है। हम अगर आज से 12 वर्ष पहले 2014 में जाएं, 2014 में हमारा पूरा फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर ऐसी अजब परिस्थिति में था कि सारी दुनिया में चिंता थी कि भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था फ्रेजाइल 5 में गिनी जाने लगी थी। बैंक्स के NPS बहुत हाई थे, बैंकों की बैलेंस शीट्स एकदम प्रैक्टिकली फिनिश होने के कगार पे थी, कौन सा बैंक कब इम्प्लोड हो जाएगा, ऐसी परिस्थितियां थी। आते ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले बैंक्स को बहुत सिस्टमेटिक वे में उनके NPS कम करने का प्रोसेस चालू किया। कम से कम करीब 2,50,000 करोड़ के आसपास रिकैपिटलाइज किया बैंक्स की बैलेंस शीट्स को। बैंक्स को प्रॉपर एक हेल्दी कंडीशन में लेके आए, जो आज आप उसका रिजल्ट देख रहे हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स का प्रॉफिट हाईएस्ट लेवल पे है, NPS लोएस्ट लेवल पे है। उसके बाद में एक इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस चालू किया, फिर आया कोविड। कोविड का शॉक था, बहुत बड़ा शॉक था, सारी दुनिया ने झेला, भारत ने उस शॉक के दौरान भी प्रधानमंत्री जी की नीतियों के कारण एक इन्वेस्टमेंट ड्रिवन मॉडल स्टार्ट किया। उस इन्वेस्टमेंट ड्रिवन मॉडल के कारण जो पहले करीब करीब $30 बिलियन के आसपास इन्वेस्टमेंट होता था, आज $130 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है देश में। इन्वेस्टमेंट जाता है फिजिकल, डिजिटल और सोशल इंफ्रा में, और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा दिखाई देता है। आज हम देखें, चाहे कोई भी सेक्टर हम लें, एयरपोर्ट्स, नंबर ऑफ द एयरपोर्ट्स डबल हो गए, हाईवेज 58,000 किलोमीटर्स बने, नई रेलवे ट्रैक्स 36,000 किलोमीटर्स बनी, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन 99% कंप्लीट हुआ। कंपेयर करें UK से तो मेरे ख्याल से less than 50% है। कई दूसरे देशों के कंपैरिजन में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई, उसका देश में एक प्रभाव पड़ा, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, लोगों की सुविधाएं बढ़ी, इंडस्ट्रीज को और ज्यादा ग्रो करने में मदद मिली। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने बहुत एक फोकस दिया इंक्लूसिव ग्रोथ। भारतीय जनता पार्टी का मूल विचारों में से एक विचार है अंत्योदय का विचार। इसमें प्रधानमंत्री जी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत से इस पे ध्यान दिया, और जब भारत के प्रधानमंत्री के तौर पे उन्होंने जिम्मेदारी संभाली तो जनधन अकाउंट हो, महिलाओं को सम्मान देने के अधिकार के साथ जो टॉयलेट्स का कंस्ट्रक्शन हो, पक्के घरों का निर्माण हो, हर घर नल से जल पहुंचाने का भागीरथी संकल्प हो, ये ऐसे बड़े बड़े काम हाथ में लिए और उनको डिलीवर सक्सेसफुली किया कि सबसे बड़ा इंक्लूसिव ग्रोथ का पूरे विश्व में उदाहरण है अपने पास। मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया और इनोवेशन पे फोकस किया और बहुत बड़ा सिंप्लीफिकेशन किया। तो इस तरह की वेल थॉट थ्रू स्ट्रेटजी के कारण आज भारत 6-8% के ग्रोथ ब्रैकेट में कंसिस्टेंटली रहेगा।
1: और अब जो हम कहते थे कि फ्रेजाइल 5 में है, अब वो कहीं पीछे रह गया है। क्योंकि आप रेलवे का कार्यभार काफी समय से संभाल रहे हैं और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में करीब 56 परियोजनाओं की मंजूरी दी गई, जिसमें लगभग 2,38,000 करोड़ रुपए का निवेश है। हम कहते हैं कि जब कभी भी किसी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, यानी कि आप 1 रुपया खर्च करते हैं तो 3 या 4 रुपए तक उसका फायदा देखने को मिलता है। रेलवे की परियोजनाओं से जो बदलाव हुआ है उसे आप किस तरीके से परिभाषित करते हैं?
2: बड़ा फंडामेंटल चेंज आया है। अगर आप 2014 से पहले देखें तो एक साल में 700-800 हजार किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन होता था, आज 6,000-7,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन साल का करके करीब करीब पूरे देश के रेलवे नेटवर्क को 99.4% इलेक्ट्रिफाई कर चुके हैं। 70,000 किलोमीटर के आसपास ट्रैक्स को अपग्रेड किया, जो पुरानी पटरियां थी हालत बहुत खराब थी, स्लीपर्स टूटे हुए रहते थे, उन सबको रिप्लेस करके करीब 70,000 किलोमीटर को रेलवे ट्रैक्स को अपग्रेड किया। 36,000 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बने, 1,300 स्टेशन का पुनर्निर्माण नव निर्माण हो रहा है। 1,300 स्टेशन में से करीब करीब 250 स्टेशन कम्प्लीट हो चुके हैं, इस साल के अंत तक 500 स्टेशन कम्प्लीट हो जाएंगे। 5,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का निर्माण एक वर्ष में करना, मैंने स्विट्जरलैंड का रेलवे नेटवर्क है 5,000 किलोमीटर का, पूरा स्विट्जरलैंड के रेलवे नेटवर्क के बराबर का रेलवे नेटवर्क एक साल में ऐड करना, कई वर्षों पुराने जो प्रोजेक्ट्स पड़े थे जिनको माने प्रधानमंत्री जी का जो प्रगति का मैकेनिज्म है जिसमें हर महीने वो जो प्रोजेक्ट्स रुके हुए होते हैं देश भर में वो उन पे ध्यान देते हैं, उनका रिव्यू करते हैं चीफ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट उन सबके साथ मिलके, तो प्रगति मैकेनिज्म के कारण बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आगे आए। ओवरऑल बहुत बड़ा चेंज आया, कई प्रोजेक्ट जैसे ये चिनाब का ब्रिज अगर आप देखते हैं तो चिनाब के ब्रिज को तो लोगों ने एक तरीके से राइट ऑफ ही कर दिया था कि ये बन ही नहीं सकता, और बारामूला से श्रीनगर तक ही रेलवे लाइन का और जम्मू से कटरा तक ही रेलवे लाइन को करके एक तरीके से अबैंडन सा ही कर दिया था इस प्रोजेक्ट को, प्रधानमंत्री जी ने इसको कम्प्लीट किया।
1: सर हम लोग जब प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो दुनिया भर में एक नीति अपनाई जाती है, उसको हम लोग ट्रिपल पी कहते हैं, पीपल प्लैनेट एंड प्रॉफिट। हमने आपके कैबिनेट ब्रीफिंग में देखा कि जब भी आप किसी परियोजना का ऐलान करते हैं तो आप प्लैनेट और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काफी जोर देते हैं, तो क्या ये समझा जाए कि अब गवर्नमेंट ने भी जो है ट्रिपल पी को पीपल प्लैनेट और प्रोडक्टिविटी के फॉर्मूले में बदल दिया है?
2: ये आपने बहुत अच्छा नाम दिया, जरा वापस बताएं क्या कहा आपने?
1: पीपल प्लैनेट और प्रोडक्टिविटी।
2: प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छा नाम दिया, जनरली पीपीपी मैंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं, आपने इसे अच्छा नाम दिया है। डेफिनेटली यस, देखिए रेलवे सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस 95% लेस है कंपेयर टू द हाईवे सेक्टर, इसलिए बहुत सारे देशों ने अपना इन्वेस्टमेंट बहुत सारा हाईवे से शिफ्ट करके रेलवे की तरफ किया है, चाहे जापान हो, चाहे चाइना हो, चाहे कोरिया हो, चाहे स्विट्जरलैंड हो, चाहे जर्मनी हो, बहुत सारे देशों ने अपना इन्वेस्टमेंट का फोकस जो आपने कहा प्लैनेट फ्रेंडली कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स में किया है, और भारत में भी इसका बेनिफिट भी साफ दिखाई देता है। माने प्रधानमंत्री जी ने आते ही जो रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन का एक बहुत बड़ा संकल्प लिया है उसका रिजल्ट आज दिखाई देता है। आज वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण जो बहुत सारा मिटिगेशन उसका रेलवे के कारण हो पाया, क्योंकि इलेक्ट्रिफाइड है रेलवे पूरी और इलेक्ट्रिसिटी पूरी भारत में हम स्वयं प्रोड्यूस करते ही हैं, आत्मनिर्भर है उसमें पूरी तरह से, तो चाहे गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो या पीपल ट्रांसपोर्टेशन हो, वी आर एबल टू डू इफेक्टिवली विद इलेक्ट्रिफाइड रेलवे।
1: सर चूंकि आपके पास एक मंत्रालय है इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी, और इसमें अगर मैं एक, वैसे तो हर उपलब्धि अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन सेमीकंडक्टर एक ऐसा है, सेमीकंडक्टर मिशन के जरिए जो उपलब्धि हासिल हुई है उससे किस तरह का बदलाव आप, चूंकि कहते हैं कि वो भी एक मल्टीप्लायर इफेक्ट है, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की हम बात करें, चाहे एविएशन इंडस्ट्री की बात करें, हर इंडस्ट्री के लिए उसमें सपोर्ट जरूरी होता है, वहां पर प्रगति को आप किस तरीके से मापते हैं?
2: सेमीकंडक्टर फाउंडेशनल इंडस्ट्री है और 1960 से भारत में प्रयास चल रहा था, 1962 से भारत में प्रयास चल रहा था सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लाने का। प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, राजीव गांधी जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सबने प्रयास किए, आखिर सफलता मिली मोदी जी को। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में प्रेजेंटेशंस लेने चालू किए थे उनका बहुत स्पष्ट था कि हमें इकोसिस्टम पूरा बनाना है, और प्रधानमंत्री जी का ये भी बहुत स्पष्ट था कि हमें 20 साल का सोचना है, हमें शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए नहीं सोचना है। तीसरा उन्होंने कहा था कि बहुत ध्यान रखना कि इसमें टैलेंट डेवलपमेंट पे पूरा फोकस रहे, ये तीन चीजें उन्होंने मूल रूप से हमको गाइडेंस दी थी, इसीलिए सेमीकंडक्टर मिशन जब चालू किया इकोसिस्टम पे फोकस दिया, केमिकल्स, गैसेस, इक्विपमेंट, ये सब के सब इसमें इंडस्ट्री के जितने इकोसिस्टम प्लेयर्स है वो ध्यान से आए। सेकेंड, टैलेंट पे बहुत फोकस किया, टैलेंट में 324 यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर मोस्ट मॉडर्न डिजाइन टूल्स में, सेमीकंडक्टर के डिजाइन टूल्स में स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती है, ये इसका उदाहरण है आपके सामने।

0: सिलचर, चेंबूर, इंदौर, ग्वालियर, शिवपुर, जम्मू, जालंधर, रोपड़, धनबाद, राउरकेला, मेघालय, जम्मू, कैलिकट, पूरे देश भर के स्टूडेंट्स की डिजाइन की हुई है चिप्स। ये चिप्स स्टूडेंट के डिजाइन की हुई, स्टूडेंट्स के द्वारा डिजाइन की हुई चिप्स को सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी में मैन्युफैक्चर किया और स्टूडेंट्स ने उनको वापस बोर्ड में टेस्ट करके, सर्किट में टेस्ट करके उसका यूज भी किया। हाल ही में डेवोस में मैंने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के सारे लीडर्स जब बैठे थे, उनको पूछा दुनिया भर में कितनी यूनिवर्सिटीज होगी जहाँ पे कैडेंस, सिनॉप्सिस जैसे टूल्स को यूज, स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि हमने चिप डिजाइन की और मैन्युफैक्चर की, 20 से ज्यादा नहीं गिन पाए।
1: तो अब अगले, अगर मैं 2 वर्ष में कहूँ तो सेमीकंडक्टर में भारत की स्थिति आप कहाँ देखते हैं?
0: बहुत सिग्निफिकेंट जंप आया है विद इन 4 ईयर्स। जो कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड चिप्स हमारी, ये माइक्रोन के प्लांट से प्रोड्यूस की हुई, ये केन्स के प्लांट से, 28 फरवरी और ये 31 मार्च, ये माने प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किए थे ये दोनों प्लांट्स। तो मात्र 4 वर्षों में 12 प्लांट प्रोडक्शन स्टार्ट कर देना, डिजाइन का इकोसिस्टम बनना, टैलेंट का पूरा पाइपलाइन रेडी होना, और अगला जो सेमीकंडक्टर मिशन होगा इसमें हमारा फोकस रहेगा डिजाइन को नंबर 1 प्रायोरिटी देना, मशीन मैन्युफैक्चरर्स को बुलाना, केमिकल और गैस मैन्युफैक्चरर्स को बुलाना, और फैब और ATMP यूनिट्स और आएंगे। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जिस तरह का एफर्ट अभी लगा है और जो सक्सेस अभी तक मिली है, उससे लगता है कि सारी दुनिया भारत को एक ट्रस्टेड पार्टनर की तरह देखती है।
1: सर, एक चीज हमने और भी देखा कि जो PLI इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक के लिए आपने किया, और उसका एक सबसे ज्यादा बड़ा फायदा हमें मोबाइल हेडसेट के मामले में देखने को मिला। एक ऐसा भी दौर था कि जब भारत में हर मोबाइल फोन बड़ी तादाद जो है वो इम्पोर्टेड होता था या मेड इन कहीं और होता था। अब हम मेड इन इंडिया और असेंबल्ड इन इंडिया की बात करें, तो ये जो PLI स्कीम है, ये मोबाइल हैंडसेट और इलेक्ट्रॉनिक के मामले में किस तरीके से योगदान किया, वहां पर हम आगे का सफर कैसे देख रहे हैं?
0: बहुत फायदा हुआ। सबसे पहले तो जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स थे उसकी मैन्युफैक्चरिंग चालू की, फिर कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग चालू हुई, और कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत प्रिसीजन का काम होता है। ये क्लासिक एग्जांपल है, आप इसको देखें अगर
1: जी,
0: तो आपको ये एक फुल स्टील का ब्लॉक दिखेगा, राइट, तो कोई कहीं कट या कुछ नहीं दिखेगा। ये एक्चुअली इतना प्रिसीजन का मैन्युफैक्चरिंग है, ये एक्चुअल में इतने ज्यादा इसमें कट्स लगे हुए थे इसमें, राइट, इतना प्रिसीजन का काम था। जो सिंगल सॉलिड ब्लॉक दिखता था वो सिंगल सॉलिड ब्लॉक नहीं है। तो इस प्रिसीजन का काम जो स्टूडेंट सीख पाते हैं वही मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं आके, इस तरह का काम है। तो अब कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में आफ्टर द सक्सेस ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एंड मॉड्यूल्स, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में 75 फैक्ट्रीज ऑलरेडी अप्रूव हो गई है जिसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, करीब 250 फैक्ट्री होंगी, और कंपोनेंट का एक्सपोर्ट करना भी भारत ने चालू कर दिया है। प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग के मैं कई एक एग्जांपल आपको दूंगा। रेलवे का जो प्रपल्शन होता है, ट्रेन का जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है वो प्रपल्शन है, रेलवे की इलेक्ट्रॉनिक्स। लास्ट ईयर वी स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग रेलवे प्रपल्शन टेक्नोलॉजी टू जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड US। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। प्रधानमंत्री जी का जो मेक इन इंडिया का थ्रस्ट है, जो फोकस है, वो फोकस अब रिजल्ट दिखाने लगा है जब ऐसी कॉम्प्लेक्स चीजें भारत से एक्सपोर्ट होने लगी।
1: तो अगले, अगर मैं PLI के अगले चरण की बात करूं तो उसमें हम क्या कुछ देख सकते हैं, क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं?
0: बहुत फोकस आएगा कंपोनेंट्स को यूज करके भारत में एक्स्ट्रा डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन करना, डिजाइन की कैपेबिलिटीज बढ़ना, और क्वालिटी में जो भारत ने एक पहचान बनाई है उसको एक नए लेवल पे लेके जाना, 6 सिग्मा लेवल पे लेके जाना।
1: सर, अगर मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिस्कशन की बात करूं तो 2 ऐसे बिल हैं जो एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन के तौर पे कहे जा सकते हैं। एक जैसे आपका डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन है और दूसरा जो है रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट। ये दोनों कानून को लेकर के प्रतिक्रिया जैसी भी रही हो, आप इसके काफी मुखर तरीके से, आपने खासतौर पर ऑनलाइन गेमिंग की मैं बात करूं कि उस पर रियल मनी वाले ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के आपने काफी उस पर अपनी बात बहुत ही मजबूती के साथ रखा था, इन दोनों लेजिस्लेशन को आप किस तरीके से देखते हो और इनके जरिए पूरी इंडस्ट्री में किस तरह का बदलाव हुआ है वो अगर बता सकते?
0: ऑनलाइन मनी गेमिंग सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा एक अभिशाप बन के उभरा था। हजारों सुइसाइड्स, परिवार की सारी इनकम एक गेम में नष्ट हो जाना, ऑनलाइन बेटिंग, ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग वॉज अ बिग बिग बिग प्रॉब्लम फॉर दिस सोसाइटी। इसीलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कठोर निर्णय लिया और ऑनलाइन मनी गेमिंग को बैन किया। इसका बहुत बेनिफिट मिला है। अभी हाल ही में टाइटन इंडस्ट्रीज के CEO का इंटरव्यू था कि ऑनलाइन मनी गेमिंग के बैन के कारण बहुत सारा जो लोग पैसा वेस्ट कर देते थे मनी गेमिंग में, वो पैसा आज अपने परिवार के लिए अच्छे सामान खरीदने के लिए लगा रहे हैं, घर में बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, हेल्थ केयर के लिए, घर बनाने के लिए, उस सब में लग रहा है। इसी तरह से कई एग्जांपल्स है। एक इंडस्ट्री है जिसमें 30,000 लोग काम करते हैं, उनके CEO मुझे बता रहे थे कि

0: महीने का पहला हफ्ता करीब करीब ऐसा होता था जिसमें व्यक्ति ने जितनी सैलरी ली वो सारी सैलरी ऑनलाइन मनी गेमिंग में लूज कर देता था, और उसके बाद में एचआर डिपार्टमेंट को फोन करके किसी तरीके से परिवार कैसे चलाए उसकी व्यवस्था में चिंता रहती थी। मतलब उनका कहना था कि उनके जान पहचान के लोगों में महीने में एक सुइसाइड होता था गेमिंग के कारण। वो सारी चीजें फिनिश हो गई। अभी हाल ही में एक जगह से प्रवास से लौटने के टाइम में इंडिगो का कर्मचारी मुझे मिला, उसने कहा कि मोदी जी को धन्यवाद देना कि ऑनलाइन मनी गेमिंग आपने बंद कर दी, कि मुझे 35,000 रुपये मिलती थी सैलरी, पूरे के पूरे 35,000 रुपये मैं गेमिंग में गंवा देता था, और अब मेरा परिवार, मेरा छोटा सा बच्चा है, उसने कहा मेरा शायद 3 या 4 साल का बच्चा है, अब परिवार हमारा खुश है।
1: लेकिन
0: इस तरह के कई एग्जांपल्स।
1: लेकिन कई बार ये भी बात कही जाती है कि वीपीएन के जरिए और उन सब के जरिए,
0: ये बात ठीक है आपकी,
1: तो आप कैसे उस पे रोक लगा?
0: ये बात ठीक है। देखो जब भी इस तरह के कड़े कठोर कानून आते हैं तो 90% प्रॉब्लम सॉल्व होती है, लेकिन कुछ हद तक लोग गैर कानूनी तरीकों से करने का प्रयास करते हैं, चाहे किसी भी सेक्टर में ले लो, चाहे ड्रग्स का ले लो, चाहे किसी भी तरह के सेक्टर को ले लो। तो इसमें प्रयास हमारा लगातार रहता है कि इस तरह की जो इलीगल साइट्स हैं उनको बैन करने का। अब तक करीब करीब 10,000 के आसपास इलीगल साइट्स को बैन किया जा चुका है।
1: और सर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन को लेकर के किस तरीके की?
0: बहुत ही वेल थॉट थ्रू बिल है ये, इसमें 7 प्रिंसिपल्स के बेसिस पे सिटीजन्स के डिजिटल डेटा को, डिजिटल पर्सनल डेटा को प्रोटेक्शन करने का मेथड है। इंडस्ट्री के साथ बातचीत करके उसको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और दुनिया भर में इस बिल के कारण भारत की एक नई पहचान भी बनी, क्योंकि जो प्रिस्क्रिप्टिव मेथड यूरोप ने लगाया उसके कारण उनका इनोवेशन फिनिश हुआ। भारत के इस बिल में इस तरह से बैलेंस आया इनोवेशन और रेगुलेशन में, जिससे कि इनोवेशन भी फ्लरिश कर सके और रेगुलेशन भी प्रॉपर लेवल पे हो सके।
1: अगर मैं आखिरी में आपसे पूछूं कि हमने शुरुआत करी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से, अगर मैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, तो अगले 3 से 5 सालों में हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या कुछ और बदलाव देखेंगे और डिजिटल इंडिया किस तरीके से आगे बढ़ेगा, अगर उसकी रूपरेखा पेश कर सकें आप तो?
0: टेलीकॉम सेक्टर में बड़े बदलाव आने वाले हैं। टेलीकॉम सेक्टर में जो सबसे बड़ा चेंज आएगा वो चेंज आएगा रेजिडेंट AI। एक टेलीकॉम टावर करीब 2000 पैरामीटर्स लेता है जिसपे वो काम करता है एक साथ। उन पैरामीटर्स को अभी जो एल्गोरिदम्स होती है वो एल्गोरिदम्स बड़ी प्रिस्क्रिप्टिव टाइप की एल्गोरिदम्स होती हैं, किस सिचुएशन में क्या करना है उस पर डिफाइंड होती है। अगर उसमें AI लगता है हर टावर के अंदर तो सिग्निफिकेंट लेस पावर कंजम्पशन हो पाएगा, सिग्निफिकेंटली बेटर कॉल क्वालिटी हो पाएगी, और डिजिटल इंडिया के नेक्स्ट फेज में टेलीकॉम का जो रोल है वो रोल और टेलीकॉम में AI का रोल वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा।
1: लेकिन ये भी कहा जाता है कि AI बहुत सारी नौकरियां ले सकता है, तो जब हम डिजिटल इंडिया के एक्सपेंशन की बात करेंगे, AI के इम्पोर्टेंस की बात करेंगे, हमारे लिए एक बड़ी चुनौती नौकरियां नहीं रहेंगी?
0: जितनी IT सेक्टर की इंडस्ट्रीज हैं उनके साथ हम लगातार एंगेज्ड हैं, किस तरह से नए प्रकार के स्किल्स क्रिएट किए जाए, नए प्रकार की ट्रेनिंग क्रिएट की जाए। अभी हाल ही में NASSCOM के माध्यम से IT इंडस्ट्री ने अपना नया कोर्स का पूरा करिकुलम बना के दिया है, जिसको AICT के माध्यम से लागू करेंगे, जिससे कि टेक्नोलॉजिकल चेंज के कारण जब भी डिसरप्शन आता है, जब भी परिवर्तन आता है, तो उस समय में अगर इंडस्ट्री और एकेडेमिया दोनों आपस में मिल जाए तो उस चेंज को बहुत स्मूथली कर सकते हैं। तो वही प्रयास है IT इंडस्ट्री के साथ मिलकर नए तरह के जो जॉब्स क्रिएट होंगे उन जॉब्स के लिए हमारे युवाओं को तैयार करने का प्रयास है।
1: अश्विनी वैष्णव साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
2: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सूचना और प्रसारण, रेलवे तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे पत्रकार शिशिर सिन्हा। ये आकाशवाणी है, विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अब सुनिए संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं रीमा पराशर।
3: नमस्कार। 26 मई 2014 वो दिन था जब सिर्फ सरकार नहीं बदली थी बल्कि करोड़ों भारतवासियों की जो आकांक्षा थी, जो सपने थे, वो भी ऐसा लगा था पूरे होने की कगार पर अब आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए अब जब 12 साल पूरे हो रहे हैं तो फिर ये तो एक सवाल बनता है ना कि भाई 12 साल में इस देश में ऐसा क्या बदलाव आया कि लोग मोदी मोदी मोदी मोदी कर रहे हैं, ऐसी क्या बात हो।

0: कि नरेंद्र मोदी हर राज्य में विजय पताका फहराते जा रहे हैं, लहराते जा रहे हैं, और भारत जो है वो विश्व स्तर पर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अब अपना एक अलग मुकाम रखकर लाया है। चलिए, इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज बेहद ही खास मेहमान है, और वो खास मेहमान जो कि जब नॉर्थ ईस्ट में बात होती थी ना कि कौन चेहरा है, तो एक चेहरा सबसे पहले सामने आता था, किरण रिजिजू जी का। और वो अब अल्पसंख्यक मामलों के भी मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, इससे पहले कानून मंत्री रह चुके हैं। तो एक तरीके से 2014 से लेकर अब तक का सफर इन्होंने लंबा तय किया है। बहुत बहुत स्वागत है रिजिजू जी आपका।
1: धन्यवाद।
0: और 12 साल की ये जर्नी, आप इस जर्नी को कैसे देखते हो?
1: ये जर्नी भारत का इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट किए गए थे, मंत्रिमंडल का शपथ लेने से पहले उन्होंने हम 44 लोगों को बुला करके पहला संदेश जो दिया था वो मुझे आज भी याद है। मोदी जी ने कहा था कि हम लोग सिर्फ सत्ता में कुर्सी ऑक्यूपाई करने के लिए नहीं आया है, हम देश का दशा दिशा और जनता गरीब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव लेने के लिए हम आए हैं। तो तब से लेकर एक एक नीति आप देखेंगे तो भारत को एक नई मोड़ पर लेकर के 2014 के बाद हमने काम शुरू किया है, और गवर्नेंस शासन करने का प्रक्रिया है उसमें बदलाव किया है। और अब तो एक आम सा बात हो गया है कि भारत सरकार कोई भी कदम उठाते हैं उसका लाभ तुरंत जनता तक मिल जाता है। नहीं तो पुराने दिनों में कांग्रेस के शासन के समय तो बातें बहुत होती थी, कई घोषणाएं भी होती थी, बजट में घोषणाएं, रेलवे बजट में नई प्रोजेक्ट का घोषणाएं, और हर समय चुनाव में तो घोषणा ही घोषणा होते थे, गरीबी हटाओ नारा लगाना, ये एक फैशन से बन गया था उस जमाने में। लेकिन इन 12 सालों में सचमुच में जो काम हुआ है, मैं मानता हूं कि मोदी जी का कार्यकाल है ये सचमुच में भारत को फिर से एक महान देश, और जो पुराने में भारत का एक नाम था उसको फिर से पुनर्जीवित और फिर से पुनर्स्थापित करने में कामयाब हुआ है।
0: आपने, क्योंकि रिजिजू जी गरीबों वाली बात की ना, पहले का वो स्लोगन एक याद आता है कि जब 1 रुपया भेजते थे 10 पैसे पहुंचते थे, आज 1 रुपया भेजते हैं तो कितने पैसे पहुंचते हैं?
1: आज तो जितना भेजता है उतना ही पहुंचते हैं, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री खुद ही सरेंडर हो गए थे। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे और खुद ही सरेंडर करके बोल दिया कि 100 रुपया भेजता है तो 15 रुपया पहुंचते हैं, 1 रुपया में 15 पैसे पहुंचते हैं। आज तो एक बटन दबाया केंद्र सरकार के ओर से कोई भी स्कीम घोषणा करके उसको सिर्फ बटन दबाना है, DBT के माध्यम से लोगों के खाता में पहुंच जाते हैं और सारा स्कीम्स जो है समयबद्ध क्रियान्वित हो जाते हैं। इसलिए जो बदलाव आज देखने को मिला है, ऐसे ही सोचने से आपको पता नहीं चलेगा 12 साल पहले देश का हालत क्या था। जब कांग्रेस UPA सरकार थे तब हम भ्रष्टाचार से ग्रस्त होकर के, पॉलिसी पैरालिसिस होकर के, और गरीबों को सरकार का कोई भी कार्यक्रम तुरंत कुछ भी नहीं मिलते थे। तो इतना बदलाव जो आया है इसको चंद शब्दों में कहना तो मुश्किल है, मगर इतना तो कह सकता हूँ कि जो हमारा सरकार का थीम है सेवा सुशासन और गरीब कल्याण, तो गरीबों का कल्याण तो हुआ ही है, सेवा तो हम कर ही रहे हैं और सुशासन देश को भला हो रहा है, तो हर दृष्टि से हम कामयाब हैं।
0: तो आप कह रहे हो पॉलिसी पैरालिसिस, ये जो नारा और स्लोगन चला था उस वक्त मनमोहन सिंह सरकार के समय में, आज राहुल गांधी कॉम्प्रोमाइज PM का नारा चला रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई आपने ऐसा किया तो अब कॉम्प्रोमाइज PM वो बोल रहे हैं।
1: कांग्रेस के समय में जो हालत था वो हमको बताने का कोई आवश्यकता ही नहीं है, देश के जिस आदमी का आप पूछो कांग्रेस जमाने में क्या हालत था, और कांग्रेस के खुद नेताओं से पूछो, कांग्रेस के नेता खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस के जमाने में तो अमेरिका उसका मास्टर थे, चिदंबरम साहब खुद होम मिनिस्टर थे तो खुद ही बताया कि पाकिस्तान ने आतंकवादी हमला किया और भारत कुछ नहीं कर पाया क्योंकि अमेरिका ने वार्निंग दिया कि कुछ नहीं करना है। फिर चिदंबरम जी ने खुद भाषण दिया था पार्लियामेंट में जब हमारा सत्ता में आए, कहा कि आप डिजिटल इंडिया का बात करते हैं, गांव में गरीब लोगों को डिजिटल से क्या लेना देना है, और जो हमारा पेमेंट होता है UPI के बारे में मजाक उड़ाया था कि गरीब जो सब्जी बेचते हैं सामान बेचते हैं उनका डिजिटल पेमेंट कैसे होगा,
0: वो बैंक के खाते का क्या करेंगे।
1: तो ये सारा चीज जो है वो तो कांग्रेस खुद ही कहते हैं, राजनीतिक दृष्टि पर कुछ भी आप कह लो लेकिन मालिक तो जनता है। तो इसलिए कॉम्प्रोमाइज तो पूरी तरीके से कांग्रेस के जमाने में कांग्रेस पार्टी ने देश को ही कॉम्प्रोमाइज करके रख दिया था। आज तो मोदी जी अपना निर्णय लेते हैं देश हित में, और देश हित में किसी के दबाव में काम नहीं करते। तो राजनीतिक दृष्टि से कोई अगर कह देगा तो उसके ऊपर भारी पड़ेगा। स्पेशली कांग्रेस पार्टी तो कुछ कह नहीं सकते हैं, उन्होंने लगभग 60 वर्ष इस देश को शासन किया और देश को बहुत गरीब राष्ट्र बना दिया था। सबको मालूम है हमारा इकोनॉमी, हमारा पर कैपिटा इनकम कांग्रेस के जमाने में कितने नीचे थे। अब हम इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है, मैं तो सपना देखता था उस जमाने में कि चाइना 8% 10% से ग्रोथ करते हैं, हम कब चाइना की तरह ग्रोथ करेंगे। और मोदी जी ने हमको चाइना से भी ज्यादा स्पीड में अपना इकोनॉमी का ग्रोथ पाथ को आगे लेके खड़ा कर दिया। तो ये सब देखिए, इसमें तो कोई भी भारतीय फख्र होगा कि मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हमको मिले हैं जो भारत को एक विकसित भारत की ओर ले जा रहे हैं।
0: आपने क्योंकि चाइना की बात कही ना, तो नॉर्थ ईस्ट जहाँ से आप आते हैं, वो समय और वो दौर भी हम लोग देखते थे कि जब नॉर्थ ईस्ट के लोगों को अपनी पहचान का संकट था, पहचान बताने में भी उनको घबराहट होती थी, दिल्ली तक आने में तो उनको बहुत समय लग जाता था, वो बदलाव भी देखा है क्या हमने?
1: बदलाव तो क्या कहेंगे, मैं ये कहूंगा कि ट्रांसफॉर्मेशन, पूरा परिवर्तन हो गया है। बदलाव सिर्फ इंक्रीमेंटल बदलाव नहीं है ना, ट्रांसफॉर्मेटिव बदलाव आया है, क्रांतिकारी बदलाव आया है। क्योंकि जो दूर दराज के इलाके हैं वो तो दिल्ली से बहुत दूर महसूस करते थे। जैसे मैं अरुणाचल प्रदेश से आता हूँ, अरुणाचल के लोग दिल्ली जाने के लिए भी सोचना पड़ता था और दिल्ली वाले भी नहीं आते थे, अगर आते तो भी मेहमान की तरह आते हैं। आजकल तो चाहे लद्दाख हो, चाहे मिजोरम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, सब जगह ट्रेन से कनेक्ट हो गए हैं, एयरपोर्ट से सबको कनेक्ट किया गया है और टनल बन रहे हैं, नए नए परियोजनाएं, हाईवे कितना बन गया है, जो 1 इंच हाईवे नहीं बने थे 12 साल पहले, आज वहाँ चकाचक हाईवे बन गए हैं, लोग आराम से गाड़ी लेकर के आना जाना हो रहा है। गांव गांव मोबाइल टेलीफोन पहुंच गए हैं, वो भी इतना सस्ता है डेटा कि आप आराम से एक बार आपने अपना डेटा लोड कर लिया फिर आराम से बात करो, आप इंटरनेट में काम करो। उस जमाने में तो फोन करने के लिए भी कितना चिंता करता था कि उसका जो बिल आते थे, तो आजकल तो डेटा भी दुनिया में सबसे ज्यादा सस्ता भारत में है मोबाइल।
0: लेकिन इसका फायदा या नुकसान, हर गांव में बच्चा कंटेंट क्रिएटर बना हुआ है,
1: वो तो विषय अलग है, उसको एक व्यवहारिक तरीके से क्या करना चाहिए वो विषय अलग है, लेकिन सुविधा सबको मिला है ये बड़ी बात है।
0: जेन जी के बारे में क्या सोच रहे हो आप, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर हम बात कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर और जेन जी खतरा लग रहा है क्या?
1: देखो जेन जी का तो ये शब्द पश्चिमी देशों से उन्होंने क्रिएट किया है, हम तो अपना पारंपरिक जो मानक है हम उसी से चलते हैं। फिर भी एक टाइटल दिया गया है नए युवाओं को, जो एक पर्टिकुलर वर्ग को जेन जी जो कहते हैं, वो आज 18 साल 20 साल 25 साल के लगभग उसमें ज्यादातर लोग हैं,
0: क्योंकि सबकी निगाह उन्हीं पर लगी। राहुल गांधी जेन जी से मिल रहे हैं, अखिलेश यादव जेन जी से मिल रहे हैं, सब जेन जी से।
1: राहुल गांधी जी हो या अखिलेश यादव जी हो, वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। लोकतंत्र में कुछ लोग तो विरोध रहेंगे ही, एक पक्ष होते हैं एक विपक्ष होते हैं, लेकिन आप दिल से अगर नहीं जुड़ेंगे तो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर आपको कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा में, लगभग 50% वर्ष एक साल में वो विदेश में रहते हैं, वहाँ वो छुट्टियां मनाते हैं, रिजोर्ट में छुप के कहीं कहीं जाते हैं, कभी कभी बताते भी नहीं है, और फिर जब एक बार आएंगे देश में और फिर एक स्टेटमेंट देंगे, मोदी जी को गाली देते हैं, फिर विदेश गायब हो जाते हैं, फिर वापस आएंगे मोदी जी को फिर दूसरा गाली देंगे, फिर विदेश चले जाते हैं। तो ये जो पार्ट टाइम वाला राजनीति है, उससे आप लोगों का दिल नहीं जीत सकते हैं और लोगों के अंदर आप नहीं घुस सकते हैं। हमारा तो नेता और हमारा पार्टी 24 घंटे हम तो देश के लिए और देश के जनता के बीच में हम रहते हैं।
0: ये विदेश वाला जो है, विदेश जाने में क्या बुराई है?
1: वो तो अच्छा है, अगर वो विदेश जाते रहे तो कांग्रेस का नैया जो है डूबते रहेंगे। राजनीतिक तौर पर हमको कुछ नहीं कहना है, अगर राहुल गांधी को राजनीति में कोई रुचि नहीं है और विदेश में ही उसका दिल है और अपने विदेशी दोस्तों के साथ ही अगर वहाँ दिल बहलाने के लिए विदेश में रहता है, हमारा क्या आपत्ति है? हम तो इसलिए कह रहे हैं कि वो कभी कभी वापस आते हैं भारत में, अपने देश में आ करके फिर गाली देते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, चुनाव के बीच में भी वो विदेश चले जाते हैं, तो नुकसान तो कांग्रेस का है, हमारा क्या नुकसान है?
0: अब वो कांग्रेस पार्टी कहती है भाई सरकार आपकी, आप पता करो विदेश में वो क्या करते हैं क्या नहीं करते।
1: देखो किसी का जिंदगी में कौन क्या खाता है पीता है, कहाँ रहते हैं, किसके साथ में वो घूम रहे हैं, इतना हमारा रुचि नहीं है। हमारा सिर्फ इतना तक सीमित ध्यान जाता है कि वो देश के विरोधी ताकतों के साथ में मिलना जुलना होते रहते हैं विदेश में, इससे हम आपत्ति है, हम उसको आपत्ति करते हैं।
0: आपको लगता है कि ये जो विदेश विदेश वाला राहुल गांधी का है, उसके बाद वो आते हैं पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में फिर वो एक एजेंडा बोलते हैं, कहीं ना कहीं वही एजेंडा वो लेकर के आते हैं क्या?
1: जब पार्लियामेंट में बोलते हैं तो झलकते ही है, क्योंकि देश को कोसते हैं, देश के प्रधानमंत्री को कोसते हैं, तो उससे पता चलता है कि वो देश के

0: विरुद्ध जो लोग काम करते हैं उनसे काफी इन्फ्लुएंस हुए हैं। उदाहरण के तौर पर जो राहुल गांधी जी कहते हैं पार्लियामेंट में वो सेम चीज पाकिस्तान कहते हैं, और जो राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल और इन जैसे लोग जो भी नैरेटिव चलाते हैं उसके तालियां पाकिस्तान में बजता है। तो ये तो कहीं ना कहीं एक तरीके से तो जुड़े हुए हैं। अब मैं इसको किस तरीके से समझाऊं देशवासियों को कि जो विपक्ष है वो भी तो देश के लिए सोचना चाहिए ना। विपक्ष का काम ये नहीं है कि देश के खिलाफ काम करे, वो सरकार को गाली दे सकते हैं, सरकार के खिलाफ उनका बोलने का अधिकार है, और लोकतंत्र में सरकार के खिलाफ मजबूती से अगर विपक्ष खड़ा रह करके निगरानी रखेंगे कोई करप्शन हुआ है क्या, कहीं कोई नीति में भूल चूक हुआ है क्या, अगर उसमें विपक्ष हमला करते हैं तो ये तो स्वागत है। लेकिन कोविड का समय, ये इमरजेंसी समय है, तब भी प्रधानमंत्री को गाली देंगे, देश के खिलाफ काम करेंगे। और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, देश गर्व है हमारे सेनाओं के, जो देश के प्रति उन्होंने जो बल दिखाया है उसको भी विरोध करते हैं, सवाल उठाते हैं। और अभी ईरान अमेरिका इसराइल का लड़ाई के चलते तेल गैस आने में कष्ट हो रहे हैं। ये तो एक तरीके से एक आपातकालीन टाइप का सिचुएशन हरमूज में पैदा हो गया है मिडिल ईस्ट में, तो उससे हमको दिक्कत हो रहे है। तो ऐसा में तो देश के साथ खड़ा होना चाहिए, ऐसा में भी देश का खिलाफ बोलते रहते हैं और मोदी जी का खिलाफ बोलते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आम तौर पर विरोध जो है सरकार के खिलाफ आप जितना कर सकता है कर सकते हैं, उसमें लोकतंत्र में कोई रुकावट नहीं है। लेकिन जब इमरजेंसी सिचुएशन होता है, जब एक विशेष परिस्थिति होता है, ऐसे समय में सबको एक साथ खड़ा होना होता है। जैसे जब 1962 में लड़ाई हुआ चीन के साथ, तो पूरा देश एकजुट खड़ा हुआ है। कम्युनिस्ट पार्टी में टूट हुआ एक ग्रुप जो है चीन का समर्थन में आया, वो कम्युनिस्ट भाग हो गया। 1965 हो, 71 हो, या कारगिल के समय में भी हो, हर समय इस तरीके के जब विशेष परिस्थिति आते हैं, जब देश किसी से लड़ रहे हैं, दुश्मनों के साथ में देश मुकाबला कर रहे हैं, ऐसा समय में पूरा देश एकजुट खड़ा रहना चाहिए। ये तो सब मानते हैं, लेकिन पहली बार मैंने देखा है ऐसा विपक्ष आज का दिन में पैदा हो गया है कि देश किसी विपत्ति से जूझने के लिए, कोई आपातकाल स्थिति को नियंत्रण करने के लिए जब काम कर रहे हैं, ऐसे समय में सरकार के खिलाफ देश के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। इससे मैं बहुत दुखी हूँ।
1: संसद में आपको लगता है ये जो बर्ताव है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है इतने समय में?
0: देखिए, राहुल गांधी जी को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है, मुझे लगता है। मैं इतने सालों से उसको देख रहा हूँ। पहले तो मैंने सोचा था कि वो हल्के फुल्के से इधर उधर घूमते रहते हैं, अनाप शनाप बात करते रहते हैं। लेकिन जब वो नेता प्रतिपक्ष बने तो मैंने सोचा कि वो नियंत्रित होंगे, लेकिन और बिगड़ गया। नेता प्रतिपक्ष होने के बाद तो और भी उसका भाषा पूरा बिगड़ गया है। अब तो पार्लियामेंट में जब बोलते हैं तो नियम के बाहर बोलते हैं और गाला गाली पे उतर जाते हैं, दिन भर नारा लगाते रहते हैं अपना एमपीओ को, जो पार्लियामेंट हाउस के बाहर गेट में खड़ा करके वही दिन भर वहाँ तमाशा कराते रहते हैं। तो एमपी इसके लिए नहीं आया, एक नॉर्मल सी कर दिया। अब कांग्रेस के एमपी लोग भी ये सोचने लग गया कि वो तो पार्लियामेंट में इसलिए चुन के आए कि वो इस तरह का हरकतें करना है, उसी को अपना दायित्व तो मान लिया है। संसद के अंदर में बोलना, अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बोलना और सरकार का नीति में खामियां है तो उसको उजागर करना, और फिर जहां जरूरत है सुझाव भी दे सकते हैं या आप उसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। लेकिन वो संसद में बोलना, वहां प्रदर्शन करना, ये सारा चीज जो है लोग देख रहे हैं ना, लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस का हरकत कैसे है।
1: मोदी जी ने जो कोई एक बात आपसे इन 12 सालों में कही हो जो आपको हमेशा याद रहेगी?
0: मुझे तो इतना बातें प्रधानमंत्री जी की ओर से सुझाव निर्देश या हमको गाइडेंस देते रहते हैं, तो एक बोलना मुश्किल है। लेकिन एक बात मैं कह सकता हूँ कि देश हित में जो भी आपको दायित्व मिला है उसको पूरी तरह से निभाना है, इसलिए हम अपना ड्यूटी से प्रतिबद्ध हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी, आपने इतनी बेबाकी से ये सब बात कही। और जाहिर तौर पर देखिए 2014 से अभी तक की ये जो जर्नी है, इसीलिए हमने इसको भारत रीलोडेड का नाम दिया है, क्योंकि इस वक्त नए भारत की बात हो रही है और नए भारत का जो सपना भारतवासियों ने देखा था वो कितना पूरा हुआ, इस पर हमसे खास बातचीत की। नमस्कार।
0: नमस्कार जी।
2: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के साथ विशेष साक्षात्कार कर रही थी रीमा पराशर।

आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत कार्यक्रम। फिल्म संगीत सुन रहे सभी श्रोताओं को आपके दोस्त शशि का प्यार भरा नमस्कार।

कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में गीत अभी आपने सुना फिल्म ज़मीर से। गीत समीर का था, संगीत आनंद मिलिंद का। फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं हरिहरन की आवाज़ में। फिल्म का नाम है कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। गीत समीर का लिखा है, संगीत अनु मलिक का है।

यारा दिलदारा फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं। आवाज़ें हैं उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की। गीत मजरू सुल्तानपुरी का लिखा है, संगीत जतिन ललित का है।

फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। चेहरा फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं बाबुल सुप्रियो और महालक्ष्मी की आवाज़ों में। गीत राहत इंदौरी का है, संगीत अनु मलिक का।

फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं, हम प्यार तुम्ही से कर बैठे। इस फिल्म का गीत आवाज़ अलका याग्निक की है, गीत इसरार अंसारी का है, संगीत राम लक्ष्मण का।

फिल्म संगीत कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनते हैं। फिल्म यकीन से आवाज़ शान की है। गीत समीर का लिखा है, संगीत हिमेश रेशमिया का है।

0: इस गीत के साथ ही संपन्न हुआ फिल्म संगीत कार्यक्रम आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है सुगम संगीत कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं कैलाश खेर के गाए कुछ गैर फिल्मी गीत।
1: प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी

सुगम संगीत कार्यक्रम आप सुन रही हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं कैलाश खेर के गाए कुछ गैर फिल्मी गीत।

इस गीत के साथ ही शशि को दीजिए इजाज़त कार्यक्रम सुगम संगीत संपन्न करने की। आज इस कार्यक्रम में हमने आपको सुनवाए कैलाश खेर के गाए कुछ गैर फिल्मी गीत। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है।

आकाशवाणी का यह रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर। हमारे प्रसारण आप सुन रहे हैं प्रसार भारती की ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी। रात के 8:45 होने को है। कुछ ही क्षणों बाद आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी समाचार और उसके बाद अंग्रेजी समाचार। आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचार हम अपने केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमा पार माल और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। और रक्षा मंत्रालय दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करेगा। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रही संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानव अधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: अफगानिस्तान की जनता के कल्याण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए श्री जायसवाल ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और दवा सहायता से संबंधित उपायों के माध्यम से अफगानिस्तान की सहायता जारी रखे हुए है। श्री जायसवाल ने बताया कि एमटी मैरीमैक्स जहाज के चालक दल के सभी 24 सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया है।
1: जब ये हादसा हुआ उस समय तुरंत ही हमारे भारतीय दूतावास जो कि ओमान में है तुरंत एक्शन में आए और वहाँ ओमानी अधिकारियों से उन्होंने संपर्क किया। तुरंत उन्होंने कार्रवाई की और 2400 भारतीय नागरिक को सुरक्षित वहाँ से निकाला गया। ये सभी नागरिक हमारे नागरिक सुरक्षित हैं।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉक्टर जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में कहा कि उन्होंने विदेश नीति और कूटनीति, सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई हैं।
2: The amount of time we have spent
3: हमने उन देशों के साथ लगातार बातचीत जारी रखी जो तेल, गैस, एलएनजी, एलपीजी तथा उर्वरकों के उत्पादक हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय हित का विषय है। इसलिए विदेश नीति पूरी तरह से उस समय के प्रमुख राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप संचालित होती है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसे स्थितियां, दुनिया भर को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच प्रमुख क्षेत्रों में भारत की संतुलित भागीदारी पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिन के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। सूत्रों ने बताया कि सोने के आयात में कमी आई है और अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर पर कोई दबाव नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों के आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनियामक संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
1: रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की अपनी तरह की पहली परियोजना में रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन होगा। इससे रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर खर्च में काफी कमी आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
3: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी, आज जैसे बिहार की मीटिंग था, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पे एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
1: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। सरकार ने मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण की गारंटी अधिनियम जी रामजी को सुचारू रूप से लागू करने को लेकर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
4: विकसित भारत जी राम जी ये अधिनियम 1 जुलाई से लागू होने वाला है। कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन का प्रस्ताव किया, 95,692 करोड़ का अंतरिम आवंटन प्रस्तावित किया गया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के

0: स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। सरकार ने अक्टूबर 2024 में योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत व्यय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
1: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या था मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का। इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेंगे।
0: सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
2: यहां पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खा के ठीक ठाक रहता हूँ।
0: सरकार ने मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवंबर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ोन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
3: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित 3 विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों का आज स्वीकृति पत्र जारी किए। ये संस्थान ब्रिस्टल विश्वविद्यालय, यॉर्क विश्वविद्यालय और न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय हैं। ये विश्वविद्यालय महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये विश्वविद्यालय व्यवसाय, कंप्यूटर विज्ञान और साइबर सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में कार्यक्रम उपलब्ध कराएंगे। श्रीलंका के दाम्बुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। भारत ए के 278 रन के जवाब में श्रीलंका ए 269 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने कल पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले इलाकों और कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में बिहार, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भी तेज बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कल लू चलने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों के मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा पार माल और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. India expresses grave concern over killings of 30 civilians in deadly crackdown on protesters

शान और साथियों की आवाज़ों में गीत अभी आपने सुना। एक फिल्म से कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं राजू चाचा फिल्म के कुछ गीत आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। राजू चाचा फिल्म रिलीज हुई थी 29 दिसंबर सन 2000 को। इस फिल्म का निर्माण किया था अजय देवगन और वीरू देवगन ने और इस फिल्म का निर्देशन किया था अनिल देवगन ने। इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर थे निर्मल जानी। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई थी ऋषि कपूर, अजय देवगन, काजोल, शबाना खान, शहबाज खान, जॉनी लीवर, साक्षी सेन, किंशुक, हर्ष लुनिया, गोविंद रामदेव, टीकू टलसानिया, प्रमोद मोथो, स्मिता जयकर, अनिल नागराथ, संजय दत्त और कैवल्य छेदाने। आइए सुनते हैं अगला गीत। आवाज़ें हैं शान, फ्रांसिस, श्वेता पंडित, श्रद्धा पंडित और स्नेहा पंत की।

0: राजू चाचा फिल्म के गीतों को लिखा था आनंद बख्शी ने और इन्हें संगीतबद्ध किया था जतिन ललित ने। आइए सुनते हैं अंतिम गीत। आवाजें हैं अमित कुमार, कविता कृष्णमूर्ति और पैट्रिक ब्रुएल की।
1: मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि बिन माँ बाप के बच्चे मेरे मरे हुए माँ बाप का मजाक उड़ा सकते हैं। ये सब आप लोगों ने इसलिए किया ना कि मैं चली जाऊं। आई एम गोइंग। आप जैसे लोगों के लिए नौकरी करने से तो अच्छा है मैं अनाथ आश्रम में उन बच्चों की देखभाल करूं जो कभी किसी का दिल नहीं तोड़ते, क्योंकि उनके खुद के दिल टूटे हुए होते हैं।

0: इस गीत के साथ ही संपन्न हुआ कार्यक्रम एक फिल्म से। आज इस कार्यक्रम में हमने आपको सुनवाई सन 2000 में प्रदर्शित हुई फिल्म राजू चाचा के कुछ गीत। आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है, प्रस्तुत है हरियाणवी लोक गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम थारी पसंद।
1: थारी पसंद कार्यक्रम सुनने वाले सारे बण भाइयों ने दलजीत भाई की राम राम। भाइयो, कार्यक्रम के शुरुआत में सुनांगे एक दो गाना जिसके गायक कलाकार रहेंगे वेद प्रकाश कौशिक अलीपुरिया और कुमारी प्रवीण। और इस दो गाने ने सुनने खातर चिट्ठी भेजी है ईसराणा जिला पानीपत। आप हैं भाई सतबीर सिंह जागलान, रमेश जागलान, चरण सिंह जागलान, दीपक, संदीप, सोनू, अंगूरी और चांद कौर। यह चिट्ठी आई है शेरकोट जिला बिजनौर ते। और पसंद भेजने भाई हैं वकार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कोसर। ये हमारे श्रोता हैं गांव उगराखेड़ी जिला पानीपत, अनिल मलिक, सुनीता, पंकज, प्रीति, परी, निकू और तक्ष मलिक। जाटू लुहारी ते रामफुल अरिराम, मदन साधुराम और आवा सिंह। आलेवा जिला जींद ते हमारे श्रोता हैं नरेश लुहान, जोगिंदर लुहान, दीपक और राजकुमार लुहान। तो सब सुने अपनी पसंद पे ये दो गाना जिसके गायक कलाकार होंगे वेद प्रकाश कौशिक अलीपुरिया और कुमारी प्रवीण।

बायन यू तो दो गाना सुना जिसके गायक कलाकार थे वेद प्रकाश कौशिक अलीपुरी और कुमारी परवीन। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति रहेगी बलबीर शास्त्री और उनके साथियों की गायी उड़ रागनी, और उसने सुनन खातर अपनी फरमाइश भेजी है। आप हैं पांडु पेंडारा जिला जीनते, बादल सिंह गिल, कमलेश राणी, टीनू प्रीति, डॉक्टर वाणिका और डॉक्टर अंकित गिल। यह चिट्ठी आई है गांव बिरौली जिला जीनते, पसंद भेजने भाई हैं सुरेंद्र सांगवान, सचिन और अंकित सांगवान। फ्रेंड्स कॉलोनी तो आप हैं रामफल मान, रामधारी मान, पालाराम मान, इंदर सिंह मान, अनिल प्रवीण और दलजीत मान। गांव भाणा ब्राह्मणान ते मेघराज शर्मा, गौरव सौरव विजय अजय जितेंद्र और जोगिंदर शर्मा। और यह चिट्ठी आई है जतू का किशनपुरा ते, पसंद भेजने भाई हैं आलम दिलकश, सबाना नाज, रिजवान राई, इमरान राजा, आलम शेख, सबाना आलम, चांदनी नाज, मोहम्मद वकील राई और इना कैसर। तो सब सुने अपनी पसंद पे बलबीर शास्त्री और उनके साथियों की गाई उड़ या रागनी।

पंखा आवा पति के।

0: भजन रागनी सुनी, जिसके गायक कलाकार थे बलबीर शास्त्री और उनके साथी। और कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति रहेगी बाली शर्मा और उनके साथियों की गायी और रागनी, और पसंद भेजनी है आप सब। आप हैं आदर्श नगर मलोट पंजाब से राजू शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव, साइना और निवान शर्मा। आप हैं चौधरी वास्ते राजू अग्रवाल, केशव, दक्ष, विवेक, प्रयाग और प्रियांशी। यह चिट्ठी आई है गांव नथाणा जो पंजाब में है, हरजिंदर छिंदा, जसवीर, रेखा, गगन, सोनी, सीता और गीता। गांव मुड़लाणा, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, रामफल अठवाल, दिनेश, नरेश, सतपाल, सुरेश, रणधीर, जसमेर, अजमेर, जितशांत, यश, लक्की और मैंके। तो सब सुने बाली शर्मा और उनके साथियों की गाई ओड या रागनी।
1: ए तू मरती कद्यो मरता

एके ना लागी चोट तेरे भी इतना दुख हो से दूं तेरा गले घोट ये पीठ फेर के करें ये सारे ये कर घूंघट की ओट बिन समझे बेकूफ बतावे।

0: या तो भैयान रागनी सुने जिसके गायक कलाकार थे बाली शर्मा और उनके साथी। कार्यक्रम की अगली रागनी सुनांगे धर्मवीर सिंह और उनके साथियों की गाई ओड़े और पसंद भेजी है आप सबने। आप हैं गांव अरिगढ़ तहसील सफेदों जिला जींदते दनपत लांबा कृष्ण रणबीर धर्मवीर कुलदीप विजेंद्र बबलू और उनका पूरा परिवार। गुआणाते हैं प्रभुदयाल विजेंद्र दिनेश आजाद लक्ष्य और रोमिन मुदगिल। गांव बलियाली जिला भिवानी ते हमारे श्रोता हैं दर्शनलाल बंसल सुदेश राणी प्रवीण कुमार ममता राणी कमल कुमार गर्विश और तमन्ना बंसल। फरासीता चिट्ठी आई है और पसंद भेजने भाई है राजकुमार डूडी सरजीत सिंह और प्रमोद कुमार। आशीष है तराजू मिगलानी बबीता सुभाष योगी बब्बू और डब्बू। पटेल नगर मलोट पंजाब ते डॉक्टर महेश कुमार जाजोरिया गीता राणी गगनदीप और बेबी आरजू जाजोरिया। तो सब सुने धर्मेंद्र सिंह उनके साथियों की गाई ओड़ या रागनी।
1: जीते जीते मैं घूमया

तेरी टूमे बनावण खाचर सोना चांदी लाया मैं मुने फेरे

सात मंजिल योरे नीची डाटे बावने स्टेशन बम्बई के वे मोरी बंदारे सब छाटे

कोई सलाह सोनीपत में आने उतरे।

भाईजान रागनी सुनी गायक कलाकार थे धर्मेंद्र सिंह और उनके साथी। और कार्यक्रम की अगली रागनी रहेगी जगबीर सिंह बलंबिया और उनके साथियों की गाई ओड़े और पसंद भेजी है आप सबने। गिड़काली मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से हमारे श्रोता हैं कृष्ण पाल डबास, अनुज राजेंद्र, अजय नीटू और विनोद डबास। इंडोन शहर जिला करौली राजस्थान से खुशीराम मोनू, विष्णु दीपक, राहुल और रिंकू, महेंद्रगढ़ से ममता गांधी, विकास गांधी, वंश दिया नोनू, सुगुन और विक्की गांधी। गांधी जनपद उत्तर प्रदेश से काशीराम दलाल, बलदेव सिंह आर्य, रामपाल दयानंद, धर्मवीर, नितिन, अर्पित, हरिओम, ओमपाल, सन्नी, निमेश, अनुज और रिड़कुमल। या एक चिट्ठी और उत्तर प्रदेश से आई है गांव छापरौली से और पसंद भेजने भाई हैं जसवंत सिंह खोखर, राम कुमार, अनिल, सुनील, प्रवीण, सुमित, विनित और उनका पूरा खोखर परिवार। तो सब सुने जगवीर सिंह बलंबिया और उनके साथियों की गाई ओड़ या रागनी।

भैया रागनी सुनी, जिसके गायक कलाकार थे जगबीर सिंह बलम्बिया और उनके साथी। कार्यक्रम की अगली रागनी रहेगी कुलदीप बोरिया और उनके साथियों की गाई उड़ और पसंद भेजी है आप सबने। आप हैं सिसाई सारते अनूप दिनेश बलवान बाली चमन रणधीर सुरेंद्र और दीपांशु। गांव अजायब ते सुबेदार मामन सिंह सावित्री देवी ऋषभ देव ऋषि देव नरेंद्र वीरेंद्र दविता अंजलि टिया और सागर। देवरेड ते हमारे श्रोता हैं श्री राम चहल बीर सिंह चहल मास्टर ओम बलवान धर्मचंद दया किशन कालाराम और मास्टर रणधीर। लाइट ते चिट्ठी आई है और पसंद भेजने भाई हैं केशव नमन अनवी अवि कपूर सिंह कौशिक राजवीर फौजी नाना फौजी रामफल और खेतू राम। तो सुने कुलदीप बोरिया और उनके साथियों की गाई उड़ या रागनी।

भैया ने रागनी सुनी जिसके गायक कलाकार थे कुलदीप सिंह बोरिया और उनके साथी, और कार्यक्रम का आखिर में सुनेंगे रणबीर सिंह बड़वासनी और उनके साथियों की गायी और रागनी और पसंद भेजी है आप सबने। आप हैं लोको कॉलोनी लुवारू ते बिल्लू सिंह चिंडालिया, लक्ष्मी देवी, सुरेंद्र कुमार बरखा, योगेंद्र कुमार और नरेंद्र कुमार। गांव चिड़िया दूध वाचर खिदादरी ते सोनू मंजीत तनी संगोलिया और उनके परिवार के सदस्य। खेड़ी दौलतपुर ते प्रीत सिंह बिंटू संजय कुमार। खेड़ी चोपटा ते पंडित सतारेड़ी राजा राम पुनिया राम शर्मा और किताब सिंह सोराण। जिंजर ते मारे श्रोता है मासे सतवीर शर्मा कौशल्या बाला और उनका पूरा परिवार। गांव लुदेसर ते पप्पू राम गाट संतोष देवी लक्ष्मी देवी प्रियंका साक्षी और रुचिका देवी। बड़मुजी सागर मध्य प्रदेश ते चिट्ठी आई है और पसंद भेजने भाई है रघुनाथ सुषमा बबीता ममता विनोद विशाल और ओम प्रकाश। तो सब सुने रणबीर सिंह बड़वासनिया और उनके साथियों की गायुड़ या रागनी।

0: भैया ने रागनी सुनी, गायक कलाकार थे रणबीर सिंह बड़वासिनी और उनके साथी। कार्यक्रम किसा लगा यह बताएं और आप भी अपनी पसंद की रागनी सुनना चाहो है तो चिट्ठी डालें। कार्यक्रम का पता है कार्यक्रम थारी पसंद, द्वारा केंद्र निर्देशक, आकाशवाणी रोहतक, पिन कोड 124001। और ईब दलजीत भाई ने इजाजत दो, सारे मन भाइयों ने राम राम।
1: अभी आप सुन रहे थे थारी पसंद कार्यक्रम, आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है आपके भेजे गए पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत।

मन चाहे गीत सुन रहे सभी श्रोताओं को आपके दोस्त शशि का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, लेकर हाजिर हूँ आपके भेजे गए खत और उनमें बसी कुछ फरमाइशें।

मुकेश की आवाज़ में गीत अभी आपने सुना फिल्म आस का पंछी से। गीत शैलेंद्र का था, संगीत शंकर जयकिशन का। पसंद आप सभी की सीताराम बाजार पुरानी दिल्ली से इस गीत को सुनना चाहा था नरेश देवी ने। समडील नवपारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा, अदिति, राधे, दीपक और अंकुश राघव गुप्ता। मोहला हिसार से इसी गीत के लिए चिट्ठी लिखी थी राजकुमार ढोचक, गीता, अमन, सानिया, सुभाष, राहुल, रोहित, जोगेंद्र, दर्शना, इंदु और यक्षित ने। फूल चिंचोली पंढरपुर महाराष्ट्र से आप हैं जाकिर मुलानी, सुमैया, सुभान, समीर, सलमा, मुमताज़, दिलशाद, नसीर, बाबू मुलानी और बादशाह मुलानी। करमपुरा नई दिल्ली से इस गीत को सुनना चाहता कविता, गौरव, मानसी और अनिल मदान ने। मन चाहे गीत कार्यक्रम में अगले गीत के लिए मैं फरमाइश लिख भेजी है हरगोविंद नगर नवा शहर पंजाब से सुरेंद्र संधु, अनीता, रोहित, रितेश, प्रीतिशा संधु और मैक्स संधु ने। वाराणा शाहपुर कोल्हापुर महाराष्ट्र से चिट्ठी लिखी है विजय चौहान, तेजस्विनी चौहान, माई इंदुरकर, शौर्या, श्रेयस, अंकिता, अनिकेत चौहान ने। रघुनाथपुरा श्रीगंगानगर से आप हैं लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हेना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। शेरड़ा हनुमानगढ़ से खत लिखा मंटू शर्मा, सोनू शर्मा, सुशीला और लीलाधर ने। आप सभी ने सुनना चाहा है पेइंग गेस्ट फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत मजरू सुल्तानपुरी का है, संगीत एस डी बर्मन का।

मन चाहे गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से चिट्ठी लिखी है अनिल मोहन, उषा और टीलू ने। कैदी मुड़ा रायगढ़ छत्तीसगढ़ से आप हैं पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह, ऋषभ, लीलू सिंह और रितु सिंह। धनबाद से आप हैं अमित कुमार सिंह, प्रियंका और समृद्धि। चंडीगढ़ से हैं सतीश अनेजा, बिमला अनेजा। धामणी मानोरा से तुलसीराम डेरे, मायावती डेरे, संदेश, आदेश, किरण, प्रज्वल और अनुत डेरे। छोटी बलिया मुंबई से आप हैं नुरेश अहमद, सदफ आरजू, जूही इकबाल, आमना नशरीन और इमरान अहमद फूलवाले। मनोरा वाशिम से हैं ध्रुव कुमार गिरी, ज्योति, तेजस, प्रणीता। पुणे महाराष्ट्र से शैलेशपुरी, सोनम और धनुष। भंडार सिवनी कोंडा गांव छत्तीसगढ़ से आप हैं सुभाष चक्रधारी, कविता, मुस्कान और अनुष्का चक्रधारी। शालर पहलगाम से आप हैं पीरजादा मेहरजुद्दीन, केशरदीन और नजमदीन। भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुंवर, दीपक श्याम कुंवर, प्रमिला और ज्योति। नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा, शारदा और दामिनी। रेंगनी छत्तीसगढ़ से खत लिखा दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से चिट्ठी लिखी है ओम प्रकाश राय, उषा, अमित और हैप्पी राय ने। दुबीहा निवादा गाजीपुर से आप हैं प्रतीक, रोशनी और प्रांजल। शेरपुर कलां गाजीपुर से आप हैं अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय। आप सभी ने सुनना चाहा है लता मंगेशकर की आवाज़ में चोरी चोरी फिल्म का गीत। गीत हसरत जयपुरी का है, संगीत शंकर जयकिशन का।

मनचाहे गीत कार्यक्रम में अगली चिट्ठी हमें मिली है गांव बलियाली जिला भिवानी हरियाणा से। लिखने वालों के नाम है दर्शनलाल बंसल, सुदेश रानी, प्रवीण, ममता, कमल, गर्विश और तमन्ना। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से आप हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जावेंद्र कुमार वर्मा। छत्रपति संभाजीनगर से राजदीप राजेश, राजेश सावले पाटिल, राशि राजेश और शीतल राजेश। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश, मैंडी, सौरभ, शाइना और निवान। नया पारा भिराई से आप हैं श्री बसंत कुमार सूर्यवंशी, सरोज, ईशर राज, चंद्रकांत, प्राची और टीयूषी सूर्यवंशी। गांव गोविंदगढ़ माझीवाला श्री कर्णपुर राजस्थान से आप हैं राजू टुटेजा, खुशदिल, उर्मिला, गुड्डू, जीनू, मन्नू, आदित्य, भूमि, राखी, अमृत, शिव सेठी, कर्णपुरी और स्माइल टुटेजा। आप सभी ने सुनना चाहा है आशा भोसले की आवाज़ में लाजवंती फिल्म का गीत। गीत मजरू सुल्तानपुरी का लिखा है, संगीत एस डी बर्मन का।

पटेल नगर मलोट पंजाब से ख़त लिखा है डॉक्टर रमेश कुमार जाजूरिया, गीता रानी, गगनदीप और आरजू ने। हेपरसोका तालुका औसा ज़िला लातूर से आप हैं उस्मान शेख फौजी, सायरा बानो, दस्तगीर, फैज नबी, शाकिर शेख, इस्लाम भी शेख, बाबा शेख, करिश्मा, सिमर, सानिया, बिस्मिला भी शेख, गदर शेख और नीलोफर शेख। हेपरसोका तालुका बिलोली ज़िला नांदेड़ से आप हैं चांदनी अयूब सैयद, बाल राजे, अमन सैयद, माहिरा सैयद। जामभरून अर्धापुर से आप हैं दुर्गादास जोशी, गंगाधर, गजानन, संजय, आशीष, पृथ्वीराज, साध्वी और साथ ही परभणी हुण और गणेश हारगांवकर। गांधी चौक बाड़ में राजस्थान से चिट्ठी लिखी है बबलेश पवार, डैनी और मनीष ने। आप सभी ने सुनना चाहा है जब याद किसी की आती है, इस फिल्म का गीत। आवाज़ें हैं महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की। गीत राजा मेहंदी अली खां का है, संगीत मदन मोहन का।

इस गीत के साथ ही अपने दोस्त शशि को दीजिए इजाजत कार्यक्रम मन चाहे गीत संपन्न करने की। आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है, रात के 11 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में उसके बाद अंग्रेजी में। आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचार हम अपने केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉक्टर जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि विदेश नीति और कूटनीति सामाजिक सुरक्षा और राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, भारत दुनिया को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया

0: में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबेर अल सबाह से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमिपत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमिपत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनिमय संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
1: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी, आज जैसे बिहार की मीटिंग था, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पे एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
0: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। जम्मू कश्मीर शिक्षा बोर्ड ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश के कश्मीर और जम्मू डिवीजन के शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन क्षेत्रों को कवर करते हुए 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा की तिथियां जारी कर दी हैं। विस्तृत और ताज़ा जानकारी के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट jkbose.jk.gov.in को नियमित रूप से देखते रहें। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिनों के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renuka. The Ministry of External Affairs today acknowledged several reports of severe police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several protesters have been killed and many injured. It added, India hopes that the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and abuses. Addressing the media in New Delhi, spokesperson at the Ministry of External Affairs Randhir Jaiswal said that New Delhi continues to see a pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. Mr. Jaiswal described them as a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses.
3: A pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. It is a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. There are several reports of police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several people have been killed. There are several more who have been injured. We hope the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and its abuses.
2: Over 30 people have been killed and around 200 others have been injured in clashes between protesters and security forces in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Tensions in the region escalated after authorities banned the Joint Awami Action Committee, a prominent civil society alliance that has spearheaded protests over economic and political grievances in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that India's foreign policy is now in sync with its core national goal.